हरिवंश नाम, राधा वल्लभ नाम, राधा नाम, शरणागत मंत्र, निज मंत्र, आश्रय छाती में बैठा लेना। ये छाती में बैठालना है, अपने हृदय अपने जीवन धन को दे दिया आपको। कितने तुम गंदे विचार वाले हो, देखो एक लोटा कोई पानी पिला दे उसको, जब देखेंगे तो नम्र आंखें हो जाएंगी। प्यास से व्याकुल था, एक बारिश ने पानी पिलाया था। अनंत जन्मों से सुख और शांति के लिए ही मरते चले गए, आज तक जगह नहीं मिली। आज प्रभु की कृपा ने गुरुदेव रूप में आके मुझे स्वीकार किया और आनंद धाम की यात्रा करा रहे हैं। हम कैसे मलिन स्वभाव वाले, नीच स्वभाव वाले हैं, उनकी आज्ञा का, उनके उपदेश का, उनके नाम का कोई महत्व हृदय में नहीं। हमारा तन, हमारा मन, बस हम जो चाहे कर सकते हैं। नहीं भाई, अगर तुम गुरुदेव के शासन में नहीं रहोगे तो काल तुम पे शासन करेगा, कर्म तुम पे शासन करेगा, फिर नष्ट हो जाओगे। अभी तुम कवच में हो तो सुरक्षित हो। याद कर लेना, पूरे जीवन में इसका अनुभव कर लेना, जहां कहीं गुरु आज्ञा का उल्लंघन करोगे वहीं फंस जाओगे, नष्ट हो जाओगे। अगर कृपा ना बचाए तो जीवन भर तुम दंड उसका भोगोगे। गुरु रीठा मन मैल मिटावे। सदगुरुदेव भगवान कृपा करके तुम्हारे मन को निर्मल करते हैं। मन निर्मल करने में बड़ा श्रम लगता है, जैसे कपड़े में कोई दाग लगा हो तो धोने वाले को बड़ा श्रम लगता है, बार बार वहां रीठा लगा के मलना, धोना, पीट पीट के उस दोष को निकालना। ऐसे ही परम कृपालु गुरुदेव करते हमको शासन में लेकर, डांट कर, धुलार कर, ये हरि नहीं करते, ये हरि का कृपा रूप गुरुदेव करते हैं। सच्ची सच्ची गुरुदेव की कृपा ना हो तो परमार्थ का मार्ग ही ढका रहता है, मिलता ही नहीं है। चाहे जितना ज्ञान विज्ञान बगारो, वो अंतर आत्मा में मार्ग प्रकाशित नहीं होता है। ये तो गुरु कृपा ही केवलम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। शरणागति का मतलब होता है कुम्हार की मिट्टी, सीधी भाषा में समझ लीजिए। आप कुम्हार की मिट्टी हैं, अब उस मिट्टी के साथ वो कुम्हार कैसा बर्ताव करता है सबको पता है। पहले एक मजबूत डंडा लेकर उसे कूटता है, कहीं भी इतना भी, अगर वो जरा सा सरसों जैसा भी कण रह गया तो वहीं से पात्र फूट जाएगा, वो रस लेने लायक नहीं रहेगा, उसमें रस नहीं रखा जा सकता। एकदम महीन, फिर पानी डाल के पैरों से गूंथता है, फिर हाथ में लेकर उसे बार बार गूंथ के और मुलायम करता है, फिर चाक पे चढ़ाता है, जैसा चाहता है वैसा आकार दे देता है। यह है शरणागति। थोड़ा भी अहंकार रह गया तो वहीं से भागवतिक रस बह जाएगा, और यहां थोड़ा सा क्या, पूरा चलनी है, चलनी में गैया दू है और दोष दयु को दे। गुरु रीठा मन मैल मिटावे, उज्जवल कर दे धोए। धोने दो चुपचाप, हल्ला मत मचाओ, सारे दाग धुल जाएंगे शांति से, जैसी आज्ञा शास्त्र करता है गुरुदेव। शास्त्र को तुम क्या समझोगे, तुम्हारी भाषा में गुरुदेव तुम्हें बोल रहे, समझ में नहीं आ रहा तो दैवी भाषा शास्त्र को तुम समझ जाओगे, नहीं समझो। जो गुरु के वचनों पर प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा कर देता है उसके जीवन में प्रश्न ही प्रश्न रहते हैं, समाधान करने की सामर्थ्य नहीं रह जाती है। मान लीजिए बहुत बढ़िया अवसर है, होली खेल लीजिए, होली अब रंगबर से, रंग का बरसता है होली, हम प्रियालाल के होली कहते हैं, प्रियालाल के होली।
अपने अहंकार के, अपने देह के, देह संबंधों के, भोगों के, अभी प्रियालाल के कहां हो? तो कारंग बरस रहा है काम क्रोध का, ईर्ष्या द्वेष का, मान अपमान का। अगर श्यामा श्याम की होली तो फिर नयो नेह नवरंग नयो रस ये बरसेगा। आए तो इसी में भेजने के लिए हो वृंदावन, प्यारी जू प्यारे जू क्या ऐसा प्रेम रंग, ये अब दूसरा रंग न चढ़े। बोले जेव ही गुरुदेव मन को निर्मल किए, तब तह धरे श्याम चरणाम्बु छुवत न मैलो होए। आ निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। महाराज तो मांग कर रहे हैं, महाराज मांग कर रहे हैं, मुझे निर्मल मन पसंद है, मुझे छल कपट पसंद नहीं। गुरुदेव मांग नहीं कर रहे हैं। देखो गुरुदेव की हरि से भी बढ़कर उदारता। हरि तो कह रहे हैं मोहि कपट छल छिद्र न भावा, और गुरुदेव किसको ले रहे? जो कपटी है, छली है, दोषों से युक्त है, उसे गले में लगा करके हरि के लायक बना रहे। कैसे? बोले मन मैल मिटावे उज्जवल कर दे धोए। जो हरि को चाहिए वो गुरुदेव रूप से कर रहे हैं। इसीलिए गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, तो गोविंद ने ही बता दिया बलिहारी गुरु आपने, बलिहार करो अपने गुरुदेव की, जिन्होंने मेरे से मिला दिया। नहीं मेरे से मिलना साधारण बात नहीं, क्योंकि मुझे चाहिए निर्मल मन और मन है तुम्हारा मलिन, कैसे पा सकते थे? गुरुदेव ने मन के मैल को छुड़ा दिया। अब मैल छुड़ाने में श्रम लगता है, उस कपड़े को बार बार रगड़ा जाता है, पीटा जाता है, वो तब निर्मल होता है। ऐसे पिटाई होगी आपकी, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर एक दाग थोड़ी है, बहुत दाग है। पिटाई का तात्पर्य है वचनों का आपके ऊपर शासन, वचन का शासन। वचन आधीन सदा रहें रूप समुद्र अगाध, प्राण रवन सो कत करत बिनु आगस अपराध। लाल जू महाराज हमारी महारानी जू के कैसे अधीन है? वचन आधीन सदा रहें। लाडली जू का शब्द और अखिल कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी का सिर झुकाकर स्वीकार करना, यह है प्रेम संबंध। वचन आधीन सदा रहें। त्रिभुवन के जितने भी बड़े बड़े महात्मा ऋषि सब हुए हैं, इन्हीं लालजू महाराज के चरणों की रज से हुए हैं, इन्हीं चरणों का आश्रय लिया है। हमारे लालजू महाराज हमारी प्यारी जू के कैसे, इसीलिए हम रस चर्चा करने में घबराते हैं। मलिन बुद्धि जब नाम नहीं जप पा रहे, सिद्धांत से नहीं चल पा रहे, तो प्यारी जू की लीलाओं में तुम्हारी क्या बुद्धि होगी? पहले सिद्धांत पुष्ट कर लो, पहले देह भाव से मुक्त हो तो रस भाव में तुम्हारा प्रवेश हो। प्यारी जू की रसमय लीला में बड़ा दुर्लभ विषय है। ये वृंदावन धाम है, प्रिया प्रीतम का महल है, यहाँ की कृपा से पहले हृदय की मलिनता नष्ट हो, स्त्री पुरुष भाव नष्ट हो, भोग भावना नष्ट हो, तब जाके कहीं हम ऐसी अध्यात्म की ऊंचाई पर पहुंचे जहां प्यारी जू हमें प्राण प्यारी लगने लगे। श्री राधा जुग चरण प्रीति उपजय अति भारी, तब तो ये रस समझ में आवे। गुरुदेव ने मन को निर्मल किया तो निर्मल मन की मांग करने वाले श्री श्याम सुंदर उसके हृदय में पधारे। खत्म खेल, अब कोई मैल छू नहीं सकता, क्योंकि स्वयं प्रभु हृदय में विराजमान हो गए। तभी श्रीमद राधा सुधा निधि में महाप्रभु कह रहे, कर्माण श्रुति बोधितानि नितराम कुरुवंतु मा, गूढ़ाश्चर्य रसाश्रगादि विषयान ग्रहणंतु मुंचंतु वा। वो महापुरुष शास्त्र के अनुसार कर्म करे या ना करे, वो विषयों को ग्रहण करे या त्याग दे, कोई फर्क नहीं, क्योंकि अब अंदर श्री लाल प्रिया विराजमान हो गया, अब कोई मल नहीं छू सकता। पर हमारा चश्मा तो मल वाला लगा है, तो हम वहां भी मल का ही दर्शन करते हैं। ये रस जान दूध सिंघिनी को कनक पात्र ठहरावे, कुंदन बने ताप जग सही सही तब रस परसन पावे। ये सिंघनी का

दूध है वृंदावन का प्रेम रस, इस स्वर्ण पात्र में टिकता है। गुरुदेव के बच्चा बन जाओगे तो वो तुम्हें स्वर्ण पात्र बना देंगे। कुंदन बने ताप जग सही सही तब रस परशन पावे। ये जो नाना प्रकार की गर्म हवाएं चल रही है, काम क्रोध ईर्ष्या द्वेष राग आदि की, गुरुदेव के वचन के अनुसार चलने वाला शिष्य वो आनंद पूर्वक सहन करता है। जैसे एक किसान ऐसे सर्दी के समय में जब आप रजाई छोड़कर निकलना नहीं चाहते, वो बहुत कम वस्त्र धारण करके गेहूं की फसल में पानी लगाता है, पूरा कांपता रहता है ऐसे पूरी रात रात पानी, जो किसान जन है वो जानते हैं। पर उसको शीतलता लगती, पर शीतलता का दुख नहीं होता, क्योंकि उसको पता है कि 2 महीने बाद इसमें 50 मन गेहूं पैदा होगा, हमारा परिवार सुखी पूर्वक 1 वर्ष इसमें भोजन पाएगा। 1 वर्ष जीने के अन्न के लिए वो इतने शीतलता के कष्ट को आनंद पूर्वक सह लेता है। वो अनंत काल तक प्रियालाल के समीप हम सुख पूर्वक रहेंगे, उसके लिए हम काम क्रोध नहीं सह सकते, हम विकार नहीं सह सकते। बोले बहुत कष्ट होता है इनके सहने में, मानते हैं, क्योंकि आप अंतःकरण धर्म से तदात्म्य, लेकिन आपको जेल हो जाए तो फिर क्या करोगे? आपसे अपराध बन गया, आप जेल भोग रहे हैं, 20 साल की सजा हो गई, अब वहां तुम्हें रखा है क्या सब भोग? जो मिलेगा खाओगे, जैसे आचरण कराए जाएंगे वैसे वहां करोगे, थोड़ा भी बोले तो 4-5 मिलके तुम्हें पीट देंगे। अब उस समय मन को ना वो योगी है ना तपस्वी है, लेकिन सहता है ना, मन को समझा के पूरा जीवन काटता है ना जेल में। तो आप ऐसा मान लीजिए कि अनंत जन्मों के अपराधों से मुक्त करने के लिए हमें अवसर मिल गया, मन को समझा लो भाई, अब ये जन्म हमने श्यामा श्याम को दिया, अब तुम चाहे जितना उलरो, चाहे जितना संकल्प विकल्प करो, अब हम तुम्हें भोगों में नहीं फंसने देंगे। कुंदन बने ताप जग सही सही, ये शब्द ही याद नहीं कर रहे आप, सहत सहत बाढ़े भगत, ये शब्द ही नहीं है अपने लोगों के हृदय में। लाडली जू के लिए किसने प्राण समर्पित किए हैं? हम अपने मन को समर्पित हैं, भोगों को समर्पित हैं, अनुकूलता को समर्पित हैं, सम्मान को समर्पित है, लेकिन प्यारी जू प्यारे जू को कौन समर्पित है? बड़ा गूढ़ विषय, इसीलिए तुम्हारी वृत्ति तुम्हें धोखा दे रही है। नहीं नहीं, सावधान हो जाओ। तात मात सुत दार देह में मति अरुझ है मति मंदा, ए मति मंद हित कुशोर को होए चकोर तू लख वृंदावन चंदा। जब आप सहना शुरू कर दोगे तो आपको इनाम मिलना शुरू हो जाएगा। क्या बोले? रूप माधुरी ध्यान समावे, हर प्रतिकूलता को सह गया, कुछ नहीं बोला, शांत है। प्रभु जैसा आप करो, जोई जोई प्यारो करे सोई मुझे भावे, शांत अंदर आग लगी बाहर से शांत बैठा है, वो देख रहे हैं प्यारे मेरे लिए ये सह रहा है। अब क्या हुआ? बोले रूप माधुरी ध्यान समावे गुण गावे गोविंदा, हृदय में ऐसी भक्ति की बाढ़ आई, ताप जलन मिट गई है, अनंत जन्मों की जलन मिट गई, आनंद मगल हो गया, भगवान का यश गान कर रहा है, सामने रूप माधुरी विराजमान है, प्रिया प्रीतम संग है, अब हो लिया तो आनंद ही आनंद, आनंद के मार्ग में हमारा प्रवेश हो गया है। अब चूकिए मत, मां मुनिस्मर, बार बार भगवत स्मरण करें। अपने लोगों को जो प्राप्त हुआ है बहुत दुर्लभ है। कह रहे कि जितने भी तीर्थ हैं भारत में, विश्व में, कहीं भी, सब तीर्थों का अवगाहन करे एक आदमी, और एक वृंदावन की रज को ऐसे लेके ऐसे रख ले तो इसके करोड़वें अंश के बराबर कोई तीर्थ नहीं है। ये कहानी नहीं कि ऐसे कही गई हो। क्यों? क्योंकि जिनके चरणों को पूरा विश्व नमन करता है वो लालजू महाराज, जिन गोरे चरणों को अपने हृदय रूपी संपुट में छुपा के रखते
उन चरण

भागो। यहां वृंदावन में एक कदम चले, तीर्थराज प्रयाग के वास और अवगाहन का फल आपको मिल रहा है। कैसे अपार महिमा। देखो, जैसे दूध पीने से सद्या शक्ति तुरंत बल आता है, उस बल का प्रयोग आप कहां कर रहे हैं? खास बातें हुई, आप दूध पी के कर क्या रहे हैं? उस बल का प्रयोग किधर कर रहे हैं? नष्ट कर रहे हैं या सार्थक कर रहे हैं? यहां का बहुत एक एक कण अपार शक्ति से संपन्न है, हम इसका प्रयोग कहां कर रहे हैं? हमारे रहनी पर इसका बहुत बड़ा फल टिका हुआ है। हमारी रहनी गलत हो रही है। हमारा जो महापुरुषों के द्वारा वृंदावन सेवन करने का भाव रहा है, उससे विलग हो रहा है। इसीलिए ये प्रभाव जो वर्णन किया जा रहा है, हमारी समझ में नहीं आ रहा है। भला ऐसा कैसे प्रभाव हो सकता है? एक एक पग पर यहां प्रयाग, प्रयागराज को पावन करने की सामर्थ्य किसी और तीर्थों में नहीं, क्योंकि सब तीर्थ प्रयागराज में अपने को पावन करते हैं। जब वो कुंभ पड़ता है, प्रयागराज यहां की परिक्रमा करके एक बार रज में लौटते हैं, और फिर इतनी सामर्थ्य आ जाती कि 12 वर्ष तक सब तीर्थों को पावन करते रहते। फिर यहां पग पग पर प्रयाग है। जेहि ब्रज केल निकुंज मग पग पग होत प्रयाग। गुरु ने बतायो राधा मोहन हूं गायो सदा, सुखद सुहायो वृंदावन गाढ़े गहिरे। सदगुरुदेव ने बताया और स्वयं प्रिया प्रीतम ने अपने श्रीमुख से जिस महल का जस गाया, ये वृंदावन धाम है, इसे बहुत गाढ़े से पकड़ लो। गाढ़े से पकड़ने कुछ भी हो जाए, वृंदावन के सिवा हमारे जीवन में किसी भी तीर्थ या किसी भी पुरी या किसी भी धाम का कोई आश्रय नहीं रहेगा, केवल वृंदावन। आप गृहस्थ हैं, बाहर जाइए, वृंदावन भाग के आइए। जैसे छुट्टी होने पर अपने घर जाते हैं, ऐसे आप ड्यूटी के लिए बाहर जा रहे हैं, आपका घर श्री धाम वृंदावन है, ऐसे आश्रय से पकड़ो। या इस सीमा के बाहर प्राण भले निकल जाएं, जीवित नहीं जाएंगे, या ऐसा नियम, दोनों भाव आपको श्री जी से मिला देंगे। बड़े भाग्य हैं जो वृंदावन वास कर रहे। कह रहे अद्भुत अद्भुत महिमंडन परे ते परे, जीवन को लाहु हाहा क्यों न ताहि लहुरे। बड़ा अद्भुत वृंदावन, बड़ा अद्भुत वृंदावन। ये ब्रह्मा की सृष्टि से परे है, भगवान श्री जी के फण में विराजमान ब्रह्मांडों में नहीं, ये भगवान की चिदानंदमयी सृष्टि है। यहां हमारे नेत्र चूंकि पार्थिव है, इसलिए हम नहीं देख पा रहे, पर महापुरुष जन कहते हैं अगर जीवन का लाभ लेना है तो वृंदावन धाम को हा हा हा हा कह के तात्पर्य कि हाय इतना बढ़िया अवसर है और आप अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं। थोड़े से सुख के लिए, थोड़े से जीवन में हम कैसे फंसते चले जा रहे हैं? ये मुक्त होने का अवसर, फंसने का नहीं। कैसे समझाएं? बस जैसे आंखों का अंधा उसे कहा जा रहा है आगे कुआं मत गिर जाके, उसको लगता है हमें बहला रहे हैं, हमारा अभ्यास हम निकल जाएंगे, हमारी ऐसी कुछ दशा है। शास्त्र गुरुजन कहते हैं आगे गड्ढा है, गिर जाएगा तू। ओ तुम क्या जानो, हम बहुत बार पार हुए हैं, अब भी पार हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। तुम जिसे देख नहीं पा रहे उसे संबोधन करके तुम्हें बचाना चाहते हैं। बोले आनंद को घन छायो रहत निरंतर ही सरस सुदेशो पपीहापन बहुरे। वृंदावन का रंग कौन खेल पाएगा? जो पपीहापन में होगा, चातक का प्रण। जैसे चातक पी पी कह के पुकारता रहता है और अपने मेघ प्रीतम को देखता रहता है, मेघ प्रीतम गड़गड़ाहट से ओले बरसा के उसे पीड़ा पहुंचाता है। दूसरे पक्षी कहते ले इसका फल, बहुत पी पी कर रहे थे, देखो ना डांट रहा है मेघ और ओले बरसा रहा है तुम पर। वो कहता है ये तुम्हें लग रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है मेरा प्रीतम आनंदित हो रहा है।
जैसे कोई अपने प्यारे के ऊपर फूलों का श्रृंगार करे, ऐसे मुझे ओले लग रहे कि मेरे मेघ के द्वारा बरसाए हुए ओले मुझे पुष्प की तरह सुखद लग रहे। पपीहा पन गहुरे, हमारे प्रीतम के द्वारा दी गई प्रतिकूलता, बड़े बड़े देवी शक्तियों के द्वारा दी गई अनुकूलता से भी बहुत भारी है, सुखद है। ध्यान देनी आप, बने तो रघुबर ते बने, बिगड़े तो भरपूर तुलसी औरन ते बने तावन। हमारी प्यारी जू के द्वारा किया हुआ विधान हमारे लिए सर्वोपरि है। भारी से भारी प्रतिकूल परिस्थिति भी हमें महासुखद लगनी चाहिए, क्योंकि मेरी प्यारी जू का विधान। बोले इसमें प्यारी जू क्या करेंगे, वो हमें गाली दे रहा था, तो आप शरणागत नहीं है क्या? है तो फिर आपकी तरफ अंगुली कैसे उठ सकती है, आपकी तरफ आंख कोई कैसे दिखा सकता है? ये हमारी प्यारी जू से पास हुआ है कि तुम्हें गाली दी जाए, जिसे अब पता चले कि तुम्हारा अहंकार कितना है। बिल्कुल आप विधान में है, बिना विधान के आपके साथ कुछ नहीं हो सकता। और आपसे सत्य कहते हैं, जीवन भर के अनुभव को कहते हैं, जहां कहीं जले तो गलती हमारी हुई, प्रिया प्रीतम की नहीं, पूरे जीवन का अनुभव खुली बात कहते हैं। कभी हमें जलन हुई, कभी असंतोष हुआ है, कभी हमें विषाद आया है, तो उसमें मेरी सोच की गलती हुई है प्रिया प्रीतम की तरफ से, कभी नहीं, कहीं नहीं। अक्षर अक्षर का चिंतन, क्योंकि अपने लोग कोई बाहर के क्रियाओं का चिंतन नहीं, आंतरिक चिंतन होता है। हमसे चूक हुई तो हमें जलन होगी, हमसे चूक हुई तो हमें विषाद होगा। नहीं, आज तक कभी विषाद, भले कोई गाली दे, भले कोई मारे, भले भूखे रहे, विषाद नहीं हुआ। विषाद तब हुआ है जब हमारी चूक हो गई है, हमारा चिंतन बिगड़ गया है, हम वस्तु चिंतन की जगह व्यक्ति चिंतन किया, तभी हम जले, तभी हम परेशान हुए हैं। पपीहा का प्रण लेने वाला वृंदावन के रंग में खेलता है। अपने प्यारे के द्वारा दी गई प्रतिकूलता, यदि प्रतिकूलता नजर आती तो प्रेम कैसा आपका, यही तो खास बात है। हम श्री जी के, हमारे माई श्यामा जी को राज बोल दिए, अंतर में देखो ये बात गई क्या, हमारे माई श्यामा जी को राज। एक बार मजनू लैला के दीवाने, सब कोई जानता है, लैला राज घराने से थी, उसने संपूर्ण नगर में गुप्त रूप से जितनी भी दुकानें थे सब पे कह दिया था, अगर मजनू कुछ भी खाना चाहे उससे पैसे ना मांगे जाए, उसकी इच्छा के अनुसार उसको भोजन दिया जाए, क्योंकि मेरे प्रेम में बावला है। जिससे मांगे, जब लोगों ने देखा ना पैसे मांगे जाते थे ना तो कोई प्रश्न होता है, जो चाहे अंगुली ऐसे करे वो वस्तु उसे दे दी जाती। लाखों मजनू हो गए, रबड़ी पीने वाले, जलेबी हलवा पाने वाले, तो लाखों मजनू तैयार हो गए, हाँ लैला जलेबी। अब जितनी दुकान वाले हैं सब वहां हिसाब, तो उनका कि इतना एक मजनू कैसे खा सके, बोले है ही नहीं एक मजनू, लाखों मजनू तैयार हो गए, हम किसको जाने कौन असली मजनू। तो उनका मजनू तो एक ही होता है, ये रबड़ी खाने वाले मजनू थोड़े थे, कह दो। अब जब दुकान में कोई भी सामान लेने आए तो सबसे कह देना कल शाम के लैला अपने मजनू से मिलना चाहती है। लाखों जितने मजनू बने थे, हा लैला, सब कोई देख नहीं पाता था उनको, पर्दा करके सामने आई और कहा मैं अपने मजनू के दिल का खून लेना चाहती हूं, कटोरा और छुरी सा। रबड़ी पीने वाले मजनू के पैर पीछे होने लगे, जो असली मजनू, उसने कहा आज मेरा प्यार सार्थक हुआ, मेरे प्यार की आज वृत्ति सार्थक हुई, क्योंकि आज कुछ देने का अवसर आया है। चाकू पकड़ी, जेबिये से बोले बस ये रबड़ी खाने वाले मजनुओं को जेल में डालो, ये है हमारा मंजू, समझ रहे।

0: गंगा जी में गिर गया, ऐसे चोच कर ली। मानो किसी पक्षी ने पूछा आप तो मरने जा रहा है, भागीरथी का एक बूंद मुख में चला जाए तो कल्याण हो जाता है, चोच के ऊपर उठाए। बोले मेरा नाम चातक है, मैं पीता हूं तो सिर्फ अपने प्रीतम मेघ के द्वारा दिया हुआ स्वाति का बूंद, नहीं तो मर जाऊंगा, लेकिन जीते जी गंगा का एक बूंद अपनी चोच पे नहीं आने दूंगा। यह है चातक प्रण।
1: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: 89.6 FM।
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं।
3: कुछ हटके
4: रेडियो महारानी पर आप सुन रहे हैं कृष्ण वाणी।
5: यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मनाम सृजाम्यहम् परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मैं प्रकट होता हूँ, मैं आता हूँ जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं आता हूँ, जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब मैं आता हूँ, सज्जन लोगों की रक्षा के लिए मैं आता हूँ, दुष्टों का विनाश करने के लिए मैं आता हूँ, धर्म की स्थापना के लिए मैं आता हूँ और युग युग में जन्म लेता हूँ।

हे विद्यापति, बृहस्पति देव, हम आपके बीज मंत्र का जाप करते हैं। हमें ज्ञान प्रदान करें, हमारा कल्याण करें, हमारी रक्षा करें।

0: When you face failures, don't change your goal, change your strategy. You are listening to the thoughts of Mr. Vivek Bindra, who is a motivational speaker and a corporate trainer.
1: आप सबका स्वागत है. मैं विवेक बिंद्रा, मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप कंसल्टेंट, बिजनेस कोच. आज बात करूंगा माइंड कंट्रोल और इमोशन कंट्रोल की. काफी लोग बात करते हैं मूड की, कॉन्फिडेंस की, माइंड की, इमोशन की, उसको कैसे बिल्ड किया जाए, कैसे कंट्रोल किया जाए. ये वीडियो भगवद गीता के पे आधारित एक शक्तिशाली टूल और फ्रेमवर्क के साथ उसको लेने के लिए, पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए. कृष्ण कंफर्म करते हैं माइंड कंट्रोल के विषय में बहुत कुछ गीता के अंदर. पहला मैं श्लोक लेता हूं, विषयाविनी वर्तन्ते निराहारस्य देहि नाम रसवर्जम रसोपस्य परम दृष्टा निवर्तते. कृष्ण क्या कहते हैं, यू कैन नॉट डिस्कार्ड द लोअर इमोशन अनलेस यू डेवलप अ हायर इमोशन. यू कैन नॉट डिस्कार्ड द लोअर कॉन्शियसनेस अनलेस यू डेवलप अ हायर कॉन्शियसनेस. राइट, सो डेवलप अ हायर कॉन्शियसनेस टू डिस्कार्ड द लोअर वन. एक बार और, पीछे मैंने एक सेक्स अटैचमेंट वाले वीडियो में सिमिलर श्लोक पर चर्चा किया था, डेवलप अ हायर कॉन्शियसनेस टू डिस्कार्ड द लोअर वन. सबसे पहला रूल क्या है, ना तो आप माइंड कंट्रोल कर सकते हो कभी भी, ना ही आप इमोशन कंट्रोल कर सकते हो कभी भी, ना ही आप मूड कंट्रोल कर सकते हो कभी भी. तो आप कर क्या सकते हो, आप इनको रिप्लेस कर सकते हो. कम ऑन, क्या कर सकते हो, रिप्लेस. जैव धर्म में ठाकुर भक्ति विनोद ने 5 प्रकार की चेतनाओं के विषय में चर्चा की थी, आच्छादित, संकुचित, मुकुलित, विकसित और पूर्ण विकसित. ये 5 प्रकार की चेतनाएं होती हैं. पूर्ण विकसित इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियसनेस. आप किस कॉन्शियसनेस में जी रहे हैं उसको क्या धीरे धीरे अपलिफ्ट कर सकते हैं. यू कैन नॉट रिजॉल्व अ प्रॉब्लम एट अ लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस विच हैज क्रिएटेड इट. एक बार और, कम ऑन, आप उस समस्या को सॉल्व ही नहीं कर सकते जिस चेतना में उस समस्या को उत्पन्न किया गया था. अगर आप लोअर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, आच्छादित, संकुचित के लेवल पे फंसे हुए हैं और यहां आप समस्या महसूस कर रहे हैं, तो इस समस्या को जिस चेतना ने इस समस्या को प्रोड्यूस किया, उसी चेतना में रहकर आप इस समस्या को रिजॉल्व नहीं कर सकते. तो पहला रूल क्या है, अपनी चेतना को उठाना पड़ेगा. कम ऑन, क्या करना पड़ेगा, रेज द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, डेवलप अ हायर कॉन्शियसनेस टू डिस्कार्ड द लोअर वन. परम दृष्टा निवर्तते, नहीं तो तकलीफ रहेगा. अब कृष्ण से छठे अध्याय के 34वें श्लोक के आसपास चर्चा हुई कृष्ण और अर्जुन की, कि माइंड कंट्रोल करें कैसे. अर्जुन क्या कहते हैं, मुझसे तो माइंड कंट्रोल होता ही नहीं भगवान. तो छठे अध्याय में कृष्ण कहते हैं, असंशयम महाबाहो हो मन दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेया वैराग्येन च गृह्यते. कम ऑन, अभ्यास वैराग्य, अभ्यासेन तु कौन्तेया वैराग्येन च गृह्यते. अभ्यास और वैराग्य के द्वारा ही होगा, नहीं तो असंशयम महाबाहो, हे महान बलशाली भुजाओं वाले अर्जुन, आपसे भी मन्ना दुर्निग्रहम चलम, माइंड कंट्रोल नहीं होने वाला. तो बोला फिर करना क्या है, अगर मैं भी नहीं कर सकता तो करना क्या है. तो कृष्ण ने क्या कहा, कुछ अभ्यास और कुछ वैराग्य. आप जानना चाहते हैं क्या अभ्यास क्या वैराग्य. अभ्यास बिल्ड करना है ऊंची चेतना में आने के लिए, वैराग्य क्रिएट करना है इस चेतना में रोकने के लिए जो सोर्सेज हैं उनसे वैराग्य क्रिएट करना. अभी ये करेंगे कैसे, देखिए ध्यान दीजिए. आपका माइंड बैंक एक स्टोर हाउस की तरह काम करता है. उस स्टोर हाउस में बहुत प्रकार के पुरानी एक्सपीरियंस और पुरानी लेवल की कॉन्शियसनेस के द्वारा इमोशंस ऑलरेडी है, कुछ छुपे हुए, दबे हुए, कुछ उठे हुए, कुछ निकले हुए, अलग अलग प्रकार के उस डेटा बैंक के अंदर इमोशंस हैं. देर आर 36 टाइप्स ऑफ स्ट्रॉन्ग इमोशन, जिसमें से पहले 12 नेगेटिव इमोशन, बीच के 12 थोड़े न्यूट्रल इमोशन और अगले 12 बड़े स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव प्रोडक्टिव इमोशंस. आपके पास मेमोरीज हैं, आपके स्टोर हाउस के अंदर माइंड में मेमोरीज हैं. उन मेमोरी में एक्सेस करिए पहले किसी इंसिडेंट को जो प्रोडक्टिव इमोशन से जुड़ा हुआ इंसिडेंट था. अब मैं फ्रेमवर्क दूंगा, अभी पूरा समझ में नहीं आएगा आपको जब तक पूरा वीडियो नहीं देखते. पूरा वीडियो देखिए, रुके अभी साथ में, मेरे साथ ही रहिए. अभी आप एक फ्रेमवर्क देने वाला हूं. प्रोडक्टिव इमोशन की मेमोरी को वापस रिवाइव करना है. याद करिए वो दिन जो आपकी लाइफ का हाईएस्ट अचीवमेंट का दिन था. याद करिए कोई ऐसा दिन जिस दिन आप बहुत प्रोडक्टिव, बहुत सक्सेसफुल और बहुत ही कॉन्फिडेंट महसूस किए थे. याद करिए कोई ऐसा दिन जिस दिन आपने कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट को हासिल किया था. उस दिन आपके आसपास क्या हो रहा था, उस मेमोरी बैंक से उसको ढूंढ के निकालिए, ढूंढिए उस मोस्ट प्रोडक्टिव जो एक्सपीरियंस था आपके जीवन का, जो बहुत उस दिन आप बहुत खुश थे, आपने उस दिन बहुत कुछ अचीव किया था अपनी लाइफ में, आपकी लोग बहुत तारीफ कर रहे थे, याद करिए। अब तीन चीजें मैं तीन प्रश्न दे रहा हूं। सी वॉट यू सॉ, फील वॉट यू फेल्ट, हियर वॉट यू हर्ड। देखिए सी वॉट यू सॉ, पहला चीज उस दिन आपके आसपास कौन था उस सबको देखिए। दूसरा हियर वॉट यू हर्ड, लोग आपके बारे में उस दिन क्या बात कर रहे थे उसको याद करिए। उसके बाद फील वॉट यू फेल्ट, उस समय आपके मन में क्या इमोशंस थे, आप कैसा सांस ले रहे थे, आप कैसा एक्सपीरियंस कर रहे थे, आपके कंधे कैसे थे, आपका चेहरा कैसा था, आप कैसा फील कर रहे थे उस दिन। उन इन तीन प्रश्नों के उत्तर को ढूंढिए। यानी कि दो स्टेप्स हैं। पहला स्टेप वो इंसिडेंट जो मोस्ट प्रोडक्टिव इंसिडेंट था आपकी लाइफ का, उसको ढूंढ के लाइए, अपने मेमोरी बैंक से निकाल के लाइए। दूसरा तीन प्रश्न लीजिए अपने आप से करिए। सी व्हाट यू सॉ, देखिए उस दिन क्या हो रहा था आपके आसपास कौन कौन था। हियर व्हाट यू हर्ड, लोग आपसे क्या बात कर रहे थे आपके साथ में। फील व्हाट यू फेल्ट, आपका फिजियोलॉजी और साइकोलॉजी कैसा था उस समय, उसको वापस रिवाइव करके लाइए। ये तीन प्रश्नों का जब उत्तर मिलेगा तो वो न्यूरो पाथवे खुल जाएंगे आपके। क्या खुल जाएंगे? न्यूरो पाथवे खुल जाएंगे। अब आपके मेमोरी बैंक से वो वापस आकर के आपके कॉन्शियसनेस में बड़ा होने लग जाएगा। उस समय की जो कॉन्शियसनेस थी वो कॉन्शियसनेस तुरंत वापस आ जाएगी, और वो कॉन्शियसनेस आते ही आप अपने माइंड को, अपने मूड को, अपने इमोशन को डेवलप कर जाएंगे, उस एलिवेटेड कॉन्शियसनेस पे फिर से वापस आ जाएंगे, और उस एलिवेटेड कॉन्शियसनेस से उस मोस्ट प्रोडक्टिव कॉन्शियसनेस, मोस्ट प्रोडक्टिव मेमोरी जिसको आप ट्यून इन कर गए। एफएम चैनल एक समय में एक शहर में 7-8 एफएम चैनल चल रहे होते हैं, आप ट्यून इन करते हैं और बेस्ट एफएम चैनल को चूज करने का अधिकार है आपके पास। एक समय में 700 टीवी चैनल्स हैं आपके टेलीविजन पे, किस चैनल को आप ट्यून इन करना चाहते हैं और किस चैनल को आप सिलेक्ट करना चाहते हैं उसका पूरा अधिकार है आपके पास। देयर इज अ रेंज ऑफ इमोशंस इन योर लाइफ। कपड़े खरीदने जाते हैं आप किसी शोरूम के अंदर, देयर इज अ रेंज ऑफ क्लोथ्स इन द शोरूम। अभी जो पहला कपड़ा मिला ऐसा नहीं कि आप वही लेकर के पहन लेते हैं, आप चूज करते हैं जो आपको सबसे ज्यादा सूट करता है, जो आपके लिए ठीक है, जो आपके लिए अच्छा है। ठीक उसी प्रकार से डू नॉट हैव द एक्सपीरियंस, क्रिएट एंड चूज योर एक्सपीरियंस। एक बार और बड़ी अच्छी बातें बोल देता हूं बीच बीच में मैं, कम ऑन। डू नॉट हैव एक्सपीरियंस, क्रिएट एंड चूज योर एक्सपीरियंस। अपने मेमोरी बैंक में जाइए, निकालिए, ढूंढ के निकालिए। सी व्हाट यू सॉ, उस दिन क्या हो रहा था, लोग आपसे क्या बात कर रहे थे, वो सारी मेमोरी को बड़ा करते जाइए, बड़ा करते जाइए, बड़ा करते जाइए। और जब आपकी कॉन्शियसनेस उस मेमोरी से भर जाएगी, आप उसी कॉन्शियसनेस एलिवेटेड सबसे मोस्ट प्रोडक्टिव कॉन्शियसनेस के पीक स्टेट पे, पीक परफॉर्मेंस प्रोडक्टिविटी वाली कॉन्शियसनेस में एंटर कर गए। जैसे ही आप इस लेवल पे आए, अब क्या होगा, अब आपके पास यही हाईएस्ट मोस्ट प्रोडक्टिव मूड और वो वही माइंडसेट फिर से आ गया। स्टूडेंट्स जो पढ़ाई कर रहे हैं, मेरे टूल्स को ध्यान से देखते रहिए। मैं आपके लिए कई ऐसे टूल्स डालने वाला हूं, क्योंकि स्टूडेंट्स मुझसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। आजकल मैं स्टूडेंट्स के लिए फ्री सेमिनार्स की तैयारी भी कर रहा हूं। 15 अप्रैल को मेरा पहला फ्री बड़ा सेमिनार स्टेडियम में होने वाला, इंदिरा गांधी स्टेडियम में, और उसके बाद आपके शहरों तक पहुंचूंगा। देखिए मैं मुख्य तौर पर तीन बातें बताई। पहला स्टेप है चूज योर मेमोरी, सो योर चॉइस ऑफ मेमोरी विल डेवलप। सेकंड स्टेप अ कॉरेस्पॉन्डिंग कॉन्शियसनेस, उस मेमोरी में क्या कॉन्शियसनेस थी। सेकंड स्टेप कॉरेस्पॉन्डिंग कॉन्शियसनेस अभी मिल जाएगा आपको। आपको चॉइस ऑफ मेमोरी, उससे क्या आएगा आपका कॉरेस्पॉन्डिंग कॉन्शियसनेस, इसको बोलेंगे इट विल डिटर्मिन हाउ डू यू फील नाउ, हाउ डू यू फील नाउ। हाँ, तो पहले मेमोरी ढूंढिए, उससे आपका कॉन्शियसनेस बदलेगा, हायर कॉन्शियसनेस हो जाएगा, और तीसरा उसका रिजल्ट क्या आएगा, हाउ डू यू फील नाउ। इमेजिन करिए अगर आप हर समय मोस्ट प्रोडक्टिव, पीक परफॉर्मेंस प्रोडक्टिविटी की कॉन्शियसनेस को बरकरार रख पाए, तो आपका जिंदगी 10x हो जाएगा। कम ऑन, क्या हो जाएगा, 10x, यू कैन ग्रो 10 times बेटर। इमेजिन करिए अगर हर समय आप उसी कॉन्शियसनेस में रह पाए जो पीक परफॉर्मेंस की कॉन्शियसनेस थी। एक साधक को साधना के लिए उसको सबसे हाईएस्ट कॉन्शियसनेस को वापस लाना चाहिए, एक स्टूडेंट को पढ़ाई के लिए अपना मोस्ट प्रोडक्टिव पढ़ने वाले दिन की फीलिंग और उसके इमोशन, उसकी साइकोलॉजी, उसकी फिजियोलॉजी को खींच के लाना चाहिए। इसी प्रकार एक बिजनेसमैन को नेगोशिएशन के दौरान, सेल्स के दौरान, परिवार में, रिलेशनशिप में, जिम में, हेल्थ के लिए, हर समय जब भी आप चाहें एक स्पोर्ट्समैन, एक एथलीट अपनी बेस्ट कॉन्शियसनेस को रिवाइव कर सकते हैं। केवल याद रखिए फ्रेमवर्क, सी व्हाट यू सॉ, फील व्हाट यू फेल्ट, हियर व्हाट यू हर्ड। तो उसका अर्थ क्या हुआ, आपको महसूस नहीं करना है, अपने आप को महसूस कराना है। राइट, यू ट्यून इन टू व्हाट यू वांट टू क्रिएट, महसूस जो इमोशन, जो आप एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस होता नहीं है, एक्सपीरियंस क्रिएट किया जाता है, आप कर सकते हैं। आपके जो लॉस्ट प्रोडक्टिव न्यूरो पाथवे थे आप उनको रिकॉल के द्वारा वापस ले आएंगे। वो न्यूरो पाथवे जो आपके लिए खो गए थे, छुप गए थे, दब गए थे, आप उनको वापस रिवाइव करके ले आएंगे, उन्हीं प्रोडक्टिव न्यूरो पाथवेज को जनरेट कर देंगे।

0: 89.6 FM.
1: कुछ छक्के
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं.
3: कुछ हटके.
4: जानते हो बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं. 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार.
5: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है.
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के.

Angeline. गुड मॉर्निंग फरीदाबाद भाई, क्या हाल चाल है आप लोगों के? इस शानदार से ट्रैक के साथ आ गई हूँ मैं लेकर यहाँ पर मॉर्निंग एक्सप्रेस। आरजे अंजलि हूँ आपके साथ हर सुबह की तरह। भाई देखो, ये वाली सुबह भी होने वाली है एकदम मस्त, यानी कि यहाँ आपको अपडेट मिलने वाली है आपकी सिटी से लेकर देश दुनिया में क्या हो रहा है ये सब आपको बताऊंगी। वेदर से लेकर आज का स्पेशल डे क्या है ये भी आपको बताने वाली हूँ। तो भाई और क्या कुछ वायरल हुआ है इस बारे में भी बात करने वाली हूँ। तो बहुत सारी चीजें है आज मेरे पास आपके साथ शेयर करने के लिए। तो बस यही कहना चाहूंगी कि हो जाइए रेडी, फटाफट से मसाला वाली चाय अपने हाथ में रख लीजिए, अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए और इस शानदार से ट्रैक को एंजॉय कीजिए। मिलते हैं इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग, क्या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम है। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चालान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए। सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

इस शानदार सुरक के साथ एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 FM पर। मैं हूँ आरजे अंशली आपके साथ और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस। तो भाई अब टाइम हो गया वेदर अपडेट का। अगर आज हाईएस्ट टेम्परेचर की बात की जाए 38 डिग्री जाने वाला है, इसी के साथ अगर मिनिमम की बात की जाए 29 डिग्री रहने वाला है। ह्यूमिडिटी आपको मिलने वाली है 39%, साथ ही विंड स्पीड मिलेगी 10 और इसी के साथ दिन है सनी सनी, यानी कि टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन हुआ है लेकिन गर्मी अभी भी उतनी है। तो इस बदलते मौसम में अपना ख्याल जरूर रखेगा, साथ ही सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM। मिलते हैं इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: अरे भाई इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी।
3: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: सर आपका KYC अपडेट करना है, मैंने आपको एक लिंक भेजा है, उस पर क्लिक कीजिए, वरना आपका अकाउंट और ATM दोनों ही बंद हो जाएगा।
1: बट मेरा KYC तो ऑलरेडी अपडेटेड है।
2: सावधान, अनजाने कॉल्स, फर्जी टैक्स, लिंक और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: अहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है, वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था, वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: खैर, अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: जब का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: सुनो तो, कहाँ चली?
1: बाय।

जस्ट फॉर फन, या जस्ट फॉर फन के नाम पर ना हम कुछ भी कर देते हैं। वेलकम बैक टू रेडियो महारानी, मैं हूँ आरजे अंजलि आपके साथ और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस, जहाँ पर ना मैं आज आपके लिए एक सोशल स्यापा लेकर आई हूँ। इन दिनों बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है और ये जस्ट फॉर फन ना सिर्फ कॉन्टेंट के लिए था। सो वेलकम बैक टू रेडियो महारानी, मैं हूँ आरजे अंजलि आपके साथ और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस। सो मैं एक ऐसा इंसिडेंट लेकर आई हूँ जहाँ पर सुबह उठकर ना पुलिस को ये पता लगा कि एक स्कूल गोइंग टीनेजर बस लेकर 300 किलोमीटर दूर निकल गया है। सो एक शॉकिंग इंसिडेंट सामने आया जहाँ पर एक टीनेजर बॉय जस्ट फॉर फन के नाम पर एक बस चुरा कर ले गया, और सबसे सरप्राइजिंग बात ये थी कि बस में कोई पैसेंजर भी नहीं था, लेकिन उन्हें जस्ट फॉर फन के लिए ये राइड करनी थी। और ऐसा नहीं है कि ये इंसिडेंट एक बार हुआ, ये पिछले 6 महीनों में 3 बार हुआ था। और जब ऐसा करते हुए पकड़ा गया ना, तो स्टोरी में एक ट्विस्ट आया। ट्विस्ट ये था कि बस को ड्राइव करने वाला अंडर एज ड्राइवर, जो बहुत टाइम से बस चला रहा था, लगभग 300 किलोमीटर लॉन्ग ड्राइव भी कर ली। पुलिस भी शॉक्ड थी कि रोड्स पर आखिर ये बस निकली कैसे। एंड थैंकफुली किसी को इंजरी नहीं हुई, लेकिन ये इंसिडेंट ने सेफ्टी कंसर्न जरूर रेज किए हैं। सो माय डियर लिसनर्स, बस यही कहना चाहते हैं कि मूवीज और वीडियो गेम्स अलग चीज है, रियल रोड्स पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत जरूरी है। ड्राइविंग सिर्फ फन नहीं, एक ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड वन मोर थिंग, कि हम जब कंटेंट के पीछे कुछ भी क्रिएट करते हैं ना, सो उसका रिजल्ट बहुत हार्मफुल हो सकता है। फ्रूटफुल कंटेंट क्रिएट कीजिए सो दैट कि आपके ऑडियंस आपसे इंस्पायर हो, ना कि उनकी लाइफ इफेक्ट हो। इस तरह का कंटेंट बनाइए। साथ ही सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM। मिलते हैं इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। क्या हम सब बदल गए हैं? इतना बदल गए हैं कि किसी की सांसें हमारी जिंदगी में कोई मायने ही नहीं रखती।
1: हमें तो बस किसी भी कीमत पर अपनी मंजिल तक पहुंचना है, पर क्या वो कीमत एम्बुलेंस में फंसी एक जान भी हो सकती है?
0: ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आपके चंद पलों की देरी किसी की ठहरती जिंदगी में जान डाल सकती है। इसीलिए एम्बुलेंस का सायरन सुनकर हमें अपनी मंजिल से ज्यादा किसी की जिंदगी की कीमत समझनी चाहिए।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम है। क्या हम सब बदल गए हैं? इतना बदल गए हैं कि किसी की सांसें हमारी जिंदगी में कोई मायने ही नहीं रखती।
1: हमें तो बस किसी भी कीमत पर अपनी मंजिल तक पहुंचना है, पर क्या वो कीमत एम्बुलेंस में फंसी एक जान भी हो सकती है?
0: ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आपके चंद पलों की देरी किसी की ठहरती जिंदगी में जान डाल सकती है। इसीलिए एम्बुलेंस का सायरन सुनकर हमें अपनी मंजिल से ज्यादा किसी की जिंदगी की कीमत समझनी चाहिए।
2: हाँ तो अर्ज किया है।
3: अहो, अर्ज होता है अर्ज।
2: कर रहे हैं आप, सुनो तो
3: इरशाद।
2: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
3: तुम्हारे नंबर पे?
2: हाँ जी।
3: अच्छा,
2: और उन्होंने पूछा क्या?
3: क्या पूछा?
2: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
3: क्या बात कर रहे हो?
2: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
3: अच्छा,
2: हमारी लाइफ में एक खटारा जी साइकिल है, वो भी बेकार है।
3: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधार ली हुई है।
2: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
3: खैर, अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
2: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
3: बाय।
2: सुनो तो, कहाँ चली?
3: बाय बाय।
4: रेडियो महारानी है।

0: 89.6 FM।
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं।
3: कुछ हटके।

कहते हैं ना, अगर कुछ भी अच्छे काम की शुरुआत करनी होती है तो उससे पहले मीठा खा कर जाइए, काम अच्छा होगा। लेकिन एक तरफ ये भी कहा जाता है कि मीठा खाना बुरी बात नहीं, लेकिन हेल्थ का बैलेंस बनाना जरूरी है। वेलकम बैक टू रेडियो महारानी, मैं हूँ आर्जेंशी आपके साथ, और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस, जहाँ पर मैं फिटनेस वाला फंडा लेकर आ गई हूँ। बेसिकली हम सेलिब्रेट कर रहे हैं डायबिटीज वीक। सो अगर इस वीक की बात की जाए तो एक अवेयरनेस वीक कहा जाता है डायबिटीज वीक को, जो हमें डायबिटीज के बारे में बताता है, प्रिवेंशन के बारे में बताता है, और हेल्दी लाइफस्टाइल को प्रमोट करने के बारे में बताता है। सो यहाँ पर ना एक कहानी आज मैं आपको सुनाती हूँ। सो यहाँ पर एक शख्स हर साल अपनी कार की सर्विसिंग टाइम पर करवाता था, लेकिन अपनी हेल्थ चेकअप्स को हमेशा पोस्टपोन करता रहता था। फिर क्या हुआ, फिर एक दिन उसे समझ आया कि बॉडी भी एक मशीन की तरह है, जितने केयर दोगे उतना बेहतर साथ देगी। तो ये कहानी आपके लिए थी, एंड मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी बनाइए, बिकॉज हम इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए चल रहे हैं अपने कंधों पर। कभी सोचा है उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करने के लिए खुद की मेंटेनेंस तो लगेगी ना, यानी कि एक बेहतर लाइफस्टाइल, एक अच्छी डाइट, प्रॉपर स्लीप और अपनी एक्स्ट्रा केयर, बस इतना ही चाहिए हमें। एंड फिर देखिएगा कि हम हर बीमारी से जीत सकते हैं। अगर बात करें ना डायबिटीज की, तो सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर डायबिटीज है क्या। सो डायबिटीज एक कंडीशन है जिसमें बॉडी ब्लड शुगर लेवल्स को प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पाती, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में ना बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। सो इन कॉम्प्लिकेशंस को दूर करने के लिए आप हेल्दी हैबिट्स अपना सकते हैं। टिप ऑफ द डे ये है, रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, बैलेंस्ड मील लीजिए, साथ ही प्रॉपर स्लीप।

एंड रेगुलर हेल्थ चेकअप। कई बार क्या होता है, हम सारी चीजें कर रहे होते हैं लेकिन हेल्थ चेकअप नहीं कराते। ये सोचते हैं कि अगर कुछ नहीं आया तो पैसे वेस्ट हो जाएंगे, बट ये तो अच्छी चीज है ना, अगर कुछ नहीं आया तो इसका मतलब है कि आप अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी दे रहे हो। तो बस यही कहना चाहती हूँ कि हेल्थ अकाउंट में इन्वेस्टमेंट आज करोगे तो फ्यूचर में रिटर्न्स भी अच्छे मिलेंगे। सो यहाँ भी आज मैंने इन्वेस्टमेंट की बात की है, लेकिन ये हेल्दी इन्वेस्टमेंट है। एंड इस डायबिटीज वीक अपनी और अपनी फैमिली दोनों की हेल्थ को प्रायोरिटी बनाइए। हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए, साथ ही सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM। मिलते हैं इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: What, Chumka? Life on Wheels. जहाँ जिंदगी है वहाँ हम हैं। एक तेज हॉर्न के ट्रैफिक में सन्नाटा सा कर गई जब एम्बुलेंस के हॉर्न की आवाज कानों में पड़ गई। आज फिर एक जिंदगी इस ट्रैफिक में अपनी सांसों के लिए लड़ रही है जनाब। एम्बुलेंस को रास्ता देकर आप पूरा कर सकते हैं लाखों जिंदगियों के जीने का ख्वाब, क्योंकि एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी को बचा सकती है।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसी हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।
4: वो सारे

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार उस दिन तो लोरी गाकर सुला भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे
0: हो? हाँ
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली तू बोलता रहा।
1: अरे एक ग्लास तो पीती जाए सुने।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
1: व्हील्स ऑफ लाइफ, व्हील्स ऑफ होप, एम्बुलेंस जो उम्मीद की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।

0: सचिन ये क्या कर रहा है तू?
1: क्या हो रहा है भाई?
2: पापा रोमांटिक सीन लिख रहा हूँ।
1: यहाँ किस तरह बीच सड़क पर नाच कर
2: फील कर रहा हूँ।
1: अरे फील क्या कर रहा है डफर, सब लोग देख रहे हैं।

0: मलयाली क्रिश्चियन है वो। जैसी
1: हर शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है, और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
2: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी है।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

लगता है ये जो दिल्ली एनसीआर के और नॉर्थ इंडिया के लोग है ना, सिर्फ इन्हीं को गर्मी लगती है। यही रीजन है कि इनकी गर्मी को दूर भगाने के लिए ना इन सबका जीपीएस सिर्फ एक ही डायरेक्शन दिखा रहा है, वो है पहाड़। वेलकम बैक टू रेडियो महारानी, मैं हूँ अर्जेंटली आपके साथ और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस। सो भाई गर्मियों से परेशान होकर ना लोग पहाड़ों की तरफ निकल रहे हैं, लेकिन इन्हें नहीं पता कि इनसे अब पहाड़ भी परेशान हो गए हैं। बिकॉज अगर बात करें ना पहाड़ों की, तो मैदानी इलाकों में इस टाइम पर टेम्परेचर 45 से 50 डिग्री तक पहुंच रहा है और इस वजह से हजारों लोग वीकेंड और समर वेकेशन के लिए पहाड़ों की तरफ निकल पड़े हैं। लेकिन इसका रिजल्ट ये आया है कि मनाली, रोहतांग, नैनीताल, औली और बद्रीनाथ इन सभी डेस्टिनेशंस पर गाड़ियां चल कम और रेंग ज्यादा रही है। अब आप इस बात से तो समझ ही गए होंगे कि इतना ज्यादा ट्रैफिक लग गया है पहाड़ों पर कि पहाड़ों को भी सांस नहीं आ रही है, और यहाँ से हम जा रहे हैं पहाड़ों पर खुली सांसें लेने के लिए। फिर ये सब पता होने के बावजूद भी ना हम रुक नहीं रहे, हम जोरों शोरों से पहाड़ों की तरफ निकल रहे हैं। तो भाई पहले तो ये जानिए कि हम पहाड़ों की तरफ जा क्यों रहे हैं। ठंडी हवाएं लेने, बर्फ के नजारे देखने, रेनी वेदर एंजॉय करने और सिटी की हीट से थोड़ी दूर। लेकिन आपको पता है इस वक्त ना पहाड़ों पर ही कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, सिर्फ और सिर्फ मिलेगा बहुत लंबा किलोमीटर का जाम। सो माय डियर लिसनर्स, बस एक रिमाइंडर लेकर आई हूँ कि ट्रिप ना फिर कभी प्लान कर लीजिएगा, ये गर्मी एसी में बैठकर कम कर लीजिए, पहाड़ों का थोड़ा सा रेस्ट दे दीजिए, क्योंकि एनवायरनमेंट हेल्दी रहेगा तो शायद हम हेल्दी रह पाएंगे। और अगर गर्मी की बात करूँ ना, तो गर्मी का लेवल ऐसा है कि लोग सोच रहे हैं ट्रैफिक में फंस जाएंगे तो भी चलेगा, बस एसी वाली हवा नहीं चाहिए। सो इसीलिए आज मैंने सोचा क्यों ना एक ट्रैवल टिप लेकर आई हूँ। सो आज की ट्रैवल टिप ये है, अगर आप भी पहाड़ों का प्लान बना रहे हैं तो होटल्स पहले से बुक कर लीजिए, ट्रैफिक अपडेट्स चेक करके ही पहाड़ों पर जाइए और पेशेंस फुल टैंक में भर कर जाइएगा, सो दैट कि अगर आप ट्रैफिक में फंस भी जाए ना तो आपको खुद पर गुस्सा ना आए कि क्यों ये ट्रिप बनाई। और यही कहना चाहते हो कि पहाड़ों में वेदर कूल है लेकिन ट्रैफिक बिल्कुल भी कूल नहीं है। सो आपके मूड को कूल करने के लिए ही मैंने आपको आज ये अपडेट दिया, सो दैट कि आप फंस ना जाए पहाड़ों में। सो इन बातों का ख्याल रखेगा और मिलता है इस म्यूजिक ब्रेक के बाद, तब तक एंजॉय कीजिए रेडियो महारानी 89.6 FM पर ये शो।

0: जो कि न चले।
1: जहां सुबह की शुरुआत होती है फिटनेस और हेल्थ टिप्स के साथ, सुनना न भूलिए मॉर्निंग एक्सप्रेस आरजे अंजलि के साथ।

0: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। वैसे ही अगर हमने अभी कदम नहीं उठाए तो प्रदूषण को काबू करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए गाड़ियों का कम इस्तेमाल करें, पौधे लगाएं और अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें, वरना इस डॉन को पकड़ना सच में नामुमकिन हो जाएगा।
1: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

जब ट्रैफिक हो टाइट और मौसम का मूड हो लाइट, वही मॉर्निंग एक्सप्रेस में मिलती है ट्रेंडिंग बाइट। सुनना ना भूले सुबह 7 से 10 ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: हर शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है, और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाए और अपनों की हंसी को बचाए। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी है।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

जब प्यार सच्चा हो ना तो आप अपने प्यार के लिए कुछ भी कर सकते हैं। फिर क्या चंदा तारे, फिर क्या ताजमहल, आप गिफ्ट में ना कुछ भी दे सकते हैं। और ऐसा ही कुछ दिल्ली के दीवाने ने कर दिखाया। वेलकम बैक टू रेडियो महारानी, मैं हूँ आरजे अंशी आपके साथ और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस। इन दिनों गर्मी इतनी ज्यादा है कि सनस्क्रीन लगाना जरूरी है, और अगर सनस्क्रीन की तरफ देखा जाए ना तो बहुत ही मोटा खर्चा नजर आता है। लेकिन जब आपको अगर ऐसा पार्टनर मिल जाए ना जहाँ आपके लिए सनस्क्रीन भर भर कर आए तो फिर और क्या ही चाहिए। कहते हैं ना, जब प्यार सच्चा हो तो गिफ्ट्स में फ्लावर्स नहीं सनस्क्रीन के कार्टन्स भी हो सकते हैं। दरअसल इन दिनों सोशल मीडिया पर एक फनी सटायर बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें एक दिल्ली बॉय ने अपनी गर्लफ्रेंड को पीक समर में बाहर मिलने के लिए बुलाया और मोहतरमा ने कर दिया मना। उसका रीजन ये था 45 डिग्री की गर्मी और धूप का अटैक। तो मैडम ने अपने पार्टनर को बोला, देखिए ऐसा है इस गर्मी में हम तो बाहर नहीं आ पाएंगे क्योंकि टैन बहुत हो जाएगा। तो फिर क्या था, पार्टनर ने भी सोच लिया और गर्लफ्रेंड को कर दिए 67 पैकेट सनस्क्रीन गिफ्ट। तो इस गिफ्ट के बाद ना मोहतरमा मान गई और दोनों की मुलाकात भी हो गई। देखिए वैसे फनी बहुत है लेकिन गिफ्ट बहुत कमाल का था। और जब भी अगर किसी को आप गिफ्ट देने का सोचे ना तो ये जरूर सोचेगा कि वो गिफ्ट उनके कितने काम आ सकता है। सो अगर इस स्टोरी की बात करूँ ना तो स्टोरी के पीछे का मोटिव बहुत ही बढ़िया था। गिफ्ट ऐसा दो कि काम आए। और इस दिल्ली की गर्मी में इन दिनों प्यार का असली टेस्ट भी हो गया। तो भाई जो इतनी भरी गर्मी में मिलने आ जाए शायद वही सच्चा प्यार है। और देखिए मजाक अपनी जगह, लेकिन इस वेदर में खुद का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है। हाइड्रेटेड रखिए खुद को, सनस्क्रीन लगाइए और आफ्टरनून सन से बचकर रहिए, सो दैट कि आप इस गर्मी से बच सके। सो दिल्ली की गर्मी में रोमांस से पहले सर्वाइवल जरूरी है, इस चीज का ख्याल जरूर रखिएगा। क्योंकि उन मोहतरमा को तो सनस्क्रीन मिल गई लेकिन आपको कोई सनस्क्रीन देने वाला नहीं है। तो खुद ही अपनी सनस्क्रीन खरीदिए, खुद ही अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM। मिलते हैं इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। वैसे ही अगर हमने अभी कदम नहीं उठाए तो प्रदूषण को काबू करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए गाड़ियों का कम इस्तेमाल करें, पौधे लगाएं और अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें, वरना इस डॉन को पकड़ना सच में नामुमकिन हो जाएगा।
1: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।
2: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

आता माझी सटक सटक बम तेरा गुदे खाए, कमर पे तेरी बटरफ्लाई, बॉडी तेरी मक्खन जैसे, खाने में बस तू बटर खाए। कम ऑन बेबी टिकट टिकट काटू तेरी टिकट टिकट, खेलता नहीं क्रिकेट विकेट पर ले लूं तेरी विकेट विकेट।

0: तेरे अंग अंग तेरा, तेरे लिए कुछ भी कर लूंगा, तेरी मैं हर लूंगा कोई भी पीड़ा। पागल हुआ तेरे पीछे जैसे दिमाग में कीड़ा, लगे मीठी जैसे शकर शकर, आजा चला ले चक्कर चक्कर, बाकी के लौंडे पकड़ पकड़। I am the baddest motherfucker.
1: Yeah. Heartbeat.

वेलकम बैक टू रेडियो महारानी। मैं हूँ आरजे अंशी, आपके साथ और शो लेकर आ गई हूँ मॉर्निंग एक्सप्रेस। सभी को पता है कि गर्मियों का सीजन है और गर्मियों का सीजन अपने पीक पर रहते ही ना एक चीज बहुत तेजी से बढ़ती है, वो है टेम्परेचर। सो टेम्परेचर रोज नए रिकॉर्ड्स बना रहे हैं। सो ऐसे में एसी और कोल्ड ड्रिंक्स ही काफी नहीं है, बल्कि अपनी बॉडी को अंदर से कूल और हेल्दी रखना भी उतना ही जरूरी है। और बस इसलिए रेडियो महारानी 89.6 FM पर मैं लेकर आ गई हूँ मॉर्निंग एक्सप्रेस पे हेल्थ हाजिर है में योगा वेलनेस वीक, जहाँ हर दिन आपको टिप मिलेगी इन गर्मियों में खुद को किस तरह से प्रिवेंट करना है। सो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं योगा एक्सपर्ट सौम्या जी, जो हमें ये बताएंगी कि समर सीजन में योगा की हेल्प से हम खुद को हीट एग्जॉशन, डिहाइड्रेशन और सीजनल हेल्थ प्रॉब्लम से कैसे बचा सकते हैं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कौन सा योगासन, ब्रीदिंग टेक्निक्स और डेली हैबिट्स आपको इस गर्मी में फिट और एनर्जेटिक रख सकती है, तो बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ, जहां पर बातों का सिलसिला थमने नहीं वाला, बल्कि आज हमें ज्वाइन कर रही हैं सौम्या जी। सो बातों का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा, लेकिन इस म्यूजिक ब्रेक के बाद तब तक कहीं मत जाइएगा, बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: मंजिल सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो सफर की कद्र करते हैं। कभी कभी एक छोटी सी लापरवाही पूरी कहानी बदल देती है। हेलमेट कोई बोझ नहीं, यह आपकी समझदारी का सबसे बड़ा सबूत है।
1: अगली बार सफर पर निकलने से पहले इस छोटी सी समझदारी को अपने सिर पर जरूर रखिए, क्योंकि आपकी एक सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हाँ तो अर्ज किया है।
2: अर्ज
1: अभी करते हैं, सुनो। स्पैम कॉल करके आजकल दिमाग खा जाते हैं।
0: बाबा बाबा,
1: कोई फर्जी रिश्तेदार तो कोई फर्जी ऑफिसर बनकर हमें डांट देते हैं।
0: तुम अभी इसे लायक।
1: चुप रहो, आगे सुनो। मैं कहता हूँ कि बैंक की डिटेल्स OTP सब दे दूंगा।
3: अच्छा, बस मेरी शायरी सुन लो।
0: फिर
1: ये सुनते ही पहली फुर्सत में वो फोन काट देते हैं।
0: अरे वाह, तुम्हारी शायरी का कुछ तो फायदा हुआ।
2: अब तुम बोलते रहो, हम चलते हैं।
1: अरे, बाय।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही ना रह जाए।
2: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हाँ तो शुरू होते हैं और अर्ज करते हैं।
0: अर्जुन नहीं होता अर्ज अर्ज।
1: शायरी पे ध्यान लगाओ
0: इरशाद।
1: रोडवेज बस जैसा अपना हाल है यारों।
0: मेरा नहीं तुम्हारा ही होगा
1: सबका ये। सब कुछ टूटा फूटा है फिर भी अपना रुतबा है यारों।
0: ये बात तो सही है।
1: और बस की याद आती है जब भी लाइफ में कुछ समझ नहीं पाता हूँ।
0: कैसे कैसे?
1: कंडक्टर बोलता है आगे बढ़ो तो मैं मोटिवेट हो जाता है।
0: अरे यार वो तुम्हें कह रहा था कि मुंह उठाकर बस से उतरो और आगे बढ़ो। अब तुम बोलते रहो मैं तो चली को मेरी बस आ गई।
1: सुनो सुनो हेलो।

0: वेलकम बैक टू रेडियो महारानी। मैं हूँ आरजेंसी आपके साथ और शो लेकर आ गई हूँ मॉर्निंग एक्सप्रेस, जहाँ हम इस वीक सेलिब्रेट कर रहे हैं योगा वेलनेस वीक। सो हेल्थ हाजिर है। मैं आज हम बात कर रहे हैं इस गर्मी के सीजन में खुद को किस तरह से बचाया जा सकता है इस बढ़ते टेम्परेचर से, हीट एग्जॉशन से, साथ ही डिहाइड्रेशन से। और भी बहुत सारी बातें हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। आज रेडियो महारानी के स्टूडियो में जुड़ चुकी है सौम्या जी, जो कि एक योगा टीचर है। तो चलिए इनसे बात करते हैं और टिप ऑफ द डे जानते हैं।
1: हाँ, तो अंजलि, अभी आप पूछ रही थी मुझसे कि हमें कौन से आसन करने चाहिए, कौन से आसन नहीं करने चाहिए। तो मैं ऐसा कहूंगी अंजलि कि हम हर आसन कर सकते हैं, ऐसा कोई इतना फास्ट एंड रूल नहीं है। बट द थिंग इज, इन दिस पीक समर्स हम जितने हर आसन को बहुत सूदिंग वे में करें, सॉफ्ट वे में कहें, उसका इंटेंसिटी बड़ा कम कर दें। जैसे कि जब बहुत सर्दी होती है तो हम उसकी इंटेंसिटी बढ़ा देते हैं कि हमें स्वेट हो। अब बहुत ज्यादा स्वेट ऑलरेडी हो रहा है तो उसकी इंटेंसिटी कम कर दो। सपोज अगर सर्वांग आसन भी मैं कह रही हूँ करना है, दिस इज एन एडवांस आसन, तो उसमें तुम उसकी इंटेंसिटी बहुत पिलोज लगा कर करो। व्हाट आई वुड सजेस्ट, यूज द पिलोज, प्रॉप्स, अच्छे से प्रॉप्स यूज करो, उस आसन को भी इंजॉय करो। यू कैन इंजॉय ईच एंड एवरी आसन इन समर्स ऑल्सो, बट उसकी इंटेंसिटी को कम करना। जैसे कपालभाति प्राणायाम है, वो हम इतनी पीक समर्स में भस्त्रिका नहीं करते हैं, लेकिन अगर हम उसको बहुत सॉफ्टली 10-12 बार, जहाँ 100 स्ट्रोक करते हैं, अगर हम 10-12 बार सिर्फ कपालभाति को प्यार से कर लें, तो वो भी हमें बहुत बेनिफिट देगा। सो बैलेंस इज अ लाइफ, यू नो। सो थैंक यू लिसनर्स, आप सबको मुझे ये बताकर बहुत अच्छा लग रहा है और मैं आपके लिए बहुत प्यारी प्यारी चीजें लाती रहूंगी। अब मैं चलती हूँ। अच्छा तो हम चलते हैं, पूछोगे नहीं फिर कब मिलोगे, कहाँ? रेडियो महारानी 89.6 FM पर। बाय बाय, लव यू ऑल।
0: थैंक यू सो मच सौम्या जी, हमारे लिसनर्स तक इतनी खूबसूरत बातें पहुंचाने के लिए और ये बताने के लिए कि बीट द हीट यानी समर सीजन, खुद को गर्मियों से किस तरह से बचाना है। और बातों का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा, लेकिन आज नहीं, आपसे फिर मिलेंगे कल एक नई टिप ऑफ द डे के साथ। और बस यही कहना चाहती हूँ लिसनर्स, योगा से ही होगा। सो अपनी फिटनेस का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए, साथ ही बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ। मिलते हैं इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। एक तेज हॉर्न के ट्रैफिक में सन्नाटा सा कर गई जब एम्बुलेंस के हॉर्न की आवाज कानों में पड़ गई। आज फिर एक जिंदगी इस ट्रैफिक में अपनी सांसों के लिए लड़ रही है जनाब। एम्बुलेंस को रास्ता देकर आप पूरा कर सकते हैं लाखों जिंदगियों के जीने का ख्वाब, क्योंकि एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी को बचा सकती है।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके।
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार उस दिन तो लोरी गाकर सुला भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे
0: हो?
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली तू बोलता रहा।
1: अरे एक ग्लास तो पीती जा सुन।

शानदार से ट्रैक के साथ एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 एफएम पर। मैं हूँ आरजे अंजलि आपके साथ और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस। फिलहाल बहुत सारी बातें मैंने आपके साथ की हैं, बहुत सारी अपडेट्स मैंने आज आपको दी हैं और मेरा टाइम हो गया है यहाँ से जाने का। बेसिकली सुबह 7 बजे आई थी और 10 बजने वाले हैं, तो भाई कल फिर से मिलेंगे बहुत सारी बातों के साथ, बहुत सारी अपडेट्स के साथ, बहुत सारे एंटरटेनमेंट के साथ। लेकिन तब तक मेरा इंतजार जरूर कीजिएगा और फिलहाल के लिए दीजिए मुझे इजाजत। मिलते हैं कल सेम टाइम सेम प्लेस ऑन योर रेडियो महारानी 89.6 एफएम पर।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
2: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।
3: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
4: ये सड़कें तुम्हारी कहानियां नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
1: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी। 89.6 FM कुछ हटके।

0: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।
2: हर

इसी गाने के साथ आप सभी का स्वागत है मेरे शो में, यानी कि फरीदाबाद की गलियों से। यहाँ दोस्तों अब हम बात करते हैं सबसे पहले मौसम के बारे में, जहाँ 10:07 इस वक्त हो रहे और बात की जाए मौसम की तो 32 डिग्री सेल्सियस तापमान

हैदराबाद शहर का बना हुआ है, जहाँ पिछले 2-3 दिन यही तापमान 36 to 38 तक बना रहा, 10 बजे के आसपास 32। कल भी शाम से मौसम था कि बारिश लग रहा है, आ सकती है या नहीं, बाद में मौसम उड़ता चला गया, लेकिन आज फिर से ऐसा ही है और मौसम बगैर की देखिए अब बारिश जरूर आएगी। ये वीकेंड कुछ ऐसा ही जाने वाला है, बारिश के साथ बढ़िया मौसम होते हुए जहाँ बात कीजिए गर्मी थोड़ी गिरावट आने वाली है। जी बिल्कुल, मौसम 3-4 दिन बढ़िया रहेगा और बारिश के असर आज से लेके संडे तक बने रहने वाले हैं। रहेगा इंतजार मौसम यानी कि वीकेंड को बढ़िया बेहतरीन बना देने वाला है, जहाँ एक भी कंट्रोल होते नजर आ रहा है।

0: सारथी रथ रोको, इधर देखो।
1: क्या हुआ महाराज, कोई इलेक्शन रैली जा रही है क्या?
0: रैली नहीं, ये देखो सड़कों और गलियों में हर जगह कचरा। नगर निगम के इलेक्शंस आ गए हैं, लेकिन सफाई का क्या?
1: आप बिल्कुल सही कह रहे हैं महाराज, वोट तो देना है पर सिर्फ वादों पर नहीं, जो असल में काम करे उन्हीं को।
0: बस यही तो कहना है, वोट उनको दो जो शहर की सफाई को प्रायोरिटी दें, जो सिर्फ अपनी कुर्सी के नहीं गलियों और सड़कों के भी बारे में सोचें।
1: बिल्कुल, इस बार वोट सिर्फ प्रॉमिसेस पर नहीं बल्कि साफ सड़कों और बेहतर शहर के लिए होगा।
2: रेडियो महारानी ला रहा है सिटी की सफाई कैंपेन, अपना वोट उन्हें दें जो सफाई को सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। वोट वाइजली, वोट रिस्पॉन्सिबली। शहर हमारा, जिम्मेदारी भी हमारी।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया हूं लेकर के शो, यानी कि फरीदाबाद की गलियों से। यहां दोस्तों बात करते हैं जहां हाईवे एक्सप्रेस के लिए एक और कनेक्टिविटी स्टार्ट की गई है। जी हाँ, दिल्ली आगरा हाईवे से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की ओर जाने के लिए जहां एक रास्ता और खोला गया। बात करते हैं अब फरीदाबाद से बल्लभगढ़ जाने वाली लेन पर बना दिया गया नया कट, जहां पे इस कट के बनने से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस से सीधा जुड़ता नजर आया। डायरेक्टली अगर बात की जाए तो नेशनल हाईवे की सर्विस लेन पर सेक्टर 4 और गुड़ियर चौक के सामने जल भराव को लेकर FMGA खुदाई करके पानी निकासी के लिए पाइपलाइन डालने का काम कर रहा है। तो वहीं यहाँ पे उसके पास बल्लभगढ़ के पास ये कट नया डेवलप किया गया है, जो कि लोग घूम के नहीं आना पड़ेगा, आप डायरेक्ट इस हाईवे को पिक कर सकते हैं। बाकी ऐसी भी चर्चा होती रहेंगी, उससे पहले एक और खूबसूरत सा ट्रैक ओनली ऑन रेडियो महाराज।

0: सुनना सुनना।
1: जिनके कान संगीत सुनना पसंद करते हैं वो रेडियो महारानी 89.6 के अलावा और कुछ नहीं सुनते हैं।
0: अरे रफ्ता रफ्ता देखो आग मेरी लड़ी है। अरे

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौटा लेकर के शो, यानी कि फरीदाबाद की गलियों से। यहाँ दोस्तों बात करते हैं साइबर फ्रॉड्स के बारे में, जहाँ आए दिन कुछ साइबर फ्रॉड्स होते नजर आते हैं, कभी कोरियर्स के नाम पे, कभी वेबसाइट्स के नाम पे, कभी शॉपिंग वेबसाइट्स, कभी फूडिंग वेबसाइट्स, तो कभी समर कैंपेन्स के नाम पे, तो कभी टूर एंड ट्रैवल के नाम पे। आपसे यही कहना चाहूँगा, कभी आपके व्हाट्सएप नंबर, मेल पे, कहीं भी अननोन जगह से कोई लिंक आता है, क्लिक करने के लिए कहा जाता है, प्लीज़ क्लिक ना करें, क्योंकि वो आपका एक क्लिक आपके बैंक अकाउंट को खाली कर सकता है। तो प्लीज़ सावधान रहें, सतर्क रहें। जब भी फैमिलीज, फ्रेंड्स, कलीग्स के साथ बैठे, इन चीज़ों पे, इन बातों पे चर्चा जरूर करें, जिससे कि अवेयरनेस क्रिएट हो और हम साइबर फ्रॉडर्स को हरा सकते हैं। और कभी किसी याद अगर साइबर फ्रॉड जाने अनजाने अगर हो भी जाता है, तो सबसे पहले 1930 पर कॉल करें, जिससे कि आपके अकाउंट से निकला हुआ पैसा अगर फ्रीज किया जा सकता है, समय रहते तो फ्रीज हो जाएगा, जिससे कि आपका पैसा आपको वापसी मिल जाएगा। बाकी ऐसे भी चर्चा होती रहेंगी, उससे पहले एक और खूबसूरत गाना ओनली ऑन रेडियो महारानी।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: तो अर्ज क्या है?
0: अर्ज
1: करते हैं
0: इरशाद,
1: जेबों में आइस क्यूब डालकर गर्मी भगाता हूँ, जेबों में आइस क्यूब डालकर गर्मी भगाता हूँ, तौलिया और बनियान पहनकर ऑफिस आता हूँ।
0: ऑफिस जाते हो या शौचालय?
1: अरे आगे सुनो।

0: मंजिल सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो सफर की कद्र करते हैं। कभी कभी एक छोटी सी लापरवाही पूरी कहानी बदल देती है। हेलमेट कोई बोझ नहीं, ये आपकी समझदारी का सबसे बड़ा सबूत है।
1: तो अगली बार सफर पर निकलने से पहले इस छोटी सी समझदारी को अपने सिर पर जरूर रखिए, क्योंकि आपकी एक सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।
4: ऑफिस स्ट्रेस से लेकर बैक पेन तक और एंजाइटी से लेकर हेयर फॉल तक एक ही है सोल्यूशन, कायरेली आयुर्वेदिक सेंटर फरीदाबाद, जिन्हें है 35 सालों का आयुर्वेदा एक्सपीरियंस और जहां होती है हर दर्द की छुट्टी। यहां मिलती है अभ्यंगम थेरेपी, चार हाथों से की जाने वाली वॉर्म ऑयल थेरेपी जो स्ट्रेस को मेल्ट करे और स्किन को

के लिए कॉल करें 9650680900 और पाएं 25% का डिस्काउंट। सो कम एंड ज्वाइन कारली आयुर्वेदिक सेंटर एंड टेक अ डीप ब्रीथ।

0: बन्नों की सहेली से लेकर दीदी का दीवाना देवर पूरे सिनेमा की अपडेट मिलेगी ओनली इन फिल्मी फ्लेवर।
1: बंदा है ये खुद से बेगाना, अजी बंदा है ये खुद से बेगाना।

0: इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया हूँ लेकर के शो यानी कि फिल्मी फ्लेवर। यहाँ दोस्तों अब हम बात करते हैं बशीर बद्र के बारे में, जहाँ बात की जाए बहुत ही बेहतरीन एक्टर रहे और जो कुछ समय पहले हमारे बीच नहीं रहे। अगर उनकी बात की जाए इंडस्ट्री में उनका योगदान हमेशा याद रहे। मीना कुमारी के साथ अगर बात की जाए तो आर्टिकल्स में उनकी पूरी पुरानी याद शेयर की गई है, जहाँ बशीर बद्र ने बताया था कि मीना कुमारी उनके शहर की एडमायरर थी। उन्होंने याद किया कि मीना कुमारी ने उनके एक कपलेट पर कहा था, दिस कपलेट विल ऑलवेज स्टे विद मी। बशीर बद्र को उर्दू गजल का एक मास्टर पॉइंट ऑफ लव कहा जाता है। और बात की जाए तो मीना कुमारी उनका ये एक छोटा सा जो एक जिक्र आता है कहीं ना कहीं हर किसी के दिलों में छा जाता है कि बशीर बद्र और मीना कुमारी जो हैं दोनों का एक छोटा सा ये जो बातचीत रही थी हमेशा कहीं ना कहीं लफ्जों में अल्फाजों में रह जाती। बाकी ऐसी भी चर्चाएं तो करता ही रहूंगा, उससे पहले एक और ट्रैक।
1: માતાજી ને હમ કહીને કહું છું કે વા ફરે વાદળ ફરે વાયરો ફરે પણ એક વાર બોલ્યા પછી મારા મિત્રો આ મિત્રો કદી ના ફરે કે હા લો

0: सुनना सुनना।
1: जिनके कान संगीत सुनना पसंद करते हैं वो रेडियो महारानी 89.6 के अलावा और कुछ नहीं सुनते हैं।
2: अरे रफ्ता रफ्ता देखो आग मेरी लड़ी है।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया हूँ लेकर के शो यानी के फिल्मी फ्लेवर। यहाँ बात करते हैं टाइगर श्रॉफ और विद्युत जामवाल के एक अपकमिंग एक्शन लव स्टोरी के बारे में। बात की जाए तो मिलाप जवेरी डायरेक्ट कर रहे हैं इस कहानी को और कृति शेट्टी फीमेल लीड रूप में नजर आएंगे। जहां फिल्म की अगर बात की जाए तो सबसे पहले फरवरी 2026 में फ्लोर पर आने वाली थी, लेकिन डिले करते करते काफी लेट हो गया। और बात की जाए तो अब इसकी रिलीजिंग को लेकर की चर्चाएं चल रही, कब इसको रिलीज किया जाए। जहां हाई ऑक्टेन एक्शन रोमांस एक्शन लव स्टोरी होने वाली, इंतजार रहेगा दोनों की इस जोड़ी का धमाल मचाने को। बाकी चर्चा होती रहेंगी, उससे पहले ऑर्डर है

0: अरे भाई, इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: सर आपका KYC अपडेट करना है, मैंने आपको एक लिंक भेजा है, उस पर क्लिक कीजिए, वरना आपका अकाउंट और ATM दोनों ही बंद हो जाएगा।
1: बट मेरा KYC तो ऑलरेडी अपडेटेड है।
2: सावधान, अनजाने कॉल्स, फर्जी टेक्स्ट, लिंक और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं।
3: कुछ हटके
4: चाय सिर्फ जुबान ही नहीं बल्कि दिलों को छू जाती है। होती तो सिर्फ एक कप है पर बातें दिल खोल कर हो जाती हैं।
5: पुराने दोस्त और भूले बिसरे किस्से हंस टी स्टॉल की चाय जब भी पियो रिश्तों में नए जायके घोल जाती है।
6: यारों का 48 साल पुराना चाय का अड्डा सुबह 5 बजे से रात 8 बजे तक हंस टी स्टॉल गोपी कॉलोनी चौक ऋषि मार्केट नियर लक्ष्मी नारायण मंदिर।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया हूँ लेकर के शो यानी के फिल्मी फ्लिप। यहाँ दोस्तों बात कर रहे हैं सिनेमा के गलियारों से एक और बढ़िया कहानी के बारे में। जहाँ अगर बात की जाए बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आए दिन सिनेमा घरों में रिलीज होते नजर आते हैं, कुछ नई कहानियों के साथ तो कुछ नए गाने और नई जोड़ियों के साथ। बात की जाए ऐसी और बढ़िया बढ़िया नई कहानियां, कुछ बायोपिक, कुछ रोमांटिक थ्रिलर कहानियां एक्शन के साथ सिल्वर स्क्रीन तो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम होने जा रही हैं। कौन सी होंगी वो कहानियां, कौन कौन से नए स्टार्स हमें दिखने वाले हैं सिल्वर स्क्रीन पर, ये बताऊंगा आपको कुछ हिंदी जगत से साउथ इंडस्ट्री तक की कहानियों के बारे में, तो कहीं बताऊंगा पंजाबी गानों के बारे में। तो सबसे पहले सुना देता हूं एक और बढ़िया सा गाना ओनली ऑन रेडियो महारानी में।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आए लेकर के शो यानी कि फिल्मी फ्लेवर। यहाँ दोस्तों हम बात करते हैं सिनेमा के गलियारे से आगे बढ़ते हुए पिरामिड स्कीम के ट्रेलर के बारे में, जहां पे बीडी की अपकमिंग ड्रामा सीरीज क्विक मनी ग्रीड और पिरामिड मार्केटिंग फ्रॉड के डेंजरस वर्ल्ड को दिखा दिया। सीरीज की अगर बात की जाए तो हाल फिलहाल स्ट्रीम की गई है, जहां पे परमवीर सिंह चीमा, रणवीर शौर्य और शेखर सुमन नजर। जहां लोगों ने ट्रेलर अच्छा खासा पसंद किया, वहीं पे कहानी को भी पसंद किया जा रहा है। सीरीज में अंजन श्रीवास्तव, अखिलेंद्र मिश्रा, समिता बंसल जैसे स्टार्स भी नजर आ रहे हैं। और बात की जाए डायरेक्शन और क्रिएशन, श्रेयस पांडे इस कहानी के बेहतरीन तरीके से फिल्मा करके सबके सामने लेकर के आया। अब देखते कहानी को कितना ज्यादा पसंद किया जाएगा स्टीम करने के बाद से। बाकी ऐसे भी चर्चा चलती रहेंगी, उससे पहले कॉन्ट्रैक्ट

0: बॉयफ्रेंड हूँ इसलिए गुलाम हूँ।
1: सुन भाई सुरेंद्र।
2: हाँ भाई सुरेंद्र।
1: भाई गर्लफ्रेंड मुझे फोन करती है, अगर फोन भी दी जाए तो किससे बात कर रहे थे। सोचा था शॉपिंग कराने ले जाऊंगा, 500 रुपए का खर्चा करवाएगी, 5,000 का बिल बनवा दिया। सुबह कहती है आई लव यू, दिन में कहती है तुम बदल गए, शाम होती कहती तुम मुझसे प्यार नहीं करते। मैंने पूछा मैं तुम्हारा क्या हूँ, कहती तुम मेरे सब कुछ हो। मैंने कहा सब कुछ में क्या आता है, कहती तुम मुझे ड्राइवर हो, तुम मेरे ATM हो। मतलब तो सिंपल यही हुआ ना कि मैं तो उसका गुलाम हूँ।
2: सही कह रहा तुरिंदर, बॉयफ्रेंड कितना भी कर ले रहेगा तो गुलाम ही।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया हूं लेकर के शो यानी कि फिल्मी फ्लेवर। यहां बात करते हैं केडी द डेविल के बारे में। ओटीटी पर हाल फिलहाल इसको रिलीज की गई, जहां पे लीड कास्ट की अगर बात की जाए तो ध्रुवा सरजा और संजय दत्त नजर आ रहे हैं, और इसमें शिल्पा शेट्टी, नोरा फतेही भी इंपॉर्टेंट किरदार निभाते नजर आए। ये कन्नड़ एक्शन थ्रिलर थिएटर्स में 30 अप्रैल 2026 को स्ट्रीम हुई थी और अब हाल फिलहाल ओटीटी प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम होते नजर आई। केडी डेविल को प्रीमियर डायरेक्ट किया है और ये 1970s बैंगलोर पर बेस्ड पीरियड एक्शन एंटरटेनिंग कहानी है, जिसे अब कन्नड़, हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम में स्ट्रीम किया गया। तो इस कहानी का लुत्फ उठा सकते हैं। 1970s के बैकड्रॉप की कहानी देखना कितना पसंद आने वाले लोगों को ये देखने वाली बात होगी। बाकी ऐसी भी चर्चाएं तो होती रहेंगी, उससे पहले एक और खूबसूरत सा ट्रैक ओनली ऑन रेडियो महारानी।

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, ज्यादा चिल्लाने से बात समझाई नहीं जाती, सिर्फ दिल दूर हो जाते हैं। इसलिए आज से ही आवाज़ धीमी और बात गहरी, फिर देखिए जिंदगी कितनी खूबसूरत लगती है।

0: बहुत बड़ी सफलता है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: अरे अरे रुक जाओ जरा, कैलेंडर चेक किया क्या आज? क्योंकि आज की तारीख सिर्फ डेट नहीं, फुल ऑन फिल्मी अपडेट है बॉस। कभी इसी दिन किसी हीरो ने एंट्री मारी थी ऐसे कि पूरा थिएटर सीटी मार उठा था।
3: मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिश।
2: और कभी किसी ने प्यार का ऐसा सीन दिया कि लोगों ने बारिश का वेट ही करना शुरू कर दिया।
4: प्यार हुआ, इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है।
2: और कभी किसी ने ऐसा स्टाइल मारा कि आज तक वो उस टाइम का ट्रेंड बन गया।
5: आवारा हूँ, आवारा।
2: समझे या और समझाऊं? ये तारीख सिंपल नहीं है, ये तो फुल ऑन फिल्मी गोल्ड माइन है। तो सुनने के लिए सिनेमा का स्वैग, सुनना न भूले सिनेमा का कैलेंडर विद आरजे मोनिक, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। कुछ हटके।

यहाँ हम बात करते हैं सिग्मा के बारे में, जो 31 जुलाई 2026 इसकी रिलीज डेट तय की गई। जशवंत संजय के डायरेक्शन में बन रही है डेब्यू कहानी। फिल्म में संदीप किशन लीड किरदार में नजर आ रहे हैं। मेगस ने वर्ल्ड वाइड थिएट्रिकल रिलीज अनाउंस की है और जशवंत संजय ने सोशल पोस्ट में भी हाई स्टेक्स हासिल करते नजर आए। जहाँ अच्छा खासा प्यार मिलता नजर आ रहा है इसके पोस्टर्स को भी, एक्शन कॉमेडी कहाना जहाँ एक्शन और थ्रिल का भरपूर डोज होने वाला और कहीं ना कहीं कॉमेडी का तड़का लगता भी नजर आएगा इस कहानी। तो रहेगा इंतजार कहानी की रिलीजिंग का, बाकी ऐसी चर्चा होती रहेंगी। उससे पहले एक और ट्रैक।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया हूँ लेकर के शो यानी के फिल्मी फ्लेवर। यहाँ हम बात करते हैं जर्म आइकन को लेकर के लेटेस्ट चर्चाएं ये चल रही हैं कि 22 जून को इसको रिलीज करने का प्लान चल रहा है। जी हाँ, थलपति विजय के 52वें बर्थडे पर इसको सोचा जा रहा है रिलीज करने के लिए। बॉबी देओल ने भी पहले फिल्म को पोंगल 26 पर रिलीज के रूप में मेंशन किया था, लेकिन बाद में रिलीज प्लान शिफ्ट हो गया। अब देखते हैं कि सीएम बनने के बाद उनकी जो अपनी कहानी है सिल्वर स्क्रीन पर कब रिलीज होने जा रही है, उनकी उनकी किरदार निभाते हुए लास्ट कहानी होने वाली है। इसके बाद वो सिनेमा घरों को बाय बाय कह चुके हैं। जहां कास्ट की बात की जाए तो विनोद इस कहानी को डायरेक्ट कर रहे हैं। कास्ट में विजय, बॉबी देओल, पूजा हेगड़े, ममिता बैजू, गौतम वासुदेव मेन, प्रकाश राज जैसे स्टार्स नजर आ रहे हैं। बॉबी देओल स्टार जर्म आइकन का रिलीज अब होने की बस इंतजार है कि कब कहानी को रिलीज किया जाए। इस धमाकेदार एक्शन से भरपूर कहानी को सिल्वर स्क्रीन पर देखा जाए।

0: साइबर ठगी से बचने के लिए अपनाएं कुछ सरल उपाय।
1: इंटरनेट मीडिया अकाउंट या मोबाइल फोन पे पैसे की मांग पर भरोसा ना करें। किसी भी मैसेंजर ऐप पर अनजान वीडियो कॉल से सावधान रहें।
0: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौटा है लेकर के शो यानी के फिल्मी फ्लेवर। यहाँ दोस्तों आज सिनेमा के गलियारे से हमने बहुत चर्चाएं करी कि कौन कौन सी नई कहानियां सिनेमा घरों में रिलीज होने को आए तैयार, कौन से नए गाने, ट्रेलर, टीजर, फर्स्ट लुक, डायरेक्टोरियल डेब्यू, तो कहीं है नई जोड़ियों का आगाज सिल्वर स्क्रीन पर। सिल्वर स्क्रीन के साथ ओटी प्लेटफॉर्म की किस्से कहानियां, थ्रिल्स, स्पाय और कॉमेडी रोमांटिक से भरपूर कहानियां रिलीज होने को आए तैयार। ऐसी और भी चर्चा आप सबके लिए लेकर के आता रहूंगा, लेकिन आज नहीं, अब आपसे मुलाकात होगी कल के दिन सेम टाइम सेम जगह। रेडियो महारानी 89.6 एफएम को छटके।

0: सारथी रथ रोको, इधर देखो।
1: क्या हुआ महाराज, कोई इलेक्शन रैली जा रही है क्या?
0: रैली नहीं, ये देखो सड़कों और गलियों में हर जगह कचरा। नगर निगम के इलेक्शंस आ गए हैं, लेकिन सफाई का क्या?
1: आप बिल्कुल सही कह रहे हैं महाराज, वोट तो देना है पर सिर्फ वादों पर नहीं, जो असल में काम करे उन्हीं को।
0: बस यही तो कहना है, वोट उनको दो जो शहर की सफाई को प्रायोरिटी दें, जो सिर्फ अपनी कुर्सी के नहीं गलियों और सड़कों के भी बारे में सोचें।
1: बिल्कुल, इस बार वोट सिर्फ प्रॉमिसेस पर नहीं बल्कि साफ सड़कों और बेहतर शहर के लिए होगा।
2: रेडियो महारानी ला रहा है सिटी की सफाई कैंपेन, अपना वोट उन्हें दें जो सफाई को सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। वोट वाइजली, वोट रिस्पॉन्सिबली। शहर हमारा, जिम्मेदारी भी हमारी।

0: हाँ।
1: या चुप रहूं
0: ना,
1: दिल में मेरे आज क्या है?
0: क्या है?

0: तो देखने दो,
1: जल भी रहे हैं।
0: अरे तो चलने दो,
1: खुली सड़क है बाबा।
0: तो क्या हुआ पाई?
1: हाँ तो हट जाए
0: हो जाए।

क्या आप जानते हो, एक वक्त था जब इंडिया में बैडमिंटन सिर्फ एक इंडोर गेम माना जाता था, और एक लड़की थी जो इस गेम को वर्ल्ड मैप पर ले जाने वाली थी। स्वागत है आप सभी का फिर से रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ, और ये कहानी है साइना नेहवाल की, एक ऐसी लड़की जिसने ना सिर्फ मेडल्स जीते बल्कि सोच बदल दी। हरियाणा के हिसार में पैदा हुई साइना का बचपन सिंपल था, ना कोई स्पोर्ट्स बैकग्राउंड, ना कोई गॉडफादर, बस एक चीज थी और वो थी डिसिप्लिन। जब फैमिली हैदराबाद शिफ्ट हुई तब साइना सिर्फ 8 साल की थी, स्विमिंग सीखने गई और वहां एक बैडमिंटन कोर्ट ने उसका हाथ थाम लिया। शायद उस दिन साइना को भी नहीं पता था कि ये रैकेट एक दिन देश का सर ऊंचा करेगा। रोज स्कूल, फिर ट्रेनिंग, बाकी बच्चे घर जाते थे, साइना पसीने के साथ अपना फ्यूचर लिख रही थी। लोग कहते थे लड़की है, ज्यादा दिन नहीं खेलेगी, पर साइना चुप थी क्योंकि उसका जवाब कोर्ट पर लिखा जा रहा था। और आगे कैसे उनकी सपनों की ट्रेनिंग बढ़ती गई करेंगे इसके बारे में बात, मगर थोड़ी देर बाद। अभी फिलहाल रेडियो महारानी 89.6 पर आप सभी के लिए ये गाना।

0: बच्चों को स्कूल से लाने में लेट हो जाती, इसीलिए रेड लाइट जंप करी।
1: बारिश तेज होने से पहले घर पहुंच जाओ, बस इसीलिए गाड़ी तेज चला रहा था।
2: मेरा घर तो यही पास में है, इसलिए रॉन्ग साइड से जा रहा हूँ। और अंकल, मेरी तो साइकिल है, कोई गाड़ी थोड़ी है।
3: रेडियो महारानी पूछता है, अपनी और दूसरों की जान खतरे में डालने का आपके पास क्या बहाना है? तो ट्रैफिक रूल्स की रिस्पेक्ट करो, तो ना एक्सीडेंट होगा और ना ट्रैफिक की परेशानी। FM 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

0: पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
2: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

चैंपियंस बनते नहीं, चैंपियंस तैयार किए जाते हैं। पुलेला गोपीचंद एकेडमी, यहाँ सिर्फ टैलेंट काम नहीं आता, यहाँ मेंटल स्ट्रेंथ टेस्ट होती है। स्वागत है आप सभी का फिर से रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूँ द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ, एंड आज हम लोग कामयाबी की उड़ान में बात कर रहे हैं साइना नेहवाल की। सुबह 4 बजे उठना, फिजियो, ड्रिल्स, प्रैक्टिस मैचेस और फिर वही रूटीन रोज। साइना कई बार थकी थी, कई बार रोई भी, इंजरीज ने बॉडी को तोड़ दिया, पर हौसला नहीं टूटा। जब पूरी दुनिया सो रही होती थी, तब चैंपियंस अपने सपनों के साथ झगड़ते हैं, जागते हैं। पैसे कम थे, प्रेशर ज्यादा था, पर साइना के पेरेंट्स ने उनका सपना कभी कमजोर नहीं होने दिया। उन्होंने सीखा कि हार सिर्फ एक रिजल्ट होता है, एंड नहीं। और फिर एक दिन उनका नाम इंटरनेशनल कोर्ट्स पर गूंजने लगा, और फिर कैसे पूरी दुनिया ने इंडिया की इस बेटी को देखा, करेंगे इसके बारे में बात। फिलहाल रेडियो महारानी 89.6 पर आप सभी के लिए एक गाना। वापस आकर बात करने वाले हम लोग साइना नेहवाल की आगे की जर्नी के बारे में। आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान, मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ।

सलामत सिर्फ शहंशाह नहीं, रॉयल वाइब्स लेने वाले लोग भी रह सकते हैं। तो जब भी अपनी शाही सवारी में सड़क पे निकलें, सीट बेल्ट के कवच को जरूर पहनें। तभी तो आएगा लाइफ में किंग वाला ट्विस्ट।

save life. Of course, पर save water, save cinematic vibe. अगर पानी नहीं होता तो बॉलीवुड के कितने गाने अधूरे रह जाते. जैक और रोज आज भी टाइटैनिक घुमा रहे होते. वीरू किसकी टंकी पर चढ़ के मौसी को मनाता. और ये गाना कभी नहीं बन पाता. रेडियो महारानी 89.6 देता है पानी बचाने का सबसे स्ट्रॉन्ग बहाना. जल है तो एंटरटेनमेंट का कल है. रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी.

कड़ी प्रैक्टिस और कड़ी मेहनत हमेशा एक इंसान को चैंपियन बना देती है। स्वागत है आप सभी का फिर से रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ एंड आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। और आज हम बात कर रहे हैं साइना नेहवाल की। साल 2008 बीजिंग ओलंपिक्स, स्टेज बड़ा था, प्रेशर और

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार उस दिन तो लोरी गाकर सुला भी रहे थे।
1: क्या बात करते हो।
0: हाँ
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली तू बोलता रहा।
1: अरे एक ग्लास तो पीती जा।

दुनिया में हर एथलीट अपने आप को नंबर वन पर जरूर देखना चाहता है और इसके लिए वो रोज जी तोड़ मेहनत करता है। स्वागत है आप सभी का फिर से रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ एंड आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। साल था 2015, वो दिन जब साइना नेहवाल बनी वर्ल्ड नंबर वन। और इस नंबर के पीछे सिर्फ मैचेस नहीं थे, इसके पीछे थी सालों की मेहनत और सालों का सैक्रिफाइस। पर सक्सेस के साथ आई स्ट्रगल्स, इंजरीज, फॉर्म मिस हुआ, फॉर्म लॉस हो गया, लोगों ने क्रिटिसाइज करना शुरू हो गया और लोग बोले अब साइना पहली जैसी नहीं रही। पर चैंपियन वही होता है जो आवाजों से नहीं अपनी मेहनत से बोलता है। साइना ने कड़ी मेहनत करी, साइना ने कमबैक किया, गिरी फिर उठी और हर बार खुद को याद दिलाया कि मैं यहां तक आई हूं तो आगे भी जा सकती हूं। और ऐसे ही साइना नेहवाल बन गई एक लेजेंड। और आगे उनका रास्ता कैसे बनता चला गया करेंगे इसके बारे में बात, मगर उससे पहले आप सभी के लिए ये गाना। आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान, मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ।

0: रिड्यूस, रीयूज, रीसाइकिल, यही है वो RRR जिन्हें फॉलो करके हमारा शहर एनवायरमेंट से ऑस्कर जीत सकता है। पर ये 3R आखिर है क्या? रेडियो महारानी आपको आसान भाषा में समझाता है। रिड्यूस यानी प्लास्टिक से बनी चीजों का कम से कम इस्तेमाल, रीयूज यानी जो दोबारा काम आ सके सिर्फ उसी प्लास्टिक का इस्तेमाल, रिसाइकिल यानी वेस्ट प्लास्टिक को फेंकने के लिए सिर्फ ब्लू डस्टबिन का इस्तेमाल।
1: FM 89.6 का रेजोल्यूशन यही है कि सिंगल यूज प्लास्टिक अब ऑप्शन में ही नहीं है।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

इंडिया में जब भी एक एथलीट खेलने जाता है तो कोई मीडिया कवरेजेस नहीं मिलती, और जैसे ही वो कोई मेडल ले आए तो सारे मीडिया हाउसेस उसके आगे पीछे जाते हैं, और फिर उसके बाद आता है सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट, सबसे लाइफ का डिफिकल्ट फेज, और उसे कहते हैं क्रिटिसिज्म वाला फेज। स्वागत है आप सभी का फिर से रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। एंड हर एक एथलीट की लाइफ में एक पॉइंट आता है जब वो रिटायरमेंट ले लेता है, और आज हम लोग बात कर रहे हैं कामयाबी की उड़ान में साइना नेहवाल की। और आज शायद साइना कोर्ट पर रोज ना दिखे, पर हर कोर्ट उनकी कहानी जरूर दिखाती है। आज जब भी कोई लड़की रैकेट उठाती है उसमें साइना का रिफ्लेक्शन होता है। साइना ने सिखाया बैकग्राउंड छोटा हो सकता है लेकिन सपना नहीं। मेडल्स शेल्फ पर रखे जाते हैं पर इंस्पिरेशन दिल में रहती है। और साइना नेहवाल ने सिर्फ बैडमिंटन नहीं खेला, उन्होंने एक जनरेशन को खेलना सिखा दिया, और इसी के साथ साथ उन्होंने साल 2026 में रिटायरमेंट अनाउंस कर दी। वर्ल्ड नंबर वन क्रिकेटर विराट कोहली हो या फिर हमारे द लेजेंड सचिन तेंदुलकर, सब ने उनकी यात्रा के लिए थैंक्स बोला। सब ने थैंक्स बोला कि उन्होंने इंडिया को एक अलग पहचान दी और इंडिया को बैडमिंटन के क्षेत्र में आगे पहुंचाया। तो थैंक यू सो मच साइना नेहवाल फ्रॉम द होल टीम ऑफ रेडियो महारानी। एंड इसी के साथ साथ मुझे भी दीजिए इजाजत, मैं मिलूंगा आप सभी से फिर से मंडे टू फ्राइडे शाम 5 से 8। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM। कुछ

0: प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
2: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

ऑल आर लिसनिंग रेडियो महारानी 89.6 एफएम कुछ हटके शो लेकर आ गई हूँ बिजनेस अनप्लग्ड। मैं हूँ गीत और ये शो उन लोगों के लिए है जो सिर्फ बिजनेस देखना नहीं चाहते बल्कि बिजनेस को फील करना चाहते हैं, क्योंकि ब्रांड सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं होते, ब्रांड्स होती हैं कहानियाँ, कुछ अधूरे सपनों से बनी कहानियाँ, कुछ जिद से और कुछ जुनून से और कुछ ऐसे लोगों से जो नॉर्मल रहना एक्सेप्ट ही नहीं करते। बिकॉज बिहाइंड एवरी आइकॉनिक ब्रांड देयर इज एन अनटोल्ड स्टोरी। और आज मैं एक ऐसी ही कहानी शुरू कर रही हूँ जो सिर्फ पैसों की नहीं है, ये कहानी है विजन की, ये कहानी है पेशेंस की और ये कहानी है परफेक्शन के ऑब्सेशन की। सोचिए जरा, जब रोड पर एक गाड़ी चलती है और लोग उसे देखकर रुक जाते हैं, फोटो लेना शुरू कर देते हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो महंगी है बल्कि इसीलिए कि वो रॉयल फील कराती है। सम ब्रांड डजंट शाउट दे विस्पर लग्जरी। ये ब्रांड 100 साल से ज्यादा पुराना है, 118 साल। जब दुनिया ने वॉर्स देखे, टेक्नोलॉजी बदली और जनरेशंस चेंज होती रही, तब भी इस ब्रांड ने अपनी आइडेंटिटी नहीं बदली। आज दुनिया के सबसे पावरफुल लोग, एक्टर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, रॉयल, सबके गैराज में इसका एक स्पेशल कॉर्नर होता है। बट लेट मी टेल यू समथिंग, ये कहानी किसी पैलेस से शुरू नहीं हुई थी, ये कहानी ना ही गोल्ड से बनी थी ना ही पावर से। इस कहानी के पीछे दो लोग थे, दोनों अलग बैकग्राउंड से थे, दोनों अलग दुनिया से, पर दोनों के सपने में एक ही लाइन थी, वी वॉन्ट टू बिल्ड द बेस्ट। एक इंजीनियर था जो चीजों को परफेक्ट बनाना चाहता था और एक सेल्समैन था जो दुनिया को परफेक्ट चीज दिखाना जानता था। और जब ये दोनों मिल गए तो सिर्फ एक कंपनी नहीं बनी बल्कि एक लेगेसी बॉर्न हुई। पर सवाल ये है, कौन था वो ब्रांड और कौन था वो नाम जो आज लग्जरी का सिनोनियम बन गया है। द नेम यू थिंक यू नो बट मे बी यू डोंट। तो उस नाम को मैं रिवील डेफिनेटली करूंगी, लेकिन गाना सुनते हैं पहले। गाने के बाद फिर से लौटूंगी। आप सुनते रहे रेडियो महारानी 89.6 एफएम कुछ हटके। वंस अगेन वेलकम बैक, यू ऑल आर लिसनिंग रेडियो महारानी 89.6 एफएम कुछ हटके। मैं हूँ आरजे गीत और अभी हमने बात की थी एक ऐसी कहानी की जो सिर्फ सक्सेस की नहीं है बल्कि सोच की कहानी है। मैंने बात की है एक ऐसे ब्रांड की जो 100 साल से भी ज्यादा पुराना है, जो दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों की चॉइस रहा है और जिसका नाम सुनते ही लग्जरी ऑटोमेटिकली दिमाग में आ जाती है। सम नेम्स डजंट नीड एन इंट्रोडक्शन। तो अब वक्त आ गया है उस नाम से पर्दा हटाने का। That name is Rolls Royce. हाँ, रोल्स रॉयस, एक ऐसा नाम जो सिर्फ कार नहीं बनाता, स्टैंडर्ड सेट करता है। रोल्स रॉयस का मतलब है शांति, पावर जो दिखाई नहीं देती बल्कि महसूस होती है, कंफर्ट जो सिर्फ सीट में नहीं है बल्कि पूरी एक्सपीरियंस में होता है। रोल्स रॉयस इज नॉट अबाउट स्पीड, इट्स अबाउट प्रेजेंस। जब रोल्स रॉयस रोड पर होती है ना तो हॉर्न की जरूरत नहीं पड़ती, लोग खुद रुक जाते हैं सिर्फ देखने के लिए। और ये सिर्फ आज की बात नहीं है, 118 साल से रोल्स रॉयस दुनिया के रिचेस्ट लोगों की फेवरेट रही है। इंडिया में देखते हैं शाहरुख, मुकेश अंबानी और दुनिया भर के बिजनेस टाइकून्स इस ब्रांड को सिर्फ अफोर्ड नहीं करते बल्कि ओन करते हैं विद प्राइड। पर एक चीज समझाना आप सबको बहुत जरूरी है, रोल्स रॉयस कभी भी सबके लिए नहीं रही। ये ब्रांड हमेशा से उन लोगों के लिए रहा जो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, ना क्वालिटी में, ना कंफर्ट में, ना टाइम में। पर रोल्स रॉयस का सफर लोगो और शाइन से शुरू नहीं हुआ था, इसके पीछे दो इंसान थे बिल्कुल अलग अलग बैकग्राउंड से आए हुए। एक था जो इंजीनियरिंग को जीता था और एक था जो विजन को बेचना जानता था। और जब ये दोनों मिले तो दुनिया की सबसे रॉयल कार ब्रांड ने जन्म लिया। पर सवाल ये है, ये दोनों कौन थे, इनका बचपन कैसा था, क्या ये सक्सेस इन्हें आसानी से मिल गई थी। एवरी लेगेसी हैज अ ह्यूमन बिगिनिंग। और अभी मैं बात करूंगी उसी ग्लैमर कहानी के पीछे के रियल ह्यूमन स्ट्रगल की, लेकिन अभी वक्त है गाने का। गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है बिजनेस अनप्लग्ड। वेलकम बैक टू बिजनेस अनप्लग्ड। मैं हूँ गीत और आज मैं रोल्स रॉयस के शाइन से एक कदम पीछे जा रही हूँ, क्योंकि अगर आप किसी ब्रांड को समझना चाहते हो ना तो पहले उसके लोगों को समझना पड़ता है, उसकी जमीन, उसकी कमियां और उसके सपने। बिफोर अ ब्रांड बिकम आइकॉनिक, इट बिकम्स ह्यूमन। रोल्स रॉयस के पीछे दो लोग थे बिल्कुल अलग दुनिया से आए हुए। और सबसे पहले बात करते हैं उस इंसान की जिसके लिए लग्जरी एक कॉन्सेप्ट नहीं था, परफेक्शन एक आदत थी। हेनरी रॉयस, 1863, इंग्लैंड का एक छोटा सा गांव, ना बिजली, ना पानी, ना कंफर्ट, एक छोटा सा घर, 5 बच्चे, लिमिटेड रिसोर्सेस। हेनरी रॉयस सबसे छोटे थे और शायद इसीलिए इन्होंने बहुत जल्दी सीख लिया कि जिंदगी में

फाउंडेशन स्ट्रीट लाइटिंग से पड़ी थी। 20 पाउंड की सेविंग्स, बस इतना ही। पार्टनर अर्नेस्ट क्लेयरमोंट के साथ 1884 में FH रॉयस एंड कंपनी शुरू की। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक फिटिंग बनाते थे, ना एडवर्टीजमेंट्स ना हुडिंग, सिर्फ एक ऑब्सेशन, क्वालिटी। ये 1894 तक डायनेमो और इलेक्ट्रिक ट्रेन्स बनाने लगे। 1899 में कंपनी रजिस्टर्ड हुई, रॉयस लिमिटेड। हेनरी रॉयस सेल्फ टफ इंजीनियर थे, उनके लिए गुड इनफ कभी इनफ नहीं होता था। और अब कहानी का दूसरा हिस्सा, चार्ल्स रोल्स। 1877, लंदन। वेल्दी फैमिली, प्रिविलेज, बेस्ट एजुकेशन, एटॉन कॉलेज कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग की डिग्री। जहां हेनरी नेसेसिटी से काम सीख रहे थे, वहां चार्ल्स पैशन से सीख रहे थे। कार्स उनका शौक थी, इतना ज्यादा कि वो इंग्लैंड के पहले लोगों में से थे जिसके पास अपनी कार थी। ही अंडरस्टूड मशीन्स बट ही अंडरस्टूड पीपल इवन बेटर। चार्ल्स रोल्स को पता था कि दुनिया सिर्फ अच्छी चीजें नहीं खरीदती, दुनिया कहानी खरीदती है। 1904, मैनचेस्टर मिडलैंड होटल। हेनरी रॉयस अपनी 10 HP कार दिखा रहे थे, सिंपल डिजाइन पर स्मूथ ड्राइव, कम नॉइज, सॉलिड इंजीनियरिंग। चार्ल्स ने कार देखी और तुरंत समझ गए, दिस इज डिफरेंट। उस मीटिंग में सिर्फ दो लोग नहीं मिले बल्कि दो दुनिया मिली, दो स्किल्स मिले, दो विजन एक हुए। और 1906 रोल्स रॉयस कंपनी ऑफिशियली बनी। रोल्स बिल्कुल क्लियर थे, चार्ल्स रोल्स बिजनेस, सेल्स, नेटवर्किंग, हेनरी रॉयस इंजीनियरिंग, डिजाइन, परफेक्शन। उनकी पहली कार रोल्स रॉयस 4050 HP, दुनिया ने नाम दिया सिल्वर घोस्ट। और वहीं से रोल्स रॉयस सिर्फ कार ब्रांड नहीं रहा, बेंचमार्क बन गया। पर ये जर्नी अभी इजी होने वाली नहीं थी, आगे वॉर्स थे, पर्सनल लॉसेस थे और ऐसे चैलेंजेस थे जो कंपनी को तोड़ भी सकते थे। और मैं आगे बात करूंगी उन्हीं टफ फेज के बारे में, लेकिन अभी वक्त है गाने का। गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है बिजनेस अनप्लग्ड। वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं बिजनेस अनप्लग्ड। और अब तक हमने जाना कैसे रोल्स रॉयस का सपना शुरू हुआ था, दो लोग, दो अलग जिंदगियां, पर एक ही ऑब्सेशन, परफेक्शन। लेकिन सच बताऊं, सपने देखना एक बात होती है, पर उसे जिंदा रखना वो असली बिजनेस होता है। बिकॉज द रियल स्टोरी बिगिंस व्हेन थिंग्स स्टार्ट फॉलिंग अपार्ट। 1906 के बाद रोल्स रॉयस का नाम ग्रो कर रहा था, सिल्वर घोस्ट ने दुनिया को दिखा दिया था कि ये ब्रांड नॉर्मल नहीं है। पर तभी दुनिया बदल गई, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, मार्केट क्रैश हो रहे थे, लग्जरी एक सेकेंडरी चीज बन गई थी और कार इंडस्ट्री के लिए ये सबसे टफ टाइम था। पर यहीं पे रोल्स रॉयस ने एक बोल्ड डिसीजन लिया। उन्होंने कहा, अगर दुनिया को आज कार्स नहीं चाहिए तो हम दुनिया को पावर देंगे। रोल्स रॉयस ने कार से आगे बढ़कर एयरक्राफ्ट इंजन्स बनाना शुरू किया ब्रिटिश आर्मी के लिए। और यहीं से हेनरी रॉयस का इंजीनियरिंग जीनियस दुनिया के सामने आया। इंजन जो सिर्फ पावरफुल नहीं थे, रिलायबल थे, प्रिसाइज थे और बैटलफील्ड के लिए बने थे। ये सिर्फ प्रोडक्ट चेंज नहीं था, ये माइंडसेट चेंज था। टीम दिन रात काम कर रही थी, प्रेशर एक्सट्रीम था, मिस्टेक्स का स्कोप जीरो था। हेनरी रॉयस एक ऐसे लीडर थे जो ऑफिस में बैठकर ऑर्डर्स नहीं देते थे, वो फ्लोर पर जाते थे, बोल्ट्स चेक करते थे, मेजरमेंट्स खुद वेरीफाई करते थे। उनकी टीम परफेक्शन से थक जाती थी पर इंस्पायर्ड भी रहती थी, क्योंकि लीडर वही कर रहा था जो वो उनसे एक्सपेक्ट करता था। इसी फेज में रोल्स रॉयस की टीम बनी इंजीनियर्स, डिजाइनर्स, टेक्नीशियंस, जो सिर्फ जॉब नहीं कर रहे थे, मिशन पे थे। पर स्ट्रगल यही खत्म नहीं हुआ था। 1910 एक शॉक, चार्ल्स रोल्स बिजनेस का बैकबोन, विजन का वॉइस एक एविएशन एक्सीडेंट में चल बसे। सोचो, कंपनी अभी यंग थी, वॉर चल रहा था और एक फाउंडर चला गया। हेनरी रॉयस के लिए ये सिर्फ बिजनेस लॉस नहीं था, ये पर्सनल था। उनकी हेल्थ पहले से ही ठीक नहीं थी, स्ट्रेस बढ़ रहा था, पर फिर भी इन्होंने गिव अप नहीं किया। वो जानते थे कि अगर अब रुक गए तो सपना यही मर जाएगा। इन्होंने और ज्यादा फोकस किया सिस्टम्स पर, प्रोसेसेस पर और लोगों पर। रोल्स रॉयस एक वन मैन ब्रांड नहीं बना, टीम ड्रिवन लेगेसी बनी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम कंपनी ने एक और बड़ा रोल प्ले किया, मर्लिन इंजन, जिसने स्पिटफायर जैसे एयरक्राफ्ट को पावर दी। वो इंजन सिर्फ एक मशीन नहीं था बल्कि एक नेशन की होप था। इस स्ट्रगल फेज ने रोल्स रॉयस को ये सिखा दिया कि लग्जरी तब मीनिंगफुल होती है जब उसके पीछे डिसिप्लिन होता है। वॉर के बाद कंपनी वापस कार्स पर आई, पर अब वो सिर्फ रिच क्लाइंट्स के लिए नहीं, लेगेसी के लिए बना रही थी। पर बिजनेस में एक और रियलिटी होती है, सक्सेस के बाद भी चैलेंजेस खत्म नहीं होते। फाइनेंशियल प्रेशर, मैनेजमेंट चेंजेस, ओनरशिप शिफ्ट, और फिर आया एक ऐसा फेज जहां रोल्स रॉयस को अपनी आइडेंटिटी फिर से डिफाइन करनी पड़ी। और आगे मैं बात करने वाली हूँ नंबर्स की, टर्नओवर की, एक्सपेंशन की, और ये भी कि कैसे रोल्स रॉयस ने मॉडर्न वर्ल्ड में खुद को रेलेवेंट रखा। लेकिन अभी वक्त है गाने का। गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है बिजनेस अनप्लग्ड। वेलकम बैक, यू आर टर्न इन टू बिजनेस अनप्लग्ड। मैं हूँ गीत। और अब तक हमने रोल्स रॉयस को सपनों से बनते हुए देखा है, स्ट्रगल से गुजरते हुए देखा है और वॉर्स के बीच खड़ा होते हुए देखा है। और अब बात करते हैं उस चीज के जो बिजनेस को रियलिटी चेक देती है, और वो है नंबर्स। क्योंकि ब्रांड जितना भी पोएटिक हो, बिजनेस

तभी जिंदा रहता है जब नंबर साथ देते हैं। रोल्स रॉयस का सफर स्मूथ नहीं रहा। 1970 में कंपनी को फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करना पड़ा। एयरक्राफ्ट इंजन डिवीजन और कार डिवीजन एक ही कंपनी के अंडर प्रेशर में आ गए और ये एक बड़ा शॉक था। सोचो, जो ब्रांड दुनिया के रिचेस्ट लोगों का सिंबल था, वो सर्वाइवल मोड में आ गया था। फिर 1980 में कंपनी का स्प्लिट हुआ, एयरक्राफ्ट इंजन अलग हो गए, कार्स का बिजनेस अलग, और यहीं से रोल्स रॉयस एक बार फिर से खुद को रीडिफाइन करने लगा। 1998 में एक टर्निंग पॉइंट आया, वोल्सवैगन ग्रुप ने रोल्स रॉय ब्रांड एक्वायर किए और कुछ ही सालों बाद बीएमडब्ल्यू के अंडर रोल्स रॉय मोटर्स कार का मॉडर्न एरा शुरू हुआ। 2002 में लॉन्च हुई फैंटम। ये सिर्फ एक कार लॉन्च नहीं था, ये एक स्टेटमेंट था, रोल्स रॉयस इज बैक। 21st सेंचुरी के साथ रोल्स रॉयस ने लग्जरी को टेक्नोलॉजी के साथ मैरी कर दिया। स्टारलाइट रूफ, हैंडक्राफ्ट इंटीरियर्स, कस्टमाइजेशन जो क्लाइंट के मूड तक को रिफ्लेक्ट करे। आज रोल्स रॉयस सिर्फ एक कंपनी नहीं है, ये मल्टीपल वर्टिकल में काम करती है। रोल्स रॉयस मोटर कार्स, लग्जरी सेडान्स एंड एसयूवीज, रोल्स रॉयस एयरस्पेस, एयरक्राफ्ट इंजन, रोल्स रॉयस पावर सिस्टम, एनर्जी एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन। टर्नओवर की अगर बात करें तो रोल्स रॉयस ग्रुप का एनुअल रेवेन्यू बिलियंस ऑफ डॉलर्स में है। पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि रोल्स रॉयस कभी वॉल्यूम गेम नहीं खेलती। हर साल लिमिटेड नंबर ऑफ कार्स, हर साल ऑलमोस्ट हैंडमेड, हर ऑर्डर यूनिक। इसलिए रोल्स रॉयस का कस्टमर सिर्फ बायर नहीं होता, कोलैबोरेटर होता है। प्रेजेंट सिनेरियो में रोल्स रॉयस सिर्फ पास्ट में नहीं जी रही, कंपनी इलेक्ट्रिक फ्यूचर के लिए भी तैयारी कर रही है। इलेक्ट्रिक रोल्स रॉयस, साइलेंट, पावरफुल एंड सस्टेनेबल, क्योंकि लग्जरी का मतलब सिर्फ शाइन नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। आज रोल्स रॉयस उन ब्रांड में से है जो स्लो ग्रोथ पर बिलीव करता है, पर सॉलिड ग्रोथ पे। नो शॉर्टकट्स, नो कॉम्प्रोमाइज, और शायद इसीलिए 118 साल बाद भी ये ब्रांड रेलेवेंट है, रिस्पेक्टेड है और डिजायर्ड है। इस पूरी कहानी का सबसे पावरफुल पार्ट नंबर्स नहीं है, पावरफुल पार्ट है वो मैसेज जो ये ब्रांड हर एंटरप्रेन्योर को देता है। और ये मैसेज क्या है ये मैं बताऊंगी, लेकिन अभी गाने का वक्त है। गाने के बाद फिर से लौटूंगी, शो है बिजनेस अनप्लग्ड। वेलकम बैक, यू ऑल आर लिसनिंग बिजनेस अनप्लग्ड, मैं हूँ गीत। और इस कहानी के एंड पे पहुँच के एक सवाल नेचुरली आता है, रोल्स रॉयस हमें क्या सिखाता है? क्योंकि ये सिर्फ एक लग्जरी कार ब्रांड की स्टोरी नहीं है, ये एक ब्लूप्रिंट है उन लोगों के लिए जो कुछ अपना बनाना चाहते हैं, स्पेशली फॉर न्यू एंटरप्रेन्योर्स। रोल्स रॉयस हमें सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये सिखाता है, स्टार्ट स्मॉल बट थिंक परफेक्ट। हेनरी रॉयस के पास ना पैसा था, ना कम्फर्ट, ना बैकिंग, पर एक चीज थी, स्टैंडर्ड्स। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा अभी के लिए इतना काफी है, उन्होंने हमेशा ये सोचा इसका बेस्ट वर्जन क्या हो सकता है। गुड इनफ इज नेवर इनफ, इफ यू वांट टू बिल्ड समथिंग टाइमलेस। दूसरी बात, राइट पार्टनर चेंजेस एवरीथिंग। चार्ल्स रोल्स और हेनरी रॉयस सेम बैकग्राउंड से नहीं थे, सेम स्ट्रगल से नहीं थे, पर विजन सेम था। बिजनेस में आपका पार्टनर आपका मिरर होता है, अगर विजन मैच नहीं करता तो सक्सेस भी टेम्पररी होती है। डोंट लुक फॉर समवन लाइक यू, लुक for someone who completes you. तीसरी बात, reinvention is not weakness. जब wars आए तब cars की demand गिर गई। Rolls Royce यहाँ पर नहीं रुके, बल्कि इन्होंने direction बदली, aircraft engines बनाए, nation के काम आए। If the market changes, you don't quit, you adapt. चौथा और सबसे हार्ड लेसन, स्ट्रगल नेवर लीव्स इफ ओनली चेंजेस फॉर्म। रोल्स रॉयस ने सक्सेस देखी, फेलियर भी देखा, ओनरशिप चेंज भी, पर ब्रांड जिंदा रहा क्योंकि वैल्यू नहीं बदली। और सबसे पावरफुल मैसेज, लेगेसी ओवरनाइट नहीं बनती, 118 साल लगे हैं रोल्स रॉयस को यहाँ तक आने में। आज जो लोग उसकी शाइन देखते हैं वो उसके 118 साल का डिसिप्लिन नहीं देखते। अगर आप नया बिजनेस शुरू कर रहे हो और लगता है सब स्लो है, तो याद रखना, स्लो ग्रोथ विद स्ट्रॉन्ग रूट इज बेटर देन फास्ट growth with weak foundations. Rolls Royce हमें ये भी सिखाता है कि हर किसी के लिए ब्रांड बनाना जरूरी नहीं है, पर जो बनाओ उसमें अपनी सोल डाल दो, क्योंकि जब प्रोडक्ट में सोल होती है ना, तो कस्टमर सिर्फ बाय नहीं करता बल्कि कनेक्ट करता है। और शायद इसीलिए रोल्स रॉयस सिर्फ कार नहीं है, वो एक इमोशन है, एक स्टैंडर्ड है, एक रिमाइंडर है दैट एक्सीलेंस इज अ हैबिट, नॉट अ लग्जरी। इसी थॉट के साथ आज का बिजनेस अनप्लग्ड यहीं हम समाप्त करते हैं। मैं हूं आरजे गीत, और अगर आपका भी सपना है कुछ अपना बनाने का, तो याद रखना, हो सकता है शुरुआत छोटी हो, पर विजन कभी छोटा मत रखना। सो स्टे इंस्पायर्ड एंड कीप बिल्डिंग।

क्या कभी सोचा है कि कुछ चीजें इतनी सिंपल होती हैं कि हम उनकी वैल्यू समझ नहीं पाते? ना उसका कोई एड आता है, ना कोई सेलिब्रिटी उसे प्रमोट करता है, ना वो किसी फैंसी कैफे के मेन्यू में लिखा होता है, पर फिर भी वो गर्मी से लड़ता है, भूख से लड़ता है और थकान से भी लड़ता है और चुपचाप अपना काम करता रहता है। वो कहा है कि ना शोर है ना शो है, ना कोई पैकेजिंग का जोर है, जो सच में काम आए वही असली पावर है। 89.6 FM पर मैं हूँ आज अंशली आपके साथ और शो लेकर आ गई हूँ कल्चर कारवा, जहाँ हम बात करने वाले हैं आज एक ऐसी देसी हीरो की जो दिखता सिंपल है पर अंदर से सॉलिड है, जिसे कहा जाता है सत्तू। तो चलिए फिर आइए जानते हैं आखिर सत्तू है क्या। सत्तू सिर्फ एक पाउडर नहीं है, ये भुने हुए चने या जौ का आटा होता है जिसे पीस कर बनाया जाता है, पर असली बात सिर्फ इतनी नहीं, ये हर रोज की जिंदगी का हिस्सा है। फिर चाहे बात करें बिहार झारखंड और यूपी के घरों में, सुबह घर से निकलते वक्त एक ग्लास सत्तू पीना मतलब दिन भर की एनर्जी रेडी, ना फ्रिज की जरूरत ना गैस की, बस पानी सत्तू और जिंदगी चल पड़ी। जहाँ सिंप्लिसिटी होती है वही सस्टेनेबिलिटी होती है, ये सब सिखाया हमें सत्तू ने। और भी बहुत सारी चीजें हैं सत्तू से जुड़ी हुई, जानेंगे इस म्यूजिक ब्रेक के बाद। तब तक बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: अरे भाई, इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें।
2: किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
3: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

89.6 FM पर आप सुन रहे हैं कल्चर डायलॉग। मैं हूं आपकी दोस्त आरजे अंजलि और आज हम बात कर रहे हैं सत्तू की। तो आइए चलिए जानते हैं सत्तू का इतिहास, सफर और जय। अब सोचिएगा जरा, जब ना प्रोटीन बार्स थे ना पैक्ड फूड था, तब लंबी यात्रा पर जाने वाले लोग क्या ले जाते थे? जवाब है सत्तू। पुराने दौर में सैनिक और यात्री अपने साथ सत्तू रखते थे, क्योंकि हल्का था, जल्दी बन जाता था और सबसे जरूरी लंबे समय तक एनर्जी देता था। यानी एक मुट्ठी सत्तू और आदमी घंटों तक चल सकता था इसे पीकर। वो कहा है कि सफर लंबा हो या रास्ता कठिन, साथ अगर सत्तू हो तो डर कैसा, जो मिट्टी से ताकत ले उसका हौसला कम कैसा। तो आइए चलिए जानते हैं सत्तू के पीछे की साइंस। आखिर क्यों कहा जाता है इसे देसी सुपर फूड? अगर बात करें आज के जमाने में लोग प्रोटीन शेक्स पे हजारों खर्च करते हैं, पर सत्तू में ऑलरेडी होता है हाई प्रोटीन, फाइबर, आयरन और साथ ही लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स। यानी ये बॉडी को इंस्टेंट नहीं लेकिन सस्टेनेबल एनर्जी देता है। और जब इसमें नींबू, जीरा, नमक मिलता है तो ये सिर्फ ड्रिंक नहीं, एक एनर्जी ड्रिंक बन जाता है। जो चीज मिट्टी से मिले वो बॉडी को कभी चीट नहीं करती। जब बात सत्तू की कर ही रहे हैं, इसके पीछे का साइंस भी जाना, तो वापस आकर जाएंगे टेस्ट का देसी कैनवस क्यों कहा जाता है इसे। तब तक बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: जिंदगी के भी ना कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें अगर फॉलो नहीं किया तो सीधे डिटेंशन। लेन डिसिप्लिन तो मेंटेन करना इज अ मस्ट। राइट का मतलब राइट, लेफ्ट का मतलब लेफ्ट। इतना भी रॉकेट साइंस नहीं है मेरी जान। बाइक पे दबंगगिरी करने से कूल तो बहुत लगते हैं, बट अगर यही दबंगगिरी तुम्हारी नेक्स्ट हॉस्पिटल वॉक का रीजन बन गया ना, तो पूरा स्वैग टपरी का चाय बन जाएगा। और हाँ, हेलमेट हमेशा ऑन, सीट बेल्ट हमेशा टाइट, वरना मोए मोए मोमेंट तो गारंटीड है बाबू मोशाय। और अगर रील स्क्रॉल या सेल्फी लेने का ज्यादा ही मन कर रहा है तो साइड में रोक कर करो। याद रखो, रोड रूल्स फॉलो करोगे तो टेंशन फ्री और मस्त राइड गारंटीड है।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हो। लोगों के कुछ भी कह देने से खुद को कमजोर मत समझ लेना,
2: कमाल तुम, बेमिसाल तुम, लाजवाब हो,
1: क्योंकि आप क्या हो वो सिर्फ आप जानते हो। सो बी

89.6 FM पर मैं हूँ आरजे अंजलि आपके साथ और शो चल रहा है कल्चर कारवा, जहाँ चलिए बात करते हैं आखिर सत्तू को टेस्ट का देसी कैनवस क्यों कहा जाता है। सत्तू एक ही नहीं होता, उसके फ्लेवर भी कहानियां लेकर आते हैं, जैसे नमकीन सत्तू यानी प्याज नींबू हरी मिर्च के साथ, मीठा सत्तू गुड़िया चीनी के साथ, और लिट्टी चोखा के अंदर भरा हुआ सत्तू, पूरा बिहार एक बाइट में। हर घर का अपना स्टाइल, हर घर का अपना स्वैग, हर ग्लास का अपना इमेज। वो कहा है कि एक ही सत्तू के कितने रूप निकल आए, जैसे एक ही जिंदगी के कितने धूप छाप निकल आए। अब अगर सत्तू की बात करें तो आइए जानते हैं गरीबी नहीं विजडम क्यों कहा जाता है इसे। एक वक्त था जब लोग सत्तू को गरीब का खाना कहकर इग्नोर करते थे, और आज न्यूट्रिशनिस्ट इसे सुपर फूड बोलते हैं। डिफरेंस सिर्फ इतना है, पहले लोग इसे समझते थे, अब लोग इसे रिसर्च कर रहे। वो कहा है कि जो कल तक नजरअंदाज था आज वही ट्रेंड बन गया। सत्तू ने सिखा दिया असली सोना कभी पुराना नहीं होता। जब बात कर रहे हैं सुपर फूड, आकर जानेंगे आज के जमाने में कैसे मॉडर्न कमबैक किया सत्तू ने। तब तक बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: इंटरनेट एक बहुत ही क्यूट सा बिल्ला है, दूर से प्यारा, पास जाके कभी कभी काट लेता है। अगर कोई मैसेज आए यू वन 50,000 तो समझ लो ये पैसा नहीं फसाया जा रहा है। ओटीपी मत देना, पासवर्ड मत बताना, और अगर कोई बोले मैं बैंक से बोल रहा हूँ तो बोलो बैंक से हो तो इंटरेस्ट बढ़ाओ, मेरा इंटरेस्ट मत घटाओ। ऑनलाइन मत फिसलिए वरना हैकर्स आपको डिजिटल गोलगप्पा बना देंगे।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

89.6 FM पर मैं हूँ आरजी अंशली आपके साथ और शो चल रहा है कल्चर कारवा, जहाँ आज की कहानी हमें सत्तू के बारे में बहुत कुछ बता रही है। तो आइए चलिए जानते हैं आज के जमाने में कैसे मॉडर्न कमबैक किया सत्तू। आज के कैफेज में सत्तू स्मूदीज, प्रोटीन ड्रिंक्स, डिटॉक्स मिक्सचर, देसी चीज ग्लोबल हो रही है, पर जो असली मजा है वो मिट्टी के ग्लास में घर के आंगन में पंखे के नीचे बैठ कर धीरे धीरे पीने में है। याद रखिए, सत्तू सिर्फ एक ड्रिंक नहीं, ये मिट्टी का आशीर्वाद है, एक ऐसा स्वाद जो शोर नहीं करता पर जिंदगी चला देता है। वो कहा है कि ना महंगा था ना फैशनेबल था, पर हर मुश्किल में काम आने वाला था। सत्तू ने सिखा दिया असली ताकत हमेशा सिंपल होती है। अगली बार जब आप थक जाओ या गर्मी से परेशान हो जाओ तो एक बार सत्तू जरूर ट्राई करना, हो सकता है आपको मिट्टी की ताकत महसूस हो जाए। और इसी के साथ कल्चर कारवा में आज हमने बात की सत्तू की। कल फिर से मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, एक नए जायके के साथ, एक नई याद के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। दिस इज योर आरजी अंशली साइनिंग ऑफ।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम है। एक तेज हॉर्न की ट्रैफिक में सन्नाटा सा कर गई जब एम्बुलेंस के हॉर्न की आवाज कानों में पड़ गई। आज फिर एक जिंदगी इस ट्रैफिक में अपनी सांसों के लिए लड़ रही है जनाब। एम्बुलेंस को रास्ता देकर आप पूरा कर सकते हैं लाखों जिंदगियों के जीने का ख्वाब, क्योंकि एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी को बचा सकती है।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 एफएम द्वारा जनहित में जारी।
0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
2: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
3: इंटरनेट एक बहुत ही क्यूट सा बिल्ला है, दूर से प्यारा पास जाके कभी कभी काट लेता है। अगर कोई मैसेज आए यू वन 50,000 तो समझ लो ये पैसा नहीं फसाया जा रहा है। ओटीपी मत देना, पासवर्ड मत बताना, और अगर कोई बोले मैं बैंक से बोल रहा हूँ तो बोलो बैंक से हो तो इंटरेस्ट बढ़ाओ, मेरा इंटरेस्ट मत घटाओ। ऑनलाइन मत फिसलिए वरना हैकर्स आपको डिजिटल गोलगप्पा बना देंगे।
1: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

कॉल घुमा सकते हैं, और वो है मेरा नंबर 9654896896। सिंपल सा नंबर है, इस पर कॉल करके पता क्या होगा, इस पर कॉल करके ये होगा कि आप लोग मुझे बता दोगे कि कहाँ पर ट्रैफिक है, और फिर मैं बाकी फरीदाबाद के लोगों को बता दूंगा कि आपको इस जगह से नहीं जाना है। और वैसे भी हम सब जानते हैं फरीदाबाद में काफ़ी सारे हॉटस्पॉट्स बने हुए हैं, तो उन हॉटस्पॉट्स को भी आज अवॉइड करेंगे, और हो सकता है अगर बारिश हो गई तो फिर तो अवॉइड करना ही पड़ेगा। तो चलिए, मैं बस इतना बोलना चाहता हूँ कि अगले 3 घंटों के लिए आप सभी के साथ जुड़ चुका हूँ, खूब सारी बातें होने वाली है, खूब सारी मस्ती होने वाली है, खूब सारे गाने चलेंगे आप लोगों के लिए। रेडियो महारानी 89.6 पर मैं हूँ द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ, एंड खूब सारी बातों में से एक बात तो कुछ ऐसी है कि मथुरा रोड पर AI कैमरे लगने वाले हैं, कहाँ पर लगेंगे AI कैमरे, करेंगे इन सब के बारे में बात मगर थोड़ी देर बाद। अभी फिलहाल रेडियो महारानी आप लोग सुनते जाइए, मैं हूँ द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। और हाँ, नंबर एक और बार रिपीट कर देता हूँ, नंबर है 9654896896। फिलहाल आप सभी के लिए रेडियो महारानी 89.6 पर ये गाना गुरु रंधावा की आवाज़ में अजूल और सिरा का मिक्स मैशअप, सुनिए इस गाने को, मैं हूँ द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद।
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके।
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार, उस दिन तो लोरी गाकर सुला भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे
0: हो? हाँ।
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली, तू बोलता रहा।
1: अरे एक ग्लास तो पीती जा। सुन।

0: फिल्म मेरा नाम जोकर का ये गाना इशारा करता है कि सड़क नियम सिर्फ गाड़ी चलाने वालों के लिए नहीं है बल्कि पैदल चलने वालों के लिए भी है। इसीलिए राइट लेफ्ट राइट देखकर ही रोड पार करें, वो भी जीब्रा क्रॉसिंग से।
1: आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी।
0: सड़क के किनारे हमेशा अपने सीधे हाथ की तरफ चलें, वो भी बिना फोन इस्तेमाल किए हुए, ताकि आपके परिवार को कभी इस फिल्म का दूसरा गाना ना गाना पड़े।
1: जाने कहां गए वो दिन।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

0: प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
2: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

गाना तो बहुत ही अच्छा था मगर मौसम उससे भी ज्यादा हसीन होने वाला है। रुको जरा, कुछ देर के लिए रुक जाओ और मौसम ऐसा हो जाएगा कि आप लोग भी बोलोगे कि हाँ मौसम तो सच में बहुत बेहतरीन हो चुका है। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। एंड यू वोंट बिलीव, लास्ट दो दिन से बारिश हो रही है, आज भी बारिश पक्का होगी, ये मेरी गारंटी है। और हाँ, गारंटी मान लो, क्योंकि देखो मैं ना एक बात बोलता हूँ हमेशा और वो बात मेरे साथ हमेशा होती है। एक्चुअली मैं जब भी अपनी गाड़ी धोता हूँ ना तो बारिश ज़रूर होती है। ऑल्दो मैं अगर बाहर से सर्विस सेंटर से धुलवा के लाऊंगा तब बारिश बिल्कुल नहीं होगी, बट जिस दिन मैं मेहनत करके खुद से गाड़ी धोने बैठूंगा ना, बैठूंगा नहीं मतलब खड़े होकर गाड़ी धोऊंगा, तो उसके अगले दिन बारिश ज़रूर होती है, क्योंकि मेरी मेहनत पर पानी फेरना इंद्रदेव का काम है। और मैं तो चाहता हूँ कि रोज़ाना बारिश हो जाए इस गर्मी में, ताकि सबको राहत मिल जाए इस गर्मी से। और मौसम विभाग का ये भी कहना है कि जैसे कि परसों आंधी आई थी, यानी कि मंगलवार की शाम जो आंधी आई थी उसमें पालम एयरपोर्ट पे वो आंधी की स्पीड दर्ज की गई थी 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, और कहा जा रहा है कि आज भी 60-70-80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड दिल्ली एनसीआर साथ ही साथ फरीदाबाद में भी हो सकती है। तो मैं आप लोगों से एक बात बोलना चाहूँगा, अगर आपके आसपास आंधी कभी भी चले तो आप लोगों को दो तीन चीज़ें करनी है। पेड़ से अपनी गाड़ी को दूर रखना है, और हो सके तो अंडरकवर हो जाओ। अंडरकवर मींस किसी दुकान के अंदर चले जाओ या फिर किसी घर के अंदर चले जाओ, क्योंकि उस टाइम बाहर खड़े होना खतरे से खाली नहीं है। बस ये मैं बोलना चाहूँगा सारे फरीदाबाद के लिसनर्स को। और अगर आप लोग मुझे सुन रहे हैं, आप अपनी फैमिली को भी इन्फॉर्म कर दो कि अगर आंधी आती है तो हम सबको सबसे पहले शेल्टर ढूंढना है, क्योंकि हम लोग पेड़ के पास खड़े होंगे तो कुछ भी हो सकता है। चलिए अभी फिलहाल रेडियो महारानी सुनते जाइए। और आज मौसम कैसा रहेगा, कल मौसम कैसा रहेगा, और आने वाला वीकेंड आपका कैसा जाने वाला है, करेंगे इन सब चीज़ों के बारे में बात। मगर उससे पहले आप सभी के लिए रेडियो महारानी 89.6 पर आदित्य भारद्वाज की आवाज़ में एक गाना, बाय। इस गाने को एंजॉय कीजिए। मैं हूँ द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ बात है, और गाने यही चलते रहेंगे मेरे दोस्त।

0: प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें।
2: किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
3: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी की 9.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।
4: Oh, so-

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार उस दिन तो लोरी गाकर सुना भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली तू बोलता रहा।
1: अरे एक गिलास तो पीती जा। सुन

टाइम तो अभी 5:38 हो रहे हैं मेरी स्टूडियो क्लॉक में, मगर मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि अभी से थोड़ी सी देर बाद मौसम करवट लेने वाला है, और वो भी बहुत ही अच्छी तरीके से करवट लेगा। रेन लाइकली अराउंड 7 PM। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मेरे पास गूगल का नोटिफिकेशन आया है। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूँ द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ, और बारिश का मौसम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है पर्सनली। आई नो आप लोगों को भी पसंद होगा, मगर कुछ लोग होते हैं हमारे ही ग्रुप में, हमारे ही दोस्तों में, जिनको ये मौसम ना पसंद नहीं होता, तो फिर उन लोगों के लिए हम लोग क्या ही कह सकते, कुछ नहीं कह सकते। बट मैं अभी जो कहना चाहता हूँ वो ये ही है कि अभी 6:30-7 के आसपास आपको बारिश देखने को मिल सकती है, और बारिश के साथ साथ आप लोगों को आंधी भी देखने को मिल सकती है। तो अभी थोड़ी देर पहले मैं बोल रहा था कि आंधी से बच के रहिएगा। और अगर बात करें कल के मौसम की, तो आने वाला जो ये कल है, कल जो वीकेंड है, तो इस दिन आप लोगों के आसपास फिर से सुबह सुबह बारिश हो सकती है, ये ऑलमोस्ट संभावनाएं हैं। अब कितने परसेंट बारिश होगी, कितने परसेंट नहीं होगी, ये तो कल ही पता चलेगा। वैसे अगर मौसम विभाग की माने तो कल 50% चांसेस है बारिश का, और अगर बारिश हो जाए तो ठीक ही है ना, क्योंकि अगर आज बारिश हुई रात को और कल सुबह धूप आ गई तो हम सब जानते हैं उमस कितनी ज़्यादा हो जाएगी। बस ये ह्यूमिडिटी खत्म हो जाए और हम लोग आसानी से इस गली को पार कर जाए, बस यही दुआ है मेरे ऊपर वाले से। और हाँ, इसी के साथ साथ मैं बोलना चाहता हूँ, अगर आप लोग कहीं पर भी ट्रैफिक में फंसे हैं तो मुझे कॉल करके ज़रूर बताइएगा। नंबर है जी 9654896896। अभी फ़िलहाल रेडियो महारानी पर आप सभी के लिए गाने चला रहा हूँ, और हाँ मैंने जो नंबर दिया है उस पर कॉल करोगे अगर आप लोग, तो कॉल उठाने में देरी हो सकती है, मगर आप लोग उस पर व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हो, इनफैक्ट आप लोग टेक्स्ट मैसेज भी डाल सकते हो। तो अभी मैं जाता हूँ, बाहर का मौसम देख कर आता हूँ, वापस आऊँगा अंदर और बताऊँगा आप लोगों को कि फरीदाबाद में मथुरा रोड पर बहुत सारे AI क्या होगा उन कैमरों से, सब कुछ बताऊंगा मगर थोड़ी देर बाद। अभी फिलहाल आप सभी के लिए रेडियो महारानी 89.6 पर ये गाना AP ढिल्लों की आवाज में उनके साथ गुरिंदर गिल, चिंदा गेलों, सुनिए इस गाने को। गाने का नाम है ब्राउन मंडे।

0: घर का छोटा हूँ इसलिए निकम्मा हूँ।
1: सुन भाई सुरेंद्र।
2: हाँ।
1: छोटा हूँ जिसको सब निकम्मा बोलते हैं। मम्मी बोलती है काम कर लिया कर, रोज सुबह पानी की बोतल फ्रिज में रख देता हूँ, रिमोट मैं ढूंढता हूँ, पापा का फोन मैं चार्ज करता हूँ, जब सब सोते हैं तब लाइट बंद मैं करता हूँ, किसी ने करा होगा, मेरी बातों को कोई सीरियसली नहीं लेता, मार्केट से सामान मैं ही लेकर आता हूँ, फिर भी सब मुझे ही कहते हैं।
2: सही कह रहे तुरेंद्र, कितना भी कर ले, कार का छोटा बेटा रहेगा तो निकम्मा ही।

0: 6000
1: हो गया शुरू, तो अर्ज किया है।
0: ओहो, अर्ज होता है अर्ज। इरशाद,
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन
1: रोडवेज वाले भैया? सीट पर 4 सवारी तो अपनी गोदी में भी 3 बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार, उस दिन तो लोरी गाकर सुला भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की तरह इस्तेमाल, लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है, और ऊपर से तू भी। मैं तो चली, तू बोलता रहा।
1: अरे एक गिलास तो पीती जा, सुन।

कर रहे हो मथुरा रोड से, और आप लोगों ने जगह जगह पर देखा होगा कि मथुरा रोड में जो बीच वाला एरिया नहीं होता, दो रोड को डिवाइड करता है जो, तो वो डिवाइडर जो है उस पर काफी बड़े बड़े कोई बोर्ड लगने वाला है वहां पे, मगर वहां लगने जा रहे हैं AI बेस्ड कैमरा। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर, मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। और दिल्ली से लेके पूरा आगरा तक राजमार्ग पर काफ़ी सारे की बात करूं तो 23 किलोमीटर वाली जो फरीदाबाद की सीमा है, बॉर्डर है, इसमें टोटल 27 कैमरे लगने वाले हैं, जिसको साल 2026 के दिसंबर से पहले पहले पूरा कर लिया जाएगा। और अभी मैं एक बात और बोलना चाहूँगा आप लोगों को कि कैमरे लगने वाले हैं तो सतर्क ओवर स्पीडिंग करते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी लेन में ड्राइविंग नहीं करते हैं, तो ये जो कैमरे होंगे ना ये ऑटो ट्रैकिंग कैमरे हैं और ये लगाए जाने वाले हैं। और इसका मकसद क्या है, बेसिकली मकसद यही है कि जितना भी नेशनल हाईवे पे ट्रैफिक है उसकी निगाह, जितने भी एक्सीडेंट्स होते हैं, भगवान न करे कोई एक्सीडेंट हो, तो एक्सीडेंट अगर होता है तो उसका विश्लेषण भी कर सके, ताकि आगे आने वाले टाइम पे पता लग सके कि हाँ इस कट पे लोग कहीं से भी गाड़ी ले आते हैं। होता है ना, आप लोगों ने भी देखा होगा मथुरा रोड पे काफ़ी सारे स्पीड से गाड़ी अंदर ले आते हैं, तो वो भी देखा जाएगा। और साथ ही साथ अगर कोई आपराधिक तत्व है और वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा है तो उसके ऊपर भी ट्रैकिंग हो सके, इसलिए ये AI बेस्ड कैमरे लगाए जा रहे हैं। बनेगा NHPC टोल प्लाजा से शुरू होकर आगरा के सिकंदरा चौक तक ये पूरा का पूरा हाईवे कवर होने वाला है AI बेस्ड कैमरे से। तो यहाँ पर मैं बस यही बोलना चाहूँगा कि अब जो भी लोग ओवर स्पीडिंग करते हैं, अगर आपका कोई दोस्त तेज चलाता है, रफ चलाता है, या फिर कोई ऐसा दोस्त है जो बाइक चलाता है बिना हेलमेट के, वो भी बीच सड़क पर, तो उसको बोलिएगा कि जल्द ही आप लोग पर एक्शन लेने वाली है भारत सरकार। तो बस इतना सा बोलना चाहूँगा। और इसी के ट्रैफिक में फंसे हैं तो बताइएगा ज़रूर, नंबर है 9654 896 896। मगर उससे पहले हम तो

0: बॉयफ्रेंड हूँ इसलिए गुलाम हूँ।
1: हाँ भाई तुरेंद्र
2: भाई, गर्लफ्रेंड मुझे फोन करती है, अगर फोन बिजी जाए तो किससे बात कर रहे थे? सोचा था शॉपिंग कराने ले जाऊंगा, 500 रुपए का खर्चा करवाएगी, 5000 का बिल बनवा दिया। सुबह कहती है आई लव, शाम होती कहती तुम मुझसे प्यार नहीं करते। मैंने पूछा मैं तुम्हारा क्या हूँ? कहती तुम मेरे सब कुछ हो। मैंने कहा सब कुछ में क्या आता है? कहती तुम मुझे ड्राइवर हो, तुम मेरे ATM हो। मतलब तो सिंपल यही हुआ ना कि मैं तो उसका गुलाम हूँ।
1: रहेगा तो गुलाम ही।

जब जब ट्रैफिक की बात आती है तब तब कुछ ऐसे एरियाज है फरीदाबाद के जहां पर ट्रैफिक रोज मिल। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ और मैं बात कर रहा हूं इस टाइम कुछ ऐसी जगहों की जिसे कहते हैं मथुरा रोड कनेक्टिंग एरियाज। जैसे रहे हैं मथुरा रोड की तरफ तो आपको सबसे बेस्ट ऑप्शन जो लगेगा वो है नीलम फ्लाईओवर। ये इसलिए क्योंकि नीलम फ्लाईओवर पे जो ट्रैफिक है वो मूविंग ट्रैफिक रहता है, मगर कभी आप अगर बड़खल पुल के ऊपर से जाओगे मथुरा रोड कनेक्ट करने के लिए तो क्योंकि 10 से 15 मिनट लग जाते हैं जस्ट बड़खल पुल फ्लाईओवर को क्रॉस करने के लिए। और बता दूं आपको, जब हम लोग ओल्ड की तरफ से आते हैं वापस मथुरा रोड की तरफ तो भी आप लोगों को सेक्टर ओल्ड के एक तो चौक के पास वाला, दूसरा मिलता है सेक्टर 28-29 की डिवाइडिंग रोड पर, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा कंजेशन रहता है। और अगर मैं और हॉटस्पॉट्स की बात करूँ फिर तो मैं बस नाम लेते जाऊँगा, आप लोग भी बस हाँ में हाँ मिलाते चले जाओगे। तो इन सब का कोई सलूशन, हम लोगों को अपनी लेन में ड्राइविंग करनी पड़ेगी क्योंकि हम लोग अपनी लेन में बिल्कुल भी ढंग से ड्राइव नहीं करते हैं। और फिर कुछ लोगों की एक कंप्लेंट रहती है कि ऑटो रिक्शा वाले टेढ़े मेढ़े चलाते हैं। आई एग्री विद दैट, बट स्टिल मैं यहाँ पर एक बात बोलना चाहूँगा कि ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स भी अपने दिन भर की अपने पेशेंस के साथ काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हम सबको मिलकर इस ट्रैफिक से निकलना पड़ेगा। और अभी फिलहाल आप लोग रेडियो महारानी सुनते जाइए, आप सभी के लिए गाना चलाऊंगा ताकि अगर आप लोग ट्रैफिक में फंसे भी हैं ना तो भी आपका मूड सही हो जाए।

0: बच्चों को स्कूल से लाने में लेट हो जाती, इसीलिए रेड लाइट जंप करी।
1: बारिश तेज होने से पहले घर पहुंच जाओ, बस इसीलिए गाड़ी तेज चला रहा था।
2: मेरा घर तो यही पास में है, इसलिए रॉन्ग से साइकिल है, कोई गाड़ी थोड़ी है।
3: रेडियो महारानी पूछता है, अपनी और दूसरों की जान खतरे में डालने का आपके पास क्या बहाना है? करो तो ना एक्सीडेंट होगा और ना ट्रैफिक की परेशानी। FM 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

0: आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर।
1: तेरे प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ में स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
2: तो मैं क्या करता यार, उनका झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
1: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
3: Only on Radio Maharani 89.6 FM. Top safe, be safe, be aware.

क्या आपको पता है कि अगर आप खुले में कूड़ा फेंकेंगे तो फिर आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, और वो भी कानूनी कार्रवाई होगी, साथ में जुर्माना लगेगा वो अलग, और बता दूं आपको 1000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर, मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। देखो अभी तक तो सिर्फ 25,000 रुपये मैक्सिमम जुर्माना लगता था, मगर अब खुले में लगेगा दोगुना फाइन लगने वाला है, और आपको हो सकता है 50,000 रुपये भी देने पड़ सकते हैं। एंड आई एम नॉट किडिंग एट ऑल। आप लोगों ने देखा होगा अभी इस टाइम फरीदाबाद में जहाँ जहाँ कूड़ा पड़ा होता था वहाँ वहाँ पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ फरीदाबाद, यहाँ पर कूड़ा फेंकना मना है, सख्त मना है। और वैसे भी मेरे मन में एक सवाल आता है कि कूड़ा फेंकना ही क्यों सड़क पे? आप लोग उसे डस्टबिन में डालिए, कूड़ेदान में डालिए, आप लोग अपने घर में गीला और सूखा कचरा अलग करिए, कचरा नहीं माफ कीजिए कचरे को अलग करने के लिए उनको दीजिए। और अगर आप लोगों ने अब भी इसके बावजूद सड़क पर कहीं पर भी कूड़ा फैलाया, या फिर जहां पर बोर्ड लगे स्पेशली वहां पर अगर आपने जाके कूड़ा फैलाया, तो फिर आपके ऊपर जुर्माना लग सकता है। पहले तो 5,000 रुपये है और डबल हो गया ये फाइन, और फाइन होने वाला है 50,000 रुपये तक। और बता दूं आपको पिछले 6 महीने के अंदर खुले में कूड़ा फेंकने को लेकर टोटल 250+ चालान हो चुके हैं। तो खुले में कूड़ा फेंकना, दूसरी चीज ये कि अगर आपको कोई इंसान देखता है कूड़े में, मतलब खुले में कूड़ा फेंकते हुए, तो आप भी उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं। आप उसकी फोटो खींचिए, आप लोग पीएमओ को टैग कीजिए, सीएमओ को टैग कीजिए, और साथ ही साथ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ फरीदाबाद को भी टैग कीजिए सोशल मीडिया। तो मुझे दीजिए इजाजत, कहीं नहीं जा रहा, बस बाहर जा रहा हूँ, देख कर आ रहा हूँ मौसम कितना हसीन है। अगर आपको लगता है मौसम सच में हसीन है तो मुझे कॉल करके जरूर बताइएगा। फिलहाल एक गाना चला देता हूँ आप लोगों के लिए, बैक्स ऑफ बॉलीवुड का एक गाना, और इसी गाने के साथ सुन रहे हैं आप लोग रेडियो में।

सलामत सिर्फ शहंशाह नहीं, रॉयल वाइब्स लेने वाले लोग भी रह सकते हैं। तो जब भी अपनी शाही सवारी में सड़क पे निकलें, सीट बेल्ट के कवच को जरूर पहने, तभी तो आएगा लाइफ में किंग।

save life. Cinematic vibe. अगर पानी नहीं होता तो बॉलीवुड के कितने गाने अधूरे रह जाते. जैक और रोज आज भी टाइटैनिक घुमा रहे होते. उसी को मनाता. और ये गाना कभी नहीं बन पाता. रेडियो महारा बचाने का सबसे स्ट्रॉन्ग बहाना. जल है तो एंटरटेनमेंट का कल है. रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी.

0: गर्लफ्रेंड हूँ इसलिए कलेशी हूँ। यार निया सुन।
1: हाँ सिया बोल।
0: लग बढ़िया, ये भी नहीं पूछा कि तुम कैसी हो, और जब मिलने के लिए बोलो तो कहते हैं टाइम नहीं है, और दोस्तों के साथ घूमने के लिए टाइम ही टाइम है। जिस लड़की को जानता तक नहीं है उसकी फोटो पे भी लाइक कर देता है, और जब पूछ और पता है रील्स पे रिप्लाई ना करके रिएक्ट करके छोड़ देता है, और जब मैं कंप्लेंट करूं तो मुझे कलेशी कह देता है।
1: सही कह रही है, सब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को कलेशी कहते हैं।

सलामत सिर्फ शहंशाह नहीं, रॉयल वाइब्स लेने वाले लोग भी रह सकते हैं। तो जब भी अपनी शाही सवारी में सड़क पे निकलें, सीट बेल्ट के कवच को जरूर पहनें, तभी तो आएगा लाइफ।

आसमान में पतंग उड़ रही है, और अगर कोई विश्वास नहीं कर रहा तो उसके लिए यही गाना था, तो आके देख ले, मतलब तुम लोग आके देख लो सच में पतंग उड़ रही है। मतलब अब तो शायद वापस चली गई होगी, क्योंकि अभी मैं गया था ना बाहर देखने के लिए, तो एक दो पतंग उड़ती हुई दिख गई थी। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर, मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। जून का महीना चल रहा है, जुलाई आना है, फिर उसके बाद आएगा अगस्त, 15 अगस्त को जब सबसे ज्यादा पतंग उड़ती है। अभी से शुरू हो चुकी है पतंग उड़नी, और बच्चों की छुट्टियां पड़ी हुई है, क्या करें, शाम को खाली बैठे हैं। हमारी तरह तो है नहीं ना वो कि हम लोग बचपन में निकल जाते थे घर से बाहर खेलने के लिए, और कम से कम दो तीन चोट खा के और फिर उसके बाद पूरे काला होके वापस आते थे। खैर, उन सब चीज़ों को साइड में रखते हैं, और पतंग की बात मैं इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि पतंग का सीज़न आ गया है, और आप लोग भी देखते होंगे कुछ छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि पतंग के पीछे दौड़ते हैं। नो डाउट हमने भी वो बचपन में किया है, बट अब समझ आता है कि हमने कितनी बेवकूफ़ी की थी उस टाइम। तो अभी जो छोटे बच्चे अगर आप लोगों को कहीं पर भी दिखे पतंग के पीछे दौड़ते हुए, तो उनको ना प्यार से समझाइएगा, और हो सकता है आपकी कॉलोनी में, आपकी लोकेलिटी में, या फिर आपकी सोसाइटी में ऐसे कोई बच्चे हों जो पतंग के पीछे दौड़ रहे हैं। ऑल्दो पतंग कितने 5 या 10 रुपए की आती होगी, 1-2 रुपए की आती होगी, बट उसको पकड़ने का मजा जो था ना वो अलग ही था, वो अलग ही सेटिस्फेक्शन देता था। बट स्टिल अभी बच्चे इसके पीछे दौड़ रहे हैं, अगर आपको कोई भी ऐसा दिखता है तो उसको रोकिए, उसको समझाइए प्यार से, और अगर वो नहीं माने तो उसके फिर पेरेंट्स को बताइए, इसके ज़्यादा क्या कर सकते हैं। चलिए अभी फिलहाल रेडियो महारानी आप लोग सुनते जाइए, के की आवाज़ में आप सभी के लिए रेडियो महारानी 89.6 पर ये गाना।

0: रिड्यूस, रीयूज, रीसाइकिल, यही है वो RRR जिन्हें फॉलो करके हमारा शहर एनवायरनमेंट से ऑस्कर जीत सकता है। पर ये 3 R आखिर है क्या? रेडियो महारानी आपको आसान भाषा में समझाता है। रिड्यूस यानी प्लास्टिक से बनी चीजों का कम से कम इस्तेमाल, रीयूज यानी जो दोबारा काम आ सके सिर्फ उसी प्लास्टिक का इस्तेमाल, रिसाइकिल यानी वेस्ट प्लास्टिक को फेंकने के लिए सिर्फ ब्लू डस्टबिन का इस्तेमाल।
1: FM 89.6 का रेजोल्यूशन यही है कि सिंगल यूज प्लास्टिक अब ऑप्शन में ही नहीं है।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

0: कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हूँ, इसलिए गधा हूँ।
1: सुन भाई सुरेंद्र।
2: हाँ भाई सुरेंद्र।
1: सोचा था कॉर्पोरेट ज्वाइन करके आराम की नौकरी होगी, लेकिन दिन में 10 बार तो मीटिंग हो जाती है। मैनेजर को भी काम लंच के 10 मिनट पहले याद आता है। लीव मांगने पर वाई इंटरव्यू शुरू हो जाता है। काम मैं करता हूँ, क्रेडिट मैनेजर ले जाता है, और ये बात जब मैं घर वालों को बता दूँ तो वो मुझे गधा बोल देते हैं।
2: ठीक कह रहे तुरेंद्र, कॉर्पोरेट एम्प्लॉय कितना भी कर ले, रहेगा तो गधा ही।

वॉल्स पर सेव वाटर सेव सिनेमैटिक वाइब। अगर पानी नहीं होता तो बॉलीवुड के कितने गाने अधूरे रह जाते। जैक और रोज आज भी टाइटैनिक घुमा रहे होते। वीरू किसकी टंकी पर चढ़ के मौसी को मनाता। और ये गाना कभी नहीं बन पाता। रेडियो महारानी 89.6 देता है पानी बचाने का सबसे स्ट्रॉन्ग बहाना। जल है तो एंटरटेनमेंट का कल है। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: 89.6 FM।
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: परेशान
1: कर नौशला Let's go.
2: प्लेयर्स था इस गाने का नाम। स्वागत है आप सभी का फिर से रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मंडा आप सभी के साथ बादशाह एंड करण रौजला की आवाज़ में। ये गाना था प्लेयर्स। और अभी जो मैं बात करना चाहता हूं वो यही है कि देखो ये तो प्लेयर्स हैं मगर इसके अलावा एक और प्लेयर्स हैं जो कि इंडिया की मेन टीम में अभी शामिल नहीं है मगर इंडिया ए में रहते हुए भी इन्होंने बहुत ही ज़्यादा धमाल मचाया है। आपको पता है इंडिया वर्सेस श्रीलंका मैच चल रहे हैं, मतलब अगर मैं क्लियरली बोलूं तो इंडिया ए वर्सेस श्रीलंका ए मैचेस चल रहे हैं और यहां पर टीम इंडिया ने कमाल करके दिखाया। अभी रिसेंट वाले मैच में हुआ ये था कि श्रीलंका को चाहिए थे 17 रन 18 बॉलों पे और जब मैं मैच देख रहा था मेरे को लगा यार अब तो नहीं जीतने वाले, अब क्या जीतेगी टीम इंडिया, मगर फिर उसके बाद पता चला कि हाँ टीम इंडिया में अभी भी दम बाकी है। ये ट्राई सीरीज़ है और बता दो 3 मैचेस होने वाले पूरे। और अगर मैं बात करूँ श्रीलंका वर्सेस इंडिया के इस मैच की तो 18 बॉलों में 17 रन आप सबको पता है बहुत इजीली बन जाते हैं मगर यहाँ पर उनके पास सिर्फ और सिर्फ 4 विकेट बची थी अपने हाथ पे। बट स्टिल इंडिया ने ये मैच अपने नाम कर लिया और उसके बावजूद 8 रन से जीती है टीम इंडिया। सोचो इतना बड़ा मार्जिन छोड़ा था और 18 बॉलों में सिर्फ और सिर्फ कितने रन दिए, 8 रन 9 रन दे दिए होंगे, हाँ 9 ही रन दिए हैं वैसे तो। और इसी के साथ साथ मैं ये बोलना चाहूँगा देखो कोई भी स्पोर्ट हो हम लोगों को सारे स्पोर्ट्स को सपोर्ट करना पड़ेगा क्योंकि देखो अभी वैसे फीफा वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा चर्चाएं चल रही है तो उसके ऊपर भी इंडियन टीम को सपोर्ट करो क्योंकि अभी इंडियन टीम उसमें है नहीं बट स्टिल हमारे सपोर्ट से क्या पता कल को फीफा वर्ल्ड कप में क्वालिफाई भी कर जाएगी। और इसके साथ साथ और भी बहुत सारे गेम्स हैं जिसमें इंडियन टीम सपोर्ट मांगती है, सिर्फ क्रिकेट ही इंडियन टीम नहीं है, मतलब हम लोग जब भी इंडियन टीम की बात करते हैं तो सिर्फ क्रिकेट उसमें नहीं आता, बहुत सारे और भी गेम्स आते हैं तो सबको सपोर्ट कीजिए। और अभी फिलहाल रेडियो महारानी सुनते जाइए आप सभी के लिए 89.6 रेडियो महारानी पर ये गाना।

0: मंजिल सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो सफर की कद्र करते हैं। कभी कभी एक छोटी सी लापरवाही पूरी कहानी बदल देती है। हेलमेट कोई बोझ नहीं, ये आपकी समझदारी का सबसे बड़ा सबूत है।
1: तो अगली बार सफर पर निकलने से पहले इस छोटी सी समझदारी को अपने सिर पर जरूर रखिए, क्योंकि आपकी एक सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी। सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही,
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब।

0: इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
1: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

अभी थोड़े दिन पहले फरीदाबाद से एक बहुत ही दुखद खबर आई है, लाइक डे बिफोर यस्टरडे, एक दो दिन पहले की बात है। और ये खबर ऐसी थी कि सीवर के अंदर सफाई करने के लिए दो उतरे थे लोग और वो अपनी जान खो बैठते हैं। आप लोगों ने शायद सुना होगा इस बारे में। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मंडा आप सभी के साथ। और मैं इस टॉपिक पर बात करना चाहता हूं, इसलिए बात करना चाहता हूं क्योंकि हम लोग क्या ये पहली बार सुन रहे हैं? नहीं ना, हम लोग इस चीज़ को बार बार सुनते आ रहे हैं, मगर उसके बावजूद इनको पूरी तरह से किट नहीं दी जाती है क्या? मतलब ये एक सवाल है सभी से, सब जो जिम्मेदार लोग हैं उन लोगों से, क्योंकि किसी ने अपनी जान गंवाई है। और पूरी खबर अगर मैं बताऊं आप लोगों को, वैसे मैं खबर बताने नहीं आया हूं, बट जहां तक मुझे सुनने में आया वो यही था कि एक इंसान अंदर गया था और उसकी वो अंदर बेहोश हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ द जहरीली गैस। अंदर बहुत ज़्यादा गैस होती है सीवर में, सबको मालूम है। और नो डाउट वहां पर पहले एक बहुत हाई प्रेशर हवा छोड़ी जाती ताकि जितनी भी गैस है वो बाहर आ जाए, बट उसके बावजूद वो बेहोश हुआ। फिर उसको बचाने के लिए उसका भाई जब नीचे उतरा तो दोनों के दोनों वहीं पर अपनी जान गंवा बैठे। तो ये एक सवाल है सिस्टम से, सवाल इसलिए है क्योंकि हम लोग ऐसी चीज़ बार बार लगातार सुनते आ रहे हैं बहुत टाइम से। तो मुझे बस यही एक मन में सवाल रहता है कि कोई अगर बड़ा अधिकारी मुझे सुन रहा है, क्या इसका सोल्यूशन रह सकता है? अगर आप लोग बता सकते हैं तो बताइएगा ज़रूर। नंबर है 9654896896। अभी फिलहाल रेडियो महारानी पर आप सभी के लिए गाना खामोशियाँ सुनिए। इस गाने को रेडियो महारानी 89.6 पर।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
0: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यह होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

फरीदाबाद स्मार्ट सिटी। बट क्या हम लोग सच में अभी भी स्मार्ट सिटी है, या फिर मैं कहूँ क्या हम लोग अभी भी सच में स्मार्ट हैं? स्वागत है आप सभी का फिर से रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूँ द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। एंड स्मार्ट सिटी नो डाउट फरीदाबाद है, बट क्या हम लोग स्मार्ट हैं? हम खुद से अगर ये सवाल करें तो मुझे लगता है एक बहुत ही बेहतरीन सवाल होगा ये खुद से करने के लिए, क्योंकि जब जनगणना की बात आई तब भी फरीदाबाद पीछे रह गया, जब स्वच्छता की बात आई तब भी फरीदाबाद पीछे रह गया, और फिर सिविक सेंस की जब बात आ रही है तब भी फरीदाबाद पीछे क्यों रह रहा है? ये सवाल हम लोगों को अपने आप से पूछना चाहिए, क्योंकि फरीदाबाद के अंदर गंदगी आप सभी को पता है, जगह जगह पर कूड़ा बढ़ता जा रहा है। और ये तो ऐसा है नहीं ना कि सरकार खुदा के कूड़ा डाल रही है, ये हम जैसे ही लोग हैं, हमारी सोसाइटी के ही लोग हैं जो कि कूड़ा जगह जगह पर फेंक देते हैं। अगर उनके घर में कोई गाड़ी मतलब कूड़ा उठाने के लिए नहीं आती है तो फिर वो क्या करेंगे, पास के चौराहे पे जाके गाड़ी फेंक देंगे। अगर मैं बात करूँ अपने घर के आसपास की, तो मेरे घर के पास एक लेबर चौक नाम की जगह है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा कूड़ा फेंक रखा है लोगों ने, और वहाँ पर कोई मतलब सरकारी गाड़ी ने आके कूड़ा नहीं फेंका है। एंड इनफैक्ट महीने में दो बार तो मैंने देखा ये खुद से कि JCB आई थी सरकार की और उन्होंने वहाँ पर सफाई की थी, मगर उसके बावजूद लोग नहीं मान रहे हैं। तो इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है बताइएगा जरूर। नंबर है 9654896896। फिलहाल रेडियो महारानी पर आप सभी के लिए तलविंदर की आवाज़ में एक गाना कातिलाना सुनिए। इस गाने को मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। बात और गाने यही चलते रहेंगे मेरे दोस्त।

0: प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें।
2: किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाए और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
3: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हाँ तो शुरू होते हैं और अर्ज करते हैं।
2: अर्ज नहीं होता अर्ज अर्ज।
1: शायरी पे ध्यान लगाओ
0: इरशाद।
1: रोडवेज बस जैसा अपना हाल है यारों।
2: मेरा नहीं तुम्हारा ही होगा
1: सबका ये। सब कुछ टूटा फूटा है फिर भी अपना रुतबा है यारों।
2: ये बात तो सही है।
1: और बस की याद आती है जब भी लाइफ में कुछ समझ नहीं पाता हूँ।
2: कैसे कैसे?
1: कंडक्टर बोलता है आगे बढ़ो तो मैं मोटिवेट हो जाता।
2: अरे यार वो तो मैं कह रहा था कि मुंह उठाकर बस से उतरो और आगे बढ़ो। अब तुम बोलते रहो मैं तो चली गई मेरी बस आ गई।
1: सुनो सुनो हेलो टिकट कटवा लेना।

आज जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने बात की थी कि फरीदाबाद में बहुत सारे कैमरे लगने वाले हैं, 23 किलोमीटर का स्ट्रेच है और टोटल 27 कैमरे लगने वाले हैं, वो भी सारे के सारे AI बेस्ड कैमरे होने वाले हैं। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर, मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। टाइम हो गया 7:45, मगर अभी जो मैं बात कर रहा हूं वो यही है कि देखो AI बेस्ड कैमरे लगने वाले हैं, उसकी वजह से मैं नहीं चाहता कि किसी भी इंसान का चालान कटे, तो प्लीज़ अभी से सुधर जाइए अपने दोस्तों को बोलिए सुधर जाइए, क्योंकि हमारे कुछ दोस्त होते हैं जो बाइक को सांप बना देते हैं और गाड़ी को तो हवाई जहाज़ बना देते हैं, और फिर वीकेंड पे तो ये उनका पेट डायलॉग होता है कि गाड़ी तो तेरा भाई चलाएगा। तो उन लोगों को बोलना कि देखो अब गाड़ी तमीज़ से चलाओ, क्योंकि अब चालान तुरंत घर आ जाएगा, और सिर्फ चालान के डर से ही नहीं, सेफ्टी भी बहुत बड़ा मेजर है। तो सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए गाड़ी आपको तमीज से चलानी है, और साथ ही साथ बाइक भी आपको विद इन स्पीड लिमिट और सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करके चलाने हैं। और ये सारी की सारी बातों के बाद अब देखो टाइम हो गया है, मतलब वक्त की नज़ाकत को देखते हुए मुझे जाने की इजाज़त दीजिए। मैं मिलूंगा आप सभी से फिर से कब, कल शाम, कल तो फ्राइडे है, फ्राइडे को तो मस्ती अलग होती है। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और रेडियो महारानी सुनते जाइए, क्योंकि आप लोगों के लिए गाने तो चलते रहेंगे मगर वापस आएगी गीत विदेश बाजियां, खूब सारी प्यार भरी बातें लेकर और खूब सारे गाने लेकर आप लोगों के लिए आने वाली है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा, दिस इज गौरव साइनिंग ऑफ फ्रॉम रेडियो महारानी 89.6 FM।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए। सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: pressure.
1: Puspa, I hate water wasting रे. जा जाके टंकी बंद कर.

0: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: घर का छोटा हूँ इसलिए निकम्मा हूँ।
3: सुन भाई सुरेंद्र।
4: हाँ भाई सुरेंद्र।
3: मैं घर का छोटा हूँ जिसको सब निकम्मा बोलते हैं। मम्मी बोलती है काम कर लिया कर, रोज सुबह पानी की बोतल फ्रिज में रख देता हूँ, रिमोट मैं ढूंढता हूँ, पापा का फोन मैं चार्ज करता हूँ, जब सब सोते हैं तब लाइट बंद मैं करता हूँ, जब घर में कुछ गलत होता है सब बोलते हैं इसी ने करा होगा, मेरी बातों को कोई सीरियसली नहीं लेता, मार्केट से सामान मैं ही लेकर आता हूँ, फिर भी सब मुझे ही कहते हैं।
4: सही कह रहा है तुरेंद्र, कितना भी कर ले, कार का छोटा बेटा रहेगा तो निकम्मा ही।

0: 89.6 FM।
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं।
3: कुछ हटके।
4: जानते हो बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी है। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
5: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

अभी अभी आपने सुना है ये बहुत ही खूबसूरत सा ट्रैक, प्यार आता है। और सच बताऊं तो प्यार की सबसे प्यारी बात यही है जो बिना बुलाए आ ही जाता है, कभी किसी की हंसी में, कभी किसी की याद में, और कभी कभी किसी अजनबी की आंखों में बस आ जाता है। रेडियो महारानी से मैं हूँ आपकी इश्क वाली गीत, और शो ले आई हूँ आपके लिए इश्क बाजियां। और ये शो उन दिलों के लिए है जिनमें अब भी मोहब्बत की गूंज बाकी है। और आज का जो ये पहला आर है वो स्पेशल है इश्क शायराना, जहाँ मैं बात करती हूँ उन शायरों की जिन्होंने मोहब्बत को, जुदाई को और रिश्तों की उलझनों को इतने खूबसूरत अल्फाज दिए कि वो हमारी जिंदगी का बहुत अहम हिस्सा बन गए। और आज की रात मैं आपको लेकर चलूंगी फैज अहमद फैज की दुनिया में, जिनकी शायरी मोहब्बत में भी है

फैज अहमद फैज की दुनिया में, जहां मोहब्बत भी है, तड़प भी है और हकीकत भी। लेकिन शुरुआत करते हैं इस गाने से, जो अपने शब्दों में यही कहता है, चाहे हालात जैसे भी हो, जब दिल किसी पे आ जाता है तो बस एक ही एहसास

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: सोशल मीडिया पे प्राइवेसी टाइट रखो, अपनी लाइफ में डॉक्यूमेंट्री मत बनाओ, और हाँ, लाइफ में ड्रामा का फोकस ज्यादा रखो।
2: अरे भाई, इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है
3: भाई? मैं तो

0: भी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
1: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

गाना है फ्रॉम द मूवी रहना है तेरे दिल में, और इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है। शो है इश्क बाजियां और मैं हूँ इश्क वाली गीत। और कभी नोटिस किया है, आजकल के रिश्तों में सब कुछ बहुत फास्ट हो गया है, जल्दी प्यार, जल्दी टूटना, जल्दी आगे बढ़ जाना, लेकिन दिल वो आज भी पुराने जमाने की तरह स्लो है। उसको आज भी वही दर्द, वही मोहब्बत उतनी ही गहराई से महसूस होती है, और जब दिल बोलना चाहता है तो अल्फाज ढूंढ नहीं पाता। तभी तो हमें शायर चाहिए होते हैं, जो हमारे दिल की बात हमारी जबान से पहले कह जाते हैं। और आज इश्क शायराना में आप सुनने वाले हैं फैज अहमद फैज को। फैज की शायरी मोहब्बत भी है और हकीकत भी। एक तरफ वो कहते हैं, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग। सोचो ये लाइन आज के टाइम में कितनी रिलेटेबल है, क्योंकि आजकल हम सबके पास अपने अपने स्ट्रगल्स हैं, करियर का प्रेशर, फैमिली एक्सपेक्टेशंस, सोशल मीडिया के कंपैरिजन वाली लाइफ, इन सब के बीच प्यार अक्सर पीछे छूट जाता है। दिल तो चाहता है सब कुछ पहले जैसा हो, लेकिन जिंदगी बदल चुकी होती है। और फिर फैज हमें एक और तस्वीर दिखाते हैं, गुलों में रंग भरे बादे नौबहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। मतलब हाँ, दर्द है, हकीकत है, लेकिन मोहब्बत फिर भी जरूरी है, क्योंकि वही तो है हमारी ड्राई जिंदगी को फिर से रंग भरने के लिए। तो दोस्तों, आज अगर आप किसी रिश्ते में हो या किसी से दूर हो चुके हो, बस इतना याद रखना, मोहब्बत का मतलब सिर्फ साथ रहना नहीं है। कभी कभी मोहब्बत वो यादें होती हैं जो आपकी थकी हुई शाम को मुस्कुराहट दे जाती हैं। और यही तो है असली इश्क शायराना, दिल की बात शायर के अल्फाज और हमारी जिंदगी का कनेक्शन। और अब यहाँ पर सुनते हैं बहुत ही बेहतरीन सा गाना। गाने के बाद फिर से लौटेंगे। शो है इश्क बाजियां और मैं हूँ इश्क वाली की।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद।
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार उस दिन तो लोरी गाकर सुला भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे
0: हो? हाँ।
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली तू बोलता रहा।
1: अरे सुनो।
0: बाय।

गाना है फिल्म परम सुंदरी से और इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है। शो है इश्क बाजियां और मैं हूं आपकी इश्क वाली गीत। और ये जो टाइम होता है ना, ये बहुत सुकून का होता है। जब दिन भर की भागदौड़ से घर पर लौटते हैं तो एक अलग सी खुशी महसूस होती है। दिन भर की जो थकान है वो सब दूर भाग जाती है। और पता है, मेरे साथ भी यही है। कभी कभी इस टाइम की आरजे होने का अच्छा हिस्सा यही लगता है कि इस वक्त आप और मैं दोनों ही अपनी अपनी दुनिया से थोड़ा सा ब्रेक लेकर बस दिल की बातें कर रहे होते हैं। दिन भर की भाग दौड़, मीटिंग्स, डेडलाइंस, फैमिली टेंशन्स, सबको पीछे छोड़कर ये कुछ पल सिर्फ आपके और मेरे होते हैं। अब असली सवाल ये है कि इन पलों में हम सबसे ज्यादा किसे याद करते हैं? ज्यादातर वही ना जिसके बिना अधूरे लगते हैं, यानी मोहब्बत। लेकिन फैज कहते हैं मोहब्बत ही जिंदगी का सब कुछ नहीं है। चलिए उनके शेर से आपको समझाती हूँ। वो कहते हैं कि और भी दुख है जमाने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा। सोचो कितनी बड़ी बात है ये। आजकल हम सोचते हैं कि प्यार नहीं है तो जिंदगी अधूरी है, लेकिन सच तो ये है कि जिंदगी की लड़ाइयाँ, दर्द और रिस्पॉन्सिबिलिटीज कभी कभी मोहब्बत से भी बड़ी हो जाती है। और फैज यही हमें याद दिलाते हैं कि प्यार जरूरी है लेकिन जिंदगी उससे कहीं बड़ी है। तो दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि मोहब्बत आपके लिए सब कुछ है तो जरा ठहर जाइए, जरा रुक जाइए। जिंदगी की किताब में मोहब्बत बस एक चैप्टर है, पूरी कहानी नहीं। और यही है इश्क शायराना, जहाँ शायर हमें मोहब्बत के साथ साथ जिंदगी का सच भी सिखाते हैं। अभी वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटेंगे। शो है इश्क बाजियां और मैं हूँ आपकी इश्क वाली गीत।

0: पर।
1: तेरे प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
2: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
1: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाए और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचे। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
3: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

वैसे ही आशिकी कई बार बगावत भी कर जाती है। इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है, शो है इश्क बाजियां और बहुत ही खास सा सेगमेंट है इश्क शायराना। देखिए, मोहब्बत पर बात हो चुकी है, अब बात करेंगे कुछ यादों पर, क्योंकि यही वो वक्त होता है जब यादें शुरू हो जाती हैं, किसी की भी यादें। दिन भर की आवाजें, शोर, रिस्पॉन्सिबिलिटी सब जैसे कहीं गायब हो जाते हैं और तभी दिल में वो पुरानी सी यादें दस्तक दे जाती हैं। कभी किसी की मुस्कान की और कभी किसी की नजर की, ऐसे ही पलों को अल्फाज दिए फैज ने। इन्होंने कहा है कि रात यूं दिल में तेरी खोई हुई याद आई, जैसे वीरानों में चुपके से बाहर आई, जैसे सहमी हुई रूठी हुई सहर आए, जैसे वीरानों में हल्के से हवा आ जाए। क्या कमाल का तस्वीर है। यादों को उन्होंने बहार, सुबह और हवा से कंपेयर किया है, मतलब कोई शख्स अगर याद भी आ जाए तो दिल की वीरानी भी रंगों से भर उठती है। आज की लाइफ में ये एहसास उतना ही सच है। कितनी बार होता है ना, दिन भर सब कुछ ठीक चलता है लेकिन रात को अचानक किसी की याद आकर सब कुछ बदल देती है, जैसे दिल थकान भूलकर फिर से मुस्कुरा उठता है। फैज हमें यही सिखाते हैं कि मोहब्बत का सबसे बड़ा जादू यही है कि वो दूर रहकर भी, याद बनकर भी हमारी जिंदगी में रौनक भर सकता है। तो दोस्तों, आज अगर रात आपको किसी की याद आ रही है तो बस मुस्कुराकर उसे दिल में जगा दीजिए, क्योंकि मोहब्बत हमेशा पास होकर ही नहीं, कभी कभी बस एक याद बनकर भी बहुत गहरी हो जाती है। और यही है इश्क शायराना। वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटूंगी।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चालान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

तब सोनू निगम की आवाज में है ये बहुत ही खूबसूरत सा गाना फ्रॉम द मूवी परम सुंदरी। और इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है, शो है इश्क बाजियां और मैं हूँ इश्क वाली गीत। और फैज की बातें चल रही हैं जो हमारी जिंदगी की कुछ सिचुएशन से बहुत ज्यादा कनेक्ट होती हैं, इनकी कुछ ऐसी शायरी, इनके कुछ ऐसे शेर। और अब एक और सिचुएशन है, ये सिचुएशन है कि जिंदगी में बहुत बार ऐसा होता है जब हम किसी से बहुत कुछ कहना चाहते हैं लेकिन दिल भरा होता है, लेकिन जब वो शख्स सामने आता है तो बस खामोशी रह जाती है, लव्स दिल में ही अटक जाते हैं। इसे खामोशी को अल्फाज दिए फैज ने, और देखिए इनका ये शेर जो है वो कितना खूबसूरत है और कितना ज्यादा कनेक्ट होता है इस सिचुएशन से, कि दिल नाउम्मीद तो नहीं नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। क्या कमाल की तसल्ली दे दी है ना इस शेर ने, मतलब चाहे हालात कितने ही मुश्किल से भरे क्यों ना हो लेकिन वो हमेशा के लिए नहीं है, गम की शाम कितनी ही लंबी क्यों ना लगे आखिर वो खत्म होनी ही है और उस शाम के बाद एक नई सुबह आनी है। और आज की जिंदगी में ये शेर और भी ज्यादा गहरा हो जाता है, हम सब कभी ना कभी किसी मुश्किल दौर से गुजरते हैं, किसी रिश्ते का टूटना, किसी चीज का प्रेशर, फैमिली की बहुत सारी टेंशन्स, और उस वक्त लगता है कि शायद यही दर्द हमारी पूरी कहानी है, लेकिन फैज हमें याद दिलाते हैं ना ये सिर्फ एक शाम है और ये शाम ढल जाएगी क्योंकि शाम के बाद एक नई सुबह आनी बाकी है। तो यार अगर आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा ही चल रहा हो ना, एक लंबी सी शाम चल रही हो, तो थोड़ा सा सब्र कीजिए, सुबह जरूर आएगी। और यही आपको सिखाता है इश्क शायराना। फिलहाल वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटूंगी, शो है इश्क बाजियां और मैं हूँ इश्क वाली गीत।

0: ओए मुन्ना, मैं तुझे समझा रहा हूँ। जब भी घर से निकले तो पानी की बोतल साथ लेके निकलियो। अगर तू बिना पानी की बोतल लिए निकला तो तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा। ध्यान रखियो मुन्ना।
1: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

वैसे इस गाने में आप किशोर दा की आवाज को फील कर रहे होंगे, लेकिन ये जो आवाज है ये एआई की आवाज है, किशोर दा की आवाज नहीं है। लेकिन खैर, जहां एआई के कुछ जो ड्रॉबैक्स हैं, वहां कुछ फायदे भी हैं कि हम इन नए गानों को उस पुराने एहसास में जी पा रहे हैं। इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है, शो है इश्क बाजियां और मैं हूँ इश्क वाली गीत। और अब सेगमेंट जो शुरू होने वाला है रेट्रो इश्क, जहां ऐसी ही एक मोहब्बत की कहानी के बारे में बात करेंगे, जिसकी कहानी भले ही पूरी नहीं हुई हो लेकिन उस मोहब्बत ने कमाल किया है। तो चलिए रेट्रो इश्क में आज फिर चलते हैं, उसी मोहब्बत की गहराई को महसूस करते हैं। और ये खूबसूरत सी मोहब्बत है किशोर दा और मधुबाला की, जहां हंसी सिर्फ एक मुखौटा थी, अंदर कहीं एक टूटा हुआ इंसान था। कहते हैं ना कि कुछ मोहब्बतें बड़ा शोर मचाती हैं और कुछ चुपचाप किसी दिल के कोने में बस जाती हैं। और आज रेट्रो इश्क में उसी मोहब्बत के बारे में बात होगी, जिसे हंसी में लपेटा गया मगर आंसू से सींचा गया, किशोर दा और मधुबाला की मोहब्बत। अभी वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटेंगे। शो है इश्क बाजियां और मैं हूँ इश्क वाली।

0: रिड्यूस, रीयूज, रीसाइकिल, यही है वो RRR जिन्हें फॉलो करके हमारा शहर एनवायरमेंट से ऑस्कर जीत सकता है। पर ये 3R आखिर है क्या? रेडियो महारानी आपको आसान भाषा में समझाता है। रिड्यूस यानी प्लास्टिक से बनी चीजों का कम से कम इस्तेमाल, रीयूज यानी जो दोबारा काम आ सके सिर्फ उसी प्लास्टिक का इस्तेमाल, रिसाइकिल यानी वेस्ट प्लास्टिक को फेंकने के लिए सिर्फ ब्लू डस्टबिन का इस्तेमाल।
1: FM 89.6 का रेजोल्यूशन यही है कि सिंगल यूज प्लास्टिक अब ऑप्शन में ही नहीं है।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।
3: क्या कहा?

बहुत ही खूबसूरत सा गाना है और ये गाना है किशोर दा और लता जी की आवाज में। इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है, शो है इश्क बाजियां और मैं हूँ इश्क वाली गीत। और रेट्रो इश्क के इस खास सेगमेंट में हम आज बात करने वाले हैं किशोर दा और मधुबाला की मोहब्बत के बारे में। एक दौर था जब मधुबाला बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत अदाकारा मानी जाती थी, मुस्कुराहट उनकी पहचान थी और चेहरे पर एक ऐसा नूर था जैसे पर्दे पर बस चांद उतर आया हो। और दूसरी तरफ थे हमारे किशोरदा, बॉलीवुड का सबसे चुलबुला बिंदास और थोड़ा सा नहीं बहुत ज्यादा सा आवाज का जादूगर। जब दोनों पहली बार मिले तो एक स्टार और एक स्टैंड अप सिंगर की मुलाकात हुई, लेकिन ये मुलाकात मोहब्बत में कैसे बदल गई? दो लोग जो एक दूसरे से बिल्कुल ही ऑपोजिट थे, उनको कैसे प्यार हुआ? इसके बारे में बात होगी, लेकिन अभी वक्त है गाने का। गाने के बाद फिर से लौटेंगे। शो है इश्क बाजियां और मैं हूं आपकी इश्क वाली गीत।

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

रवि साहब की आवाज में है ये गाना और फिल्म हम किसी से कम नहीं जो आई थी 1977 में, और इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है। शो है इश्क बाजियां और मैं हूँ इश्क वाली गीत, और हम बात करने वाले हैं किशोर दा और मधुबाला की मोहब्बत के बारे में। दो ऐसे नाम जिनका जिक्र किए बगैर हिंदी सिनेमा के बारे में बात करना शायद बेईमानी है। एक एक्टिंग वर्ल्ड की सुपरस्टार थी तो दूसरा संगीत जगत के बादशाह। इन दोनों को जिंदगी में सब कुछ मिला, लेकिन इनके प्यार की कहानी का जिस तरह से अंत हुआ वो आज भी आपकी आंखें भिगो देगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये दोनों कैसे करीब आए, इनको कैसे मोहब्बत हुई। लोग अक्सर कहते हैं कि मोहब्बत के लिए वक्त चाहिए, पर कुछ मोहब्बतें पहली नजर में ही दिल पर दस्तक दे देती हैं। मधुबाला जो उस वक्त दिलीप साहब की मोहब्बत में थी और अपना दिल जो है

भी तोड़ चुकी थी। और तभी किशोर दा उनकी जिंदगी में आते हैं एक हंसी का मरहम बनकर। मधुबाला अपने करियर में पीक पर थी जब उन्हें पता चला कि उनके दिल में छेद है और वो विदेश चली गई अपना इलाज कराने के लिए। और इस वक्त ये दोनों साथ में थे, यानी कि किशोर दा और मधुबाला साथ में थे। लेकिन जब किशोर दा को उनका पता चलता है तो उस वक्त वो बहुत भावुक हो जाते हैं और उन्हें सीधा शादी के लिए प्रपोज कर देते हैं। और जब कोई इंसान किसी से सच्चा प्यार करता है तो उसके साथ जिंदगी का हर लम्हा बिताने की चाह भी रखता है, फिर चाहे उसमें सुख हो या दुख, ये जानते हुए भी कि मधुबाला की जिंदगी का अंत कभी भी हो सकता है। लेकिन किशोर दा ने हमेशा उनका ख्याल रखा और उनसे शादी करने का फैसला लिया। और उन्हें कभी भी इस फैसले को लेकर पछतावा भी महसूस नहीं हुआ, क्योंकि वो सच्ची मोहब्बत में थे और मधुबाला के साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजारना चाहते थे। इसके बाद क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगी गाने के बाद। गाना सुनते हैं, गाने के बाद फिर से लौटेंगे। शो है इश्कबाजियां।

0: तले।
1: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
2: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
1: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
2: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
3: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
4: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

फिर से स्वागत है, शो है इश्क बाजियां और मैं हूँ इश्क वाली गीत। रेट्रो की खूबसूरत सा सेगमेंट है, किशोरदा और मधुबाला के बारे में बातें चल रही हैं, जहाँ एक ऐसा वक्त आ गया था मधुबाला की जिंदगी में कि किशोरदा ने इनको सीधा शादी के लिए प्रपोज कर दिया। लेकिन इससे कुछ समय पहले की बात है, जब इनकी बहुत ही एक सुपरहिट मूवी रही जिसका नाम था चलती का नाम गाड़ी। सेट पर मजाक मस्ती और हंसी के बीच धीरे धीरे दोनों की जिंदगी एक दूसरे में घुलने लगी। और जब मधुबाला की जिंदगी में एक ऐसा वक्त आता है जहां ये इनको सीधा शादी के लिए प्रपोज करते हैं, लेकिन मधुबाला का परिवार इस रिश्ते से खुश नहीं था। और यहां जब किशोरदा की बात आई तो उन्होंने अपने सारे एफर्ट्स लगाए इस मोहब्बत को पूरा करने के लिए, और आखिर में उन्होंने अपनी मोहब्बत को पा लिया, दोनों की शादी हो जाती है। लेकिन शादी के बाद होता यह है कि किशोरदा की फैमिली मधुबाला को एक्सेप्ट नहीं कर पाती। लेकिन पता है इन दोनों की मोहब्बत की सबसे बड़ी बात क्या थी? इतनी सारी चीजें होने के बाद भी इतनी बड़ी बड़ी बातें इनके रिश्ते पर कभी हावी नहीं हुई। देखो यार, हर कोई ये चाहता है कि जब किसी की जिंदगी का कोई नया चैप्टर शुरू हो तो उनकी फैमिली रहे उनके साथ, बड़ों का आशीर्वाद रहे उनके साथ। हालांकि कभी कभी किसी को ये खुशी नहीं मिल पाती क्योंकि उनके परिवार उनसे अलग हो जाते हैं जब वो नए रिश्तों में बन जाते हैं। इनको भी अपनी फैमिली को पीछे रखना पड़ा, लेकिन इन्होंने अपनी मोहब्बत को पा लिया था उसी एफर्ट्स के साथ। और अभी वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटेंगे। शो है इश्क बाजियां, मैं हूँ इश्क वाली की।

0: रिड्यूस रीयूज रीसाइकिल यही है वो RRR जिन्हें फॉलो करके हमारा शहर एनवायरनमेंट से ऑस्कर जीत सकता है। पर ये 3 R आखिर है क्या? रेडियो महारानी आपको आसान भाषा में समझाता है। रिड्यूस यानी प्लास्टिक से बनी चीजों का कम से कम इस्तेमाल, रीयूज यानी जो दोबारा काम आ सके सिर्फ उसी प्लास्टिक का इस्तेमाल, रिसाइकिल यानी वेस्ट प्लास्टिक को फेंकने के लिए सिर्फ ब्लू डस्टबिन का इस्तेमाल।
1: FM 89.6 का रेजोल्यूशन यही है कि सिंगल यूज प्लास्टिक अब ऑप्शन में ही नहीं है।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

वक्त में एक दूसरे का साथ देंगे। और इस बात को किशोर दा ने करके दिखाया। उन्हें पहले से मधुबाला की सिचुएशन के बारे में पता था, लेकिन फिर भी उन्होंने उनसे शादी की और आखिरी सांस तक उनका ख्याल रखा। ये जो प्यार की कहानी है ना, ये हमें यही सिखाती है कि सुख दुख में अपने साथी के साथ खड़े रहने का मतलब क्या होता है। और आई थिंक आप इनके प्यार की कहानी को समझ ही गए होंगे। एक ऐसा चेहरा जो हमेशा हमें मुस्कुराता दिखा, लेकिन अपनी जिंदगी में कितना कुछ झेल रहा था हमारे किशोर दा। और अभी वक्त है गाने का। गाने के बाद फिर से लौटूंगी बहुत ही खास सा सेगमेंट लेकर। तब तक आप ये गाना सुन

0: शुरू आजा।
1: हाँ तो शुरू होते हैं और अर्ज करते हैं।
0: अर्ज नहीं होता, अर्ज अर्ज।
1: शायरी पे ध्यान लगाओ।
0: इरशाद।
1: ब्रॉडवेज बस जैसा अपना हाल है।

0: हथियारों?
1: मेरा नहीं, तुम्हारा ही होगा।
0: सबका ये सब कुछ टूटा फूटा है, फिर भी अपना रुतबा है यारो।
1: ये बात तो सही है।
0: और बस की याद आती है जब भी लाइफ में कुछ समझ नहीं पाता हूँ।
1: कैसे कैसे?
0: कंडक्टर बोलता है आगे बढ़ो तो मैं मोटिवेट हो जाता।
1: अरे यार, वो तो मैं कह रहा था कि मुंह उठाकर बस से उतरो और आगे बढ़ो। अब तुम बोलते रहो, मैं तो चली गई, मेरी बस आ गई।
0: सुनो सुनो।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: अपनी वाइफ को हैकर्स और रोड के माइकल शुमाकर को वनबी से बचा के रखो। हैकर्स ऐसे फिशिंग करते हैं जैसे हम फ्री समोसे का पोस्टर देख के दौड़ते हैं। और तुम शेड लिंक मत खोलना वरना तुम्हारा डेटा उड़ जाएगा इतनी स्पीड से कि गूगल मैप्स भी बोल देगा रिकैलकुलेटिंग लाइफ। पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रखो, पासवर्ड 123 मत लिखना, ये देख के तो हैकर भी बोल देगा भाई इतना आसान क्या। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाओ, ऐप्स अपडेटेड रखो वरना स्कैमर्स पार्टी मनाकर तुम्हारे ही अकाउंट में नाचने लगेंगे।

गाना है फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी से, शो है इश्क बाजियां, मैं हूँ इश्क वाली गीत, और यहाँ पर मैं सेगमेंट ले आई हूँ दिल दियां गल्ला। आपके दिलों की बात आपके दिलों तक पहुंचानी है, और आज का टॉपिक है प्रॉमिस। जब कोई रिश्ते में हम बनते हैं तो बहुत सारे प्रॉमिस कर लिया करते हैं बगैर ये सोचे हुए कि ये प्रॉमिस हम पूरे कर पाएंगे कि नहीं, और ढेरों प्रॉमिस कर लेते हैं, और सामने वाला कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट करता रहता है हमसे कि इतने प्रॉमिस किए हैं तो ज़रूर हम निभाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं हम प्रॉमिसेस पे, उन वादों पे खरे नहीं उतरते हैं। रिश्ते में सब कुछ बहुत ज़रूरी है, प्यार ज़रूरी है और रिश्ते में केयर बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये जो वादे किए जाते हैं ना, और ये जो वादे पूरे नहीं हो पाते हैं, इनसे सामने वाला जो है कहीं ना कहीं टूट जाता है। तो इसीलिए आप वादे कीजिए, लेकिन वो वादे जो आप निभा पाएं। और आज इसी बारे में बात होंगी, शो है इश्कबाजियां, मैं हूं इश्क वाली गीत, अगला गाना है फिल्म कल हो ना हो से।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हाँ तो अर्ज किया है।
0: अर्ज
1: अभी करते हैं, सुनो।
0: इरशाद,
1: स्पैम कॉल करके आजकल दिमाग खा जाते हैं।
0: वाह वाह वाह वाह।
1: कोई फर्जी रिश्तेदार तो कोई फर्जी ऑफिसर बनकर हमें डांट देते हैं।
0: तुम अभी इसे लायक।
1: चुप रहो, आगे सुनो। मैं कहता हूँ कि बैंक की डिटेल्स, ओटीपी सब दे दूंगा।
2: अच्छा,
1: बस मेरी शायरी सुन लो।
0: फिर
1: ये सुनते ही पहली फुर्सत में वो फोन काट देते हैं।
0: अरे वाह, तुम्हारी शायरी का कुछ तो फायदा हुआ। अब तुम बोलते रहो, हम चलते हैं।
1: अरे

प्रतिभा सिंह की आवाज में है ये गाना कि वो मानता ही नहीं हम सफर तो क्या कीजिए, हर एक दुआ है गर बेअसर तो क्या कीजिए, और नजर की राह में यूं तो कई नजारे हैं पर तुम ही पे जाके जो ठहरे नजर तो क्या कीजिए। और इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है, शो है इश्क बाजियां, मैं हूं इश्क वाली गीत, और आपने वो गाना सुना है कि जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। तो जो वादे किए हैं ना किसी से वो निभाने तो पड़ेंगे, और कई लोगों को वादों पर एतबार नहीं होता, जानते हैं ये टूट सकते हैं, फिर भी प्यार में डूबे लोग वादा करने में कोई परहेज नहीं करते, बहुत सारी कस्में खाते हैं, बहुत सारे प्रॉमिसेस करते हैं, लेकिन वादे जो हैं वो या तो रिश्तों को एक बहुत अच्छी जगह पे ले जा सकते हैं, और वो कौन कौन से वादे हैं जो रिश्तों को खोखला कर देते हैं। वैसे एक वादे के टूटने से होती है रिश्ता टूटने की शुरुआत, और ये स्टडी भी बताती है कि इंसान दिन में 15,000 से ज्यादा शब्द बोलता है। इस दौरान लौट कर आने, फिर मिलने, जिंदगी भर साथ निभाने वाले जैसे तमाम वादे भी किए जाते हैं, लेकिन बात यह भी है कि इन 15,000 शब्दों में से सिर्फ कुछ 100 शब्द लोगों को अगले हफ्ते तक जोड़े रखते हैं। ये बहुत सारे वादे होते हैं कि मैं तुम्हें भूल नहीं पाऊंगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। ऑल्दो सामने वाले का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत बढ़ रहा है इन वादों से, लेकिन कहीं ना कहीं डर भी है कि यार ये वादे टूट ना जाए। तो आज इन्हीं वादों पर बातें हो रही हैं, शो है इश्कबाजियां, मैं हूं इश्क वाली गीत।

0: रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, ज्यादा चिल्लाने से बात समझाई नहीं जाती, सिर्फ दिल दूर हो जाते हैं। इसलिए आज से ही आवाज धीमी और बात गहरी, फिर देखिए जिंदगी कितनी खूबसूरत लगती है।
2: क्योंकि दोस्ती बिना तो प्यार होता ही नहीं।

और इसी 90s मैशअप के साथ फिर से स्वागत है। शो है इश्क बाजियां, मैं हूं इश्क वाली गीत। और यहां पर बातें चल रही हैं प्यार में जो वादे किए जाते हैं उनको निभाना कितना जरूरी है यार। यूं तो लोग रिश्ते में चांद तारे तोड़ लाने और मौसम का रुख बदलने तक की बातें कर देते हैं, हालांकि ये सब पॉसिबल नहीं है। ये वादा करने वाला और जिससे वादा किया जा रहा है वो भी जानता है इनको कि ऐसा सिर्फ बोलने भर की बातें हैं, ये संभव नहीं हो पाएगा। लेकिन क्या होगा जब उन वादों को तोड़ दिया जाए जिसे पूरा करना पॉसिबल है और सामने वाला आपसे एक होप लगाए बैठा है कि आप इन वादों को जरूर पूरा करेंगे। वैसे अगर एक भी वादा टूटता है ना तो सामने वाले इंसान का दिल टूट जाता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि एक वादे के टूटने के बाद एक पार्टनर दूसरे पार्टनर की हर बात को एक अलग नजर से देखने लगता है कि यार एक प्रॉमिस तो पूरा किया नहीं गया और प्यार निभाएंगे। और आपको ये जो वादे होते हैं ना वो बड़बोलापन बना देते हैं, तो इसीलिए आपको सोच समझ कर वादे करने चाहिए। फिलहाल वक्त है गाने का। शो इश्क बाजियां, मैं हूं इश्क वाली गीत।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है, शो है इश्क बाजियां, मैं हूं इश्क वाली गीत और यहां पर बातें चल रही हैं प्रॉमिसेस को लेकर। कई बार हम भावनाओं में बहकर ऐसे शब्दों का यूज कर लेते हैं जो वास्तविक जिंदगी में पॉसिबल नहीं है, और कुछ लोग इसे बहुत नॉर्मल मानते हैं कि बहुत नॉर्मल है, ठीक है वादा कर लिया तो क्या बड़ा कर दिया। लेकिन सामने वाले के दिमाग में ये बातें बस जाती हैं, लेकिन दिक्कत तब होती है जब सामने वाला इसे सच मान बैठता है, ऐसी एक्सपेक्टेशंस करने लगता है। एक बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, इन्होंने बताया है कि वादे क्यों टूटते हैं और इस पर इन्होंने एक बेस्ट रिसर्च स्पीच भी दी है। इसमें इन्होंने वादे टूटने का बहुत मेन रीजन बताया है कि भावनाओं में बहकर हम कुछ ऐसे शब्दों का यूज कर लेते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। इसीलिए जब भी किसी से आप वादा करें तो भावनाओं में बहकर ना करें, वो वादा करें जो एग्जैक्टली आप पूरा कर पाए, क्योंकि ये सामने वाले इंसान को तोड़ कर रख देता है। फिलहाल वक्त है गाने का, शो इश्क बाजियां, मैं हूं इश्क वाली गीत।

0: रिड्यूस, रीयूज, रीसाइकिल, यही है वो RRR जिन्हें फॉलो करके हमारा शहर एनवायरनमेंट से ऑस्कर जीत सकता है। पर ये 3 R आखिर है क्या? रेडियो महारानी आपको आसान भाषा में समझाता है। रिड्यूस यानी प्लास्टिक से बनी चीजों का कम से कम इस्तेमाल, रीयूज यानी जो दोबारा काम आ सके सिर्फ उसी प्लास्टिक का इस्तेमाल, रिसाइकिल यानी वेस्ट प्लास्टिक को फेंकने के लिए सिर्फ ब्लू डस्टबिन का इस्तेमाल।
1: FM 89.6 का रेजोल्यूशन यही है कि सिंगल यूज प्लास्टिक अब ऑप्शन में ही नहीं है।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

पंकज उदास की आवाज में है बहुत ही बेहतरीन सा गाना और इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है। शो है इश्कबाजियां और मैं हूँ इश्क वाली गीत। और मैं आज दिल दिया गल्ला में आपसे यही कहूंगी कि वादे कीजिए, बिल्कुल कीजिए, लेकिन वो बचकाने वादे मत कीजिए जिन्हें आप पूरा ना कर पाए। अब वो वादे कीजिए जिसे आप पूरा कर पाए, और सामने वाला अगर आपसे एक्सपेक्ट भी करे तो आप वक्त के साथ अपने वादों पर खरे उतर पाए, वरना लोग आपको ये कह देंगे कि आप अपनी बातों पर नहीं रहते, अपनी बातों को कहकर मुकर जाते हैं। इसीलिए आप कोई भी ऐसा वादा ना करें जो पूरा नहीं हो सकता है। अभी मेरे चलने का वक्त है, मैं मिलूंगी आपसे कल जहां ढेर सारी बातें करेंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM, कुछ हटके खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्यार बांटते रहिए।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चालान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: सुन रहे हैं कृष्ण वाणी।
1: श्रीमद् भागवत

गीता से हमें सीखने को मिलता है कि परिवर्तन निश्चित है और यही संसार का नियम है, यानी कि आपका जीवन कभी भी बदल सकता है। और जैसे सर्दी के बाद गर्मी और गर्मी के बाद वर्षा ऋतु, ऐसे ही चलता रहता है। इस प्रकार संसार में परिवर्तन निश्चित है और यही संसार का नियम है।